सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
2: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
2: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना।
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
2: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707065।
11: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
12: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे।
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
10: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
13: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
12: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87894 18744।
14: श्रोतागण प्रणाम, सुप्रभात। अभी बज गई बा सुबह के 6, आज 6 बजते ही हाजिर बाड़ी राव रेडियो दोस्त दीपाली। रउआ तो पता बना कि ई वक्त है राव स्वास्थ्य वर्धक कार्यक्रम, आपन देह आपन देखभाल के। दोस्त लोग, हर बार की तरह इस बार भी हम लेके आ गए बनी कुछ हर्बल उपाय, जौन के अपना के रउआ पा सके नी निरोग काया। तो आई हम अपना कार्यक्रम के श्री गणेश करी। जी में आज हम बताएं कुछ ब्यूटी टिप्स। तो दोस्त लोग, सबसे पहले जानल जाई आँख के नीचे काला धब्बा के दूर करे के उपाय। तो श्रोतागण, ई कोनो रोग ना बल्कि ई रोग के लक्षण मात्र है। ऐसन कुछ कारण से होला, जैसे मानसिक तनाव और चिंता होकल, नींद पूरा ना होकल, आहार के पौष्टिक और संतुलित ना होकल। शराब, सिगरेट या मादक पदार्थ और दवा के अधिक प्रयोग कर जाए, कब्ज, शरीर में खून के कमी, थकान, रात देर तक जागल, क्षमता से अधिक काम कर, उत्तेजक सौंदर्य प्रसाधन के प्रयोग कर, आँख से लगातार काम कर, कम या धीमा रोशनी में पढ़ल, विटामिन ए और विटामिन डी के कमी से ई रोग होला। मासिक धर्म शुरू होके, मासिक धर्म के दौरान और मासिक धर्म के समाप्ति पर शरीर में हार्मोन स्त्राव के व्यवस्था बिगड़ जाला, ऐसन प्राय प्रसव के बाद और मेनोपॉज के समय अधिक होला। कुछ उपाय अपना के रउआ अपन आँख के नीचे दिखे वाला काला धब्बा से निजात पा सकता नी। जैसे खीरा में एक विशेष प्रकार के एंजाइम विद्यमान होला, जौन आँख के नीचे काला सर्कल के दूर करे में सक्षम होला। खीरा के काट के घीसी और जौन झाग निकले ओके प्रभावित स्थान पर लगाई, इसे काला सर्कल की समस्या से छुटकारा मिल जाए। खीरा की तरह ककड़ी भी उपयोग में लाई, ककड़ी में विटामिन सी, विटामिन ई, आयरन, फास्फोरस और कैल्शियम आदि तत्व पावल जाला, एकर प्रभाव से आँख के नीचे काला सर्कल हट जाए। में ककड़ी के रस और गुलाब जल मिलाई आ एके रुई के फाहा से आँख के नीचे काला धब्बा पर लगाई। यदि नियमित रूप से पुदीना के कोपल के रस आँख के काला धब्बा पर रुई के फाहा से लगावल जाए तो कालांतर से पर्याप्त लाभ होई। तुलसी के पत्ता की चटनी की तरह महीन पीस ली और प्रभावित स्थान पर लगाई, ई लेप के लगभग 15 से 20 मिनट तक लगा रहे थी आ बाद में ठंडा पानी से चेहरा धो डाली। टमाटर और नींबू में प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पावल जाला, 5 मिलीलीटर टमाटर के रस में 2 से 3 बूंद नींबू के रस मिला के आँख के नीचे वाला काला धब्बा पर लगाई। रात के समय पानी में 1 बादाम की गिरी भिंगोई आ सुबह बादाम के छिलका अलग करी और बादाम के घीस के डार्क सर्कल पर लगा दी। एके 10 से 15 मिनट तक लगा रहे थी आ बाद में जब सूख जाए तो ई ताजा पानी से धो दी। चार चार बूंद बादाम के तेल, आलू के रस, खीरा के रस और शहद लेके परस्पर मिलाई और एकरा के रुई के फाहा से डार्क सर्कल पर लगाई। इसे आँख के नीचे पाए जाए वाला काला घेरा तो मिटी ही, साथ में त्वचा के पोषण भी हुई। दो चार बूंद संतरा या मौसमी के रस में आधा चम्मच शहद मिला के रुई के फाहा से काला घेरा पर लगाई आप 15 से 20 मिनट तक लगा रहे थी। एकरा के पानी से धो दी, ऐसन करे से आँख के नीचे काला धब्बा दूर हो जाए। दोस्तों, लोग अब हम बताएं चेहरा के सौंदर्य और ओकर देखभाल। दोस्त लोग, चेहरा के देखभाल से पहले ये जानल बहुत जरूरी होला कि राउर त्वचा कैसन बा, सामान्य बा कि रूखा, कि चिकना और तैलीय या संवेदनशील या ये सब मिश्रित त्वचा। चली हम बता दी कि एकरा के रउआ कैसे पहचाने। बहुत सारा लोग आपन चेहरा ना पहचान पावेला कि हमार कौन त्वचा बा, जौन त्वचा पर अधिक कील, मुहासा और फुंसी आदि होके, तो ऐसन त्वचा संवेदनशील त्वचा हुई। सामान्य त्वचा ओकरा के कहल जाला जौन लचीला और मुलायम होके। यदि राउर त्वचा रूखा या खुश्क बा, तो राउर त्वचा देखे में खींचा खींचा सा प्रतीत हुई। यदि टिश्यू पेपर लागे के बाद भी ओई पर तेल ना आए, तो ऐसन त्वचा सामान्य या रूखा त्वचा मानल जाए। यदि टिश्यू पेपर पर तेल होके, तो ई त्वचा तैलीय त्वचा मानल जाए। तो चली हम बता दी सामान्य त्वचा की देखभाल। दोस्त लोग, जब भी बाहर से लौटी तो चेहरा के पानी से धोई। चेहरा पर मालिश करे से त्वचा के ऑक्सीजन मिलेला, रंग निखरेला और रक्त संचार सामान्य हो जाला। संतुलित पौष्टिक और संपूर्ण आहार की सेवन करी। चेहरा में छिपल मैल के निकाले खातिर भाप दी। एकरा बाद तौली से चेहरा पोंछ दी। दूध और गुलाब जल मिला के चेहरा पर लगाई। आ एकरा के 15 से 20 मिनट लगा रहे दी। एकरा बाद चेहरा के सुसुम पानी से धोली। अंडा में पाए जाए वाला तत्व त्वचा खातिर बहुत लाभकारी होला। ऐसे बेजान कोशिका और नष्ट हो चुकल उत्तक के पुनर्निर्माण करे में बहुत

पहली प्रकार फेट के ओकरा के गर्दन और चेहरा पर लगाई और एकरा के 10 से 15 मिनट तक लगा रहे दी। बाद में गुनगुना पानी से धो के चेहरा पर लगा पेस्ट हटा दी। आप चली जानल जाओ चिकना और तैलीय त्वचा की देखभाल। ऐसन त्वचा भले ही अच्छा मानल जात हो के परंतु ये त्वचा अधिक तैलीय होई तो ओई पर ब्लैक हेड्स, झुरी, झाई, कील मुहासा और दाग धब्बा आदि भी अधिक होई। ये खातिर कुछ बात की ध्यान दिहल बहुत जरूरी बा। जिसे अधिक चर्बी या चर्बी युक्त खाद्य पदार्थ के सेवन ना करी। तेल, मिर्च मसाला आदि के प्रयोग भी कम करी। पानी अधिक पी, ऐसे त्वचा ताजा बनल रही और चेहरा पर निखार आई। दिन में 3 से 4 बार चेहरा के ताजा पानी से धोई। त्वचा के समुचित पोषण खातिर 8 से 10 दिन में 1 बार चेहरा पर उपटन अवश्य लगाई। रात्रि के सूते से पहले चेहरा से सारा मेकअप उतार दी। मेकअप हमेशा हल्का ही करी, काहे कि अधिक गहरा मेकअप से त्वचा के रोम छिद्र बंद हो जाला और त्वचा के शुद्ध ऑक्सीजन

0: आप भी आए कमल श्री कमल श्री कमल श्री बारी मार्केट गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: नमस्कार, मैं हूँ जैकी श्रॉफ और आप सुन रहे हैं शिवा। कल के एपिसोड में आपने हमारे साथ सुना शिव सेवा करना सिखाता है, शिव समर्पण सिखाता है। अब आगे
3: भैया जरा देखो, पंक्चर हो गया यार। हेलो, हाँ
4: वेयर आर यू?
3: मैकेनिक के पास, बाइक खराब हो गई है यार।
4: झूठ मत बोलो, सच सच बताओ कहाँ हो?
3: अरे बोला तो बाइक ठीक करवा रहा हूँ, क्या प्रॉब्लम है? तुम ना मुझसे इतने सवाल मत पूछा करो।
4: तुम्हें पता है क्या, मैं थक चुकी हूँ तुम्हारी ये झूठी कहानियाँ सुन सुन के। तुम 3 दिन से घर नहीं आए हो, अब ये बाइक खराब होने का झूठ। सुनो, तुम्हें जो करना है करो, मैं जा रही हूँ तुम्हारे घर से।
3: क्या? ठीक है, भाड़ में जाओ यार, चली जाए अच्छा है। भैया पानी देना यार। भगवान इस बार मेरी सुन लो यार।
5: एक्सक्यूज मी, थोड़ा पानी मिलेगा?
3: ये लो।
5: थैंक्स। वैसे आप ठीक तो है ना?
3: हाँ ठीक हूँ।
5: नहीं मैंने सुना आप फोन पे इतना चला रहे थे तो।
3: हाँ यार, बीवी ने परेशान करके रखा हुआ है।
5: अच्छा,
3: तुम्हारी शादी होगी?
5: नहीं।
3: बहुत लकी हो, करना भी मत, लाइफ खत्म हो जाती है शादी के बाद, और बोरिंग भी यार।
5: अच्छा,
3: पूरी जिंदगी एक ही लड़की के साथ? अरे मुझे तो मुश्किल लगता है, मैं तो इतना डिस्ट्रैक्टेड रहता हूँ कि समझ ही नहीं आता फोकस कैसे करूँ बीवी पे, एक पे ही कैसे ध्यान दूँ। इसीलिए उसे मुझ पे ट्रस्ट नहीं है, समझती नहीं है, हर बात में किटकिट घिटकिट, जा रही है घर छोड़ के। अरे चली जाए यार, मैं तो कहता हूँ भाड़ में जाए।
5: अरे आप तो बहुत गुस्से में लग रहे हैं, इतना भी क्या हो गया आपके साथ कि आप?
3: अरे यार मैं चाहकर भी ना एक चीज पे फोकस नहीं कर सकता, इधर उधर रहता है मेरा दिमाग। भाई इंसान हूँ, डिस्ट्रैक्शंस तो होंगे ही ना।
5: हाँ बात तो सही है, पर ये सही तो नहीं है ना कि डिस्ट्रैक्शंस हों और फिर आप गुस्से में आकर अपने लोगों को खुद से दूर कर दें।
3: अच्छा ठीक है, तो क्या करूं फिर, और इसमें क्या गलत है? और गुस्से में तो इंसान कुछ भी कर सकता है ना।
5: चलिए ये भी मान लिया कि गुस्से में इंसान कुछ भी कर सकता है, पर उसका सामने वाले इंसान पर क्या असर होगा ये समझना भी तो जरूरी है ना।
3: अरे यार गुस्से में था, अब सच में थोड़ी भाड़ में भेजना चाहता हूँ उसे।
5: हाँ पर अगर उन्होंने सच में मान लिया तो?
3: तुम रहने दो यार, तुम नहीं समझोगे।
5: समझता भी हूँ और इसका असर भी जानता हूँ। खैर जब तक बाइक ठीक होती है तब तक इसी से रिलेटेड एक कहानी सुनोगे?
3: ठीक है सुनाओ।
5: अच्छा बताता हूँ। कई युग पहले शिवजी पार्वती को ब्रह्मांड के रहस्य बता रहे थे।

0: तो इस तरह ये पूरे संसार में संतुलन बना रहता है, और जब वो संतुलन बिगड़ जाता है तो हमारा
1: ये कमल कितना सुंदर है।
0: हमारा कर्तव्य है कि पार्वती
1: हाँ महादेव।
0: पार्वती, मैं तुम्हें इस ब्रह्मांड के रहस्य बता रहा हूँ और तुम अपनी ही सोच में डूबी हुई हो।
1: क्षमा करें ईश्वर, मैं थोड़े समय के लिए उस कमल की सुंदरता में खो गई थी।
0: ऐसे रहस्य सुनने के लिए कितने लोग तड़पते हैं, देवों को भी ऐसा ज्ञान नहीं मिला है।
1: क्षमा करें प्रभु,
0: इतनी महत्वपूर्ण बातों से तुम्हारा ध्यान भटक रहा है, ये कदापि स्वीकार नहीं है मुझे।
1: परंतु प्रभु।
0: सच पार्वती, तुम्हें मछुआरों के संग जन्म लेना चाहिए था, बुद्धि नहीं तो बल का ही प्रयोग करना सीख जाती।
1: प्रभु प्रभु, ये क्या कह दिया आपने? यदि आपको ऐसा ही लगता है तो ठीक है, जैसा आप चाहें।
0: हाँ, ये क्या? पार्वती, पार्वती कहाँ हो?
2: क्या हुआ महादेव, क्या हुआ?
0: वो पार्वती अचानक अदृश्य हो गई। शीघ्र ढूंढो उन्हें नंदी।
2: आप चिंता ना करें ईश्वर, मैं ढूंढता हूं उन्हें।
0: नंदी, कहो, कुछ पता चला?
2: महादेव वो
0: कहो नंदी, कहां है पार्वती?
2: प्रभु, वो देवी पार्वती

0: धरती की ओर गई हैं।
1: क्या?
0: हाँ ईश्वर, उन्होंने एक मछुआरे के कुंबे में जन्म ले लिया है। मुझे तो समझ नहीं आ रहा मैं
1: ये मैंने क्या कर दिया, ये क्या कर दिया मैंने नंदी। मेरी पार्वती धरती पर चली गई।
2: अरे ये किसी बच्ची के रोने की आवाज है।
3: अरे सरदार ये देखिए, ये पेड़ के नीचे ये बच्ची।
2: हे ईश्वर, कितनी भोली है ये बच्ची, इसे यहाँ कौन छोड़ दिया।
3: हाँ सरदार, पता नहीं कौन ऐसी प्यारी सी बच्ची को छोड़ के चले गए।
2: ये ईश्वर का वरदान है, आज से ये पार्वती है, मेरी पुत्री पार्वती। पार्वती,
4: अरे पार्वती कहाँ भागी जा रही हो, धीरे चलो गिर जाओगी।
5: पिताजी नौका निकाल रहे हैं माँ, मुझे भी जाना है समुन्दर में।
6: सरदारनी, आपकी पार्वती तो कितना शीघ्र सब कुछ सीख जाती है। मेरा पति बता रहा था कि कल नौका में पार्वती ने स्वयं मछली पकड़ने का जाल बिछाया और फिर मछली पकड़ भी ली।
4: हाँ, पता ही नहीं चला हमारी पार्वती कब इतनी बड़ी हो गई कि मछली भी स्वयं पकड़ लेती है।
0: महादेव, जब से देवी पार्वती धरती पर चली गई हैं, आपके मुख से आनंद भी चला गया है।
1: क्या करूं नंदी, मैं जानता हूं मुझे क्रोध में आकर पार्वती से ऐसा नहीं कहना चाहिए था। अब मेरे जीवन का क्या अर्थ रह गया है, मेरी अर्धांगिनी मुझे छोड़कर चली गई है और मैं अकेला रह गया हूं।
0: महादेव, आप ईश्वर हैं, आप चाहें तो कुछ भी कर सकते हैं, फिर आप देवी पार्वती को वापस क्यों नहीं ले आते महादेव।
1: विधि नंदी, विधि। विधि में लिखा है कि मछुआरों के रूप में जन्मी पार्वती का विवाह एक मछुआरे के साथ ही होगा। अब मैं क्या कर सकता हूं।
0: महादेव इतना विलाप कर रहे हैं, इतने उदास लग रहे हैं, मुझे ही कुछ करना होगा। देवी पार्वती को एक बार फिर महादेव से मिलाना होगा मुझे।
7: नंदी अपने शिवजी की मदद करने के लिए आसमान से एक भयानक मछली बनकर उन्हीं मछुआरों के समंदर में पहुंच गया और फिर
8: शीघ्र पकड़ो, नहीं तो हमारी नाव पलट जाएगी।
5: पिताश्री,
8: पार्वती पुत्री, इस खम्भे को पकड़े रहना, डरो मत,
9: संभाल के।
8: सरदार, ये मछली तो बहुत ही भीड़ है।
9: हाँ सरदार, ये पकड़ में नहीं आ रहा है, हमें नाव को पीछे मोड़ना होगा सरदार, नहीं तो हमारी नाव डूब जाएगी।
8: तो ठीक है, नाव को मोड़ो, शीघ्र मोड़ो।
9: हम उस भयानक मछली से तो बच गए, पर उसके कारण हम कोई और मछली नहीं पकड़ पाए और हमारे जाल भी टूट गए हैं।
8: अरे मछली छोड़िए, पहले वहाँ देखिए, वो भयानक मछली ने उस नाव को पलट दिया है।
2: शीघ्र करो, हमें उन्हें बचाना होगा।
10: अरे ये क्या हुआ है नाव को,
4: और आप सब एक ही नाव में, बाकी नाव कहाँ है, और पार्वती पार्वती कहाँ है, वो ठीक तो है ना।
6: मैं यही हूँ माँ, मैं ठीक हूँ।
2: किसी को कुछ नहीं हुआ है, एक भयानक मछली ने वार कर दिया है सारी नाव पर।
8: आज कोई मछली नहीं पकड़ पाए।
2: चिंता न करें, हम शीघ्र ही उस भयानक मछली का शिकार करेंगे। साथियों, शिकार के लिए तैयार हो जाओ।
7: पर जितनी बार भी सरदार और उसके साथी उसका शिकार करने जाते, हार कर ही वापस आते। मछुआरे उस मछली से परेशान हो गए। फिर एक दिन,
8: लेकिन सरदार, उस भयानक मछली के कारण हम कोई भी मछली नहीं पकड़ पा रहे हैं। अगर ऐसा ही होता रहा तो हम अपनी रोजी रोटी कैसे कमा सकते हैं।
2: तो ठीक है, ऐलान करवा दो, जो भी उस भयानक मछली को पकड़ेगा उससे मेरी पुत्री पार्वती का विवाह करवाऊंगा।
4: ये आप क्या कह रहे हैं, हमारी पुत्री किसी अपरिचित इंसान से विवाह कैसे कर सकती है।
6: नहीं माँ,
4: जो उस भयानक मछली को पकड़ेगा वो हमें जीवन दान देगा, इसलिए मैं उसी से विवाह करूंगी।
11: आपको इतना चिंतित देखकर मन अशांत हो रहा है।
2: तो क्या करूं मैं? उस भयानक मछली को पकड़ने के लिए इतने लोग आए पर कोई उसे पकड़ नहीं पाया। चिंता नहीं होगी तो क्या होगा?
11: अब बस ईश्वर ही हमारी मदद कर सकते हैं। हम सबको मिलकर उनकी प्रार्थना करनी चाहिए।
2: हे ईश्वर, मदद करना हमारी।

0: पार्वती पुकार रही है मुझे, ये क्या हो रहा है?
1: हे ईश्वर, इस भयानक मछली से हमें बचाएं, हमें जीवन दान दे।
0: एक भयानक मछली? ये तो नंदी है और मुझे पार्वती पुकार रही है, मुझे जाना होगा। सरदार,
2: कौन हो तुम?
0: सरदार, मैं भी मछुआरा हूँ। आपके यहाँ से उस भयानक मछली को पकड़ने की घोषणा आई थी।
2: हाँ, किंतु तुम तो युवक हो, तुमसे भी बड़े बड़े मछुआरे उसे पकड़ नहीं सके हैं।
0: आप मुझे एक अवसर दीजिए सरदार, मैं उसे अवश्य पकड़ूंगा।
2: ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा।
0: नंदी, मैं जानता हूँ कि वो तुम ही हो, इसलिए रुक जाओ।
3: महादेव, मेरे ईश्वर, आप आ गए, मैं कब से आपकी ही प्रतीक्षा कर रहा था।
0: पर नंदी, तुम्हें ये सब करने की क्या आवश्यकता थी?
3: ईश्वर, आप और देवी पार्वती आवेशपूर्ण होकर अलग तो हो गए, किंतु मैं जानता हूँ आप दोनों ही उदास थे, इसलिए मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। ईश्वर, विधि पूर्वक आप दोनों को फिर से एक करने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा।
0: नंदी, आओ मेरे गले लग जाओ। सच, तुम मेरे भक्ति ही नहीं, शुभचिंतक, मेरे सच्चे मित्र भी हो।
3: प्रभु!
4: सरदार, सरदार, शीघ्र आइए, वो जो युवक है ना, उसने उस भयानक मछली को पकड़ लिया है।
2: तुमने हमें नया जीवन दिया है पुत्र, और जैसा कि मैंने वचन दिया था कि जो भी हमारे कुंबे को बचाएगा, मेरी पुत्री का विवाह उसी से होगा। पार्वती, यहाँ आओ, ये तुम्हारे वर हैं। ये तुम्हारा नाम क्या है पुत्र?
0: जी, शंभु।
5: शंभु और पार्वती का विवाह वैभव से होगा।
0: पार्वती, मुझे क्षमा कर दो, मुझे तुमसे ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए थी।
6: नहीं महादेव, मुझे क्षमा कर दीजिए, आवेश में आकर मैं यहाँ जो चली आई।
7: और बस, शिव पार्वती फिर से शादी करके कैलाश लौट गए, और तब उन्होंने समझ लिया कि जल्दबाजी में, गुस्से में कोई भी फैसला लेना गलत है।
8: मतलब शिवजी ने पार्वती को गुस्से में कहा और पार्वती सच मान बैठी?
7: हाँ, तभी तो कह रहा हूँ दोस्त, अपनी बीवी को संभाल के रखो प्यार से, और गुस्से में आकर कभी ऐसा कुछ मत कहना जिससे उन्हें दुख पहुंचे।
8: तुम सही कह रहे हो यार, मैं उसे खोना नहीं चाहता। मैं अभी फोन करके ना उसे अपोलोजाइज करता हूँ। हेलो बेबी, I'm so sorry यार, जो भी हुआ हमारे बीच पहले, अब तुम मुझे छोड़कर मत जाओ यार।
9: भाड़ में जाने के लिए मैंने अपना सामान पैक कर लिया है।
8: I'm so sorry बेबी, मेरा मतलब वो नहीं था।
9: तो फिर क्यों बार बार ये सब कहते हो?
8: I'm sorry ना, कहा तो। अच्छा, आज के बाद ना कुछ भी नहीं होगा ऐसा।
9: ठीक है, रात को चाइनीज बनाऊंगी, घर जल्दी आना।
8: लव यू बेबी।
9: आई लव यू टू।
8: थैंक यू दोस्त, आज तुमसे नहीं मिलता ना तो शायद उसे कॉल नहीं करता।
7: अरे, शिव सही टाइम पर सही लोगों से मिलवा ही देते हैं, मुझे नहीं, इसके लिए उन्हें थैंक यू कहो और प्रे करो कि मैं उनके धाम टाइम पर पहुंच सकूं, सही सलामत अपने नंदू के साथ।
8: शिव के धाम मतलब अमरनाथ? तुम अमरनाथ जा रहे हो?
7: हाँ यार, मैं वहीं तो जा रहा हूँ। अरे एक काम करो ना, कुछ दिनों में तुम भी वहीं आ जाओ अपनी बीवी को लेकर, तुम्हारे लिए आउटिंग हो जाएगी और साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने से बीच की दूरियां भी मिट जाएंगी।
8: हाँ जरूर आएंगे, वहीं मिलोगे?
7: हाँ दोस्त, वहीं मिलूंगा तुम्हें, अब चलता हूँ। हर हर महादेव।
10: रही मन धागा प्रेम का, मत तोड़ो चटकाए, टूटे पे फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ी जाए। बड़ू एक सुना था, चाकू छुरी तीर तलवार सब लड़ रहे थे कि गहरा घाव कौन देगा, शब्द पीछे बैठे मुस्कुरा रहे थे, बाबा। कुछ समझा क्या बिड़ू?
11: इसलिए जब भी किसी को कुछ बोलने का, पहले उसको 10 बार दिमाग में सोचने का, प्रोसेस करने का बाबा, और फिर बोलने का, और हो सके तो अच्छा बोलने का। बिड़ो, शब्द ऐसे घाव करते हैं कि पूरी जिंदगी में ना भरें। ये बात तो शिव स्वयं समझ गए थे, तुम भी समझो बिड़ो। शिव महाराज मीठी बोली सिखाता है, शिव प्यार सिखाता है, हर हर में महादेव, हर दिल में महादेव, हर हर महादेव। तो ये थे आज के शिव वचन मेरे यानी जैकी श्रॉफ के साथ। याद रखिएगा और हो सके तो इस पर अमल कीजिएगा। मैं फिर लौटूंगा, तब तक के लिए सुनते रहिए शिवा।
12: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
13: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
14: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
12: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
14: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
12: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
14: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
12: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
14: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
12: कॉल करें 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
15: नन्ना मुन्ना लाही हूँ देश का सिपाही हूँ।
16: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
15: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
16: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
15: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
17: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
18: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
17: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
18: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम इकडेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
17: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
18: जानकारी है तो कॉल करें 62052 61112 पे।

0: परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
3: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
2: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
4: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
2: संपर्क करें 9939365923।
5: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
6: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
7: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
6: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगढ़ पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82-101-87-952। नियम और शर्तें लागू।

0: फिबुला एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
4: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
3: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
3: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
5: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
3: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
5: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
5: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
3: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोष मोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200424403 6200424403।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
5: बोलबम हर हर महादेव।
6: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
7: आप चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
8: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
7: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
8: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
7: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
8: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
7: संपर्क करें 8470103092 या 9765665750।
9: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
7: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
9: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
7: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
9: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
10: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल, पहले मुख्य हालचाल। अनुकंपा समिति की जिला पदाधिकारी ने की बैठक, 12 मामलों का हुआ निष्पादन। बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन को लेकर जिला पदाधिकारी ने दिया आवश्यक निर्देश। मोहम्मदपुर थाना का पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने किया निरीक्षण। 270 लीटर शराब के साथ 2 आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। गोपालगंज के जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज अपने कार्यालय प्रकोष्ठ में अनुकंपा समिति की बैठक आयोजित की। इसमें अनुकंपा नियुक्ति से संबंधित लंबित मामलों की विस्तृत समीक्षा की गई। इसी क्रम में 12 मामलों को समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया और सभी 12 मामलों का नियमानुसार परीक्षण करते हुए विचार विमर्श करने के उपरांत समिति द्वारा सभी 12 मामलों का निष्पादन कर दिया गया। इसमें एक मामला ऐसे दिवंगत सरकारी कर्मी के आश्रितों से संबंधित था जिनका निधन 31 अक्टूबर 2010 को हुआ था और इनका अनुकंपा नियुक्ति का मामला 16 वर्षों से लंबित बताया जा रहा था। बैठक में जिलाधिकारी ने कहा कि अनुकंपा नियुक्ति का उद्देश्य दिवंगत सरकारी कर्मियों के आश्रितों को समयबद्ध न्याय एवं आवश्यक सहायता उपलब्ध कराना है। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिया कि भविष्य में अनुकंपा नियुक्ति के किसी भी प्रकरण को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें तथा सभी मामलों का त्वरित पारदर्शी एवं नियमानुसार निष्पादन सुनिश्चित करें। जिलाधिकारी ने कहा कि जिला प्रशासन लंबित मामलों के समयबद्ध निष्पादन के लिए प्रतिबद्ध है तथा पात्र आश्रितों को शीघ्र राहत उपलब्ध कराने की दिशा में लगातार कार्य किया जाएगा। आज जिलाधिकारी समीर सौरभ ने बायोमेडिकल वेस्ट यानी जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन एवं निगरानी समिति की भी बैठक की। इसमें सिविल सर्जन और जिला कार्यक्रम प्रबंधक धीरज कुमार तथा संबंधित विभागों के पदाधिकारी उपस्थित रहे। बैठक में जिले में जैव चिकित्सा अपशिष्ट के सुरक्षित संग्रहण, पृथकीकरण, परिवहन, उपचार एवं वैज्ञानिक निस्तारण की व्यवस्था की विस्तृत समीक्षा की गई। इस दौरान बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट नियम 2016 के प्रभावी अनुपालन तथा सभी स्वास्थ्य संस्थानों द्वारा निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित कराने पर विशेष जोर दिया गया। जिलाधिकारी ने निर्देश दिया कि सभी सरकारी एवं निजी अस्पताल, नर्सिंग होम, क्लिनिक, पैथोलॉजी लैब तथा अन्य स्वास्थ्य संस्थान जैव चिकित्सा अपशिष्ट का रंगवार पृथककरण सुनिश्चित करें तथा अधिकृत एजेंसी के माध्यम से उसका नियमित उठाव एवं वैज्ञानिक निस्तारण कराएं। उन्होंने संबंधित विभागों को नियमित निरीक्षण कर नियमों का 100% अनुपालन सुनिश्चित करने तथा किसी भी प्रकार की लापरवाही पर नियमानुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया। बैठक में जिले में बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन की वर्तमान स्थिति की भी समीक्षा की गई तथा स्वास्थ्य संस्थानों की सेवा कवरेज बढ़ाने, शेष संस्थानों को भी व्यवस्था से जोड़ने और जन स्वास्थ्य एवं पर्यावरण संरक्षण के लिए संबंधित प्रयास करने पर बल दिया गया। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने मोहम्मदपुर थाने का वार्षिक निरीक्षण किया। इस दौरान लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन के निर्देश दिए गए। थाना कार्यालय अभिलेख, हाजत, वारंट, कुर्की निष्पादन, फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी, वाहन जांच अभियान और शराबबंदी से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। पुलिस अधीक्षक ने अपराध नियंत्रण, अवैध कारोबार पर कड़ी कार्रवाई, संवेदनशील क्षेत्रों में सतर्क निगरानी और थाना परिसर की साफ सफाई तथा बेहतर पुलिसिंग सुनिश्चित करने का निर्देश दिया। मौके पर सदर SDPO 2 राजेश कुमार, DIU के प्रभारी हरेंद्र प्रसाद, ओम प्रकाश चौहान एवं थानाध्यक्ष चंदन कुमार सहित अन्य पदाधिकारी गण मौजूद रहे। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर शराब तस्करों के विरुद्ध भी लगातार अलग अलग तरीके से पुलिस अभियान चला रही है। इसी कड़ी में कटिया थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर पकहा इंदिरा नगर के पास वाहन जांच करते हुए एक ई रिक्शा वाहन से 270 लीटर देशी विदेशी शराब को जब्त किया। इस मामले में अभियुक्त मुन्ना पिता स्वर्गीय बिहारी मदेसिया साकिन बनकटा बाजार थाना चौरा खास जिला कुशीनगर उत्तर प्रदेश को गिरफ्तार किया गया। इसके साथ जगदीप मुसहर पिता नगीना मुसहर साकिन कटिया शिवाला थाना कटिया जिला गोपालगंज को भी गिरफ्तार किया गया। अवैध शराब के परिवहन में प्रयुक्त एक ई रिक्शा को जब्त भी किया गया है और इस मामले में उत्पाद अधिनियम के तहत आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी के निर्देश पर कांडों के त्वरित अनुसंधान और अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए लगातार पुलिस प्रभावी कार्रवाई भी कर रही है। इसी कड़ी में मोहम्मदपुर पुलिस ने हत्या के प्रयास के मामले में फरार चल रहे एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि कांड संख्या 223-26 में पुलिस ने छापेमारी करते हुए भूमि विवाद को लेकर एक महिला के साथ मारपीट कर गंभीर रूप से जख्मी करने के मामले में प्राथमिकी दर्ज की थी और इसी मामले में अनुसंधान के बाद पुलिस ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों का गहन विश्लेषण किया। प्राप्त साक्ष्यों के आधार पर कांड के प्राथमिकी अभियुक्त अर्जुन महतो, पिता श्रवण महतो, साकिन मोहम्मदपुर पांडे टोला, थाना मोहम्मदपुर, जिला गोपालगंज को इस कांड में संलिप्तता की पुष्टि होने पर उनके घर से ही विधिवत गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्त के विरुद्ध आगे की विधि संबद्ध कार्रवाई पुलिस के द्वारा की जा रही है। साथ ही आरोपी को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है। वहीं कांड में संलिप्त अन्य नामजद अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए भी मानवीय एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर लगातार पुलिस छापेमारी कर रही है। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के पूर्वी अनुसंधान परिषद पटना के द्वारा 3 दिवसीय अनुसंधान परिषद की बैठक का शुभारंभ किया गया। संस्थान के निदेशक डॉक्टर अनूप दास की अध्यक्षता में यह बैठक शुरू हुई। इसका उद्देश्य संस्थान में संचालित अनुसंधान कार्यक्रमों के प्रगति की समीक्षा करना, नए अनुसंधान प्रस्तावों का मूल्यांकन करना तथा पूर्वी भारत में सतत एवं जलवायु अनुकूल कृषि के लिए भविष्य की अनुसंधान प्राथमिकताओं का निर्धारण करना है। बैठक को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए डॉक्टर राकेश कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप अन्य संस्थानों के सहयोग से बहु विषयक अनुसंधान कार्यक्रम तैयार करने पर बल दिया जा रहा है। उन्होंने किसानों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए प्रभावी जलवायु अनुकूल एवं किसान केंद्रित कृषि प्रौद्योगिकियों के विकास की आवश्यकता पर जोर दिया। संस्थान के वैज्ञानिकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर अनूप दास ने कहा कि वैज्ञानिक किसानों की समस्याओं के समाधान पर केंद्रित नवीन प्रौद्योगिकियों एवं उत्पादों का विकास करें। उन्होंने वैज्ञानिकों से आह्वान किया कि वे इस अवसर का उपयोग परस्पर संवाद, ज्ञान एवं अनुभवों के आदान प्रदान तथा आपसी सहयोग को सुदृढ़ करने के लिए करें, जिससे वैज्ञानिक अनुसंधान को नई दिशा मिले और समाज एवं कृषि क्षेत्र के हित में अधिक प्रभावी परिणाम प्राप्त हो सके। इस अवसर पर डॉक्टर विकास दास, निदेशक राष्ट्रीय लीची अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर, डॉक्टर पीके मिश्रा, निदेशक बामेती पटना, डॉक्टर राघवेंद्र सिंह, निदेशक महात्मा गांधी समेकित कृषि अनुसंधान संस्थान मोतिहारी सहित तमाम वैज्ञानिक गण भी मौजूद रहे। गोपालगंज के सदर अस्पताल में अब नवजात शिशु के जन्म के साथ ही जन्म प्रमाण पत्र दिया जाएगा। गोपालगंज के सिविल सर्जन डॉक्टर मोहम्मद इजराइल ने बर्थ सर्टिफिकेट के नाम पर अवैध वसूली की शिकायतों के बाद यह पहल शुरू की है। उनका कहना है कि किसी भी कर्मचारी के द्वारा सदर अस्पताल के महिला वार्ड में मिठाई या बधाई के नाम पर पैसे मांगने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। जनता से भी उन्होंने अपील किया। उन्होंने कहा कि सदर अस्पताल में किसी को भी किसी तरह का पैसा न दें। इस व्यवस्था से मरीजों और परिजनों को बड़ी राहत मिलेगी। उन्होंने कहा कि अब जन्म के समय ही जन्म प्रमाण पत्र दिया जाएगा। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने प्रत्येक दिन की भांति आज भी अपने कार्यालय में जनता दरबार के माध्यम से जन शिकायतों पर त्वरित सुनवाई की। इस दौरान उन्होंने कांडों की गंभीरता और संवेदनशीलता तथा प्राथमिकता के आधार पर मामलों को सुनते हुए प्राप्त आवेदन और शिकायतों के त्वरित, निष्पक्ष और प्रभावी निष्पादन सुनिश्चित करने के लिए संबंधित पुलिस पदाधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिया तथा प्रत्येक मामले में गुणवत्तापूर्ण कार्रवाई सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया। आने वाले 10 अगस्त को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत विशेष शिविर का आयोजन होगा। पात्र लाभुकों का ऑन द स्पॉट आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और सोलर रूफटॉप की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बैंक प्रतिनिधि भी ऋण सुविधा के लिए मौके पर उपस्थित रहेंगे। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने अधिक से अधिक लोगों से शिविर में पहुँच कर इस योजना का लाभ लेने की अपील की है। माधोपुर थाना की पुलिस ने शराब तस्करी और संगठित अपराध के विरुद्ध अभियान चलाते हुए एक महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। पूर्व में भारी मात्रा में विदेशी शराब बरामदगी के मामले में लंबे समय से फरार चल रहे मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि छापेमारी के दौरान पुलिस ने 267 लीटर से अधिक विदेशी शराब जब्त किया था और इसी मामले में उपेंद्र कुमार, पिता स्वर्गीय मुख्तार प्रसाद, साकिन पंडितपुर थाना सिधवलिया को आरोपी बनाया गया था। यह आरोपी उस वक्त पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। अब इस मामले में पुलिस ने छापेमारी करते हुए आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और इसी मामले में अब उत्पाद अधिनियम के तहत विधिक कार्रवाई की जा रही है। कटिहार थाना की पुलिस ने मारपीट के मामले में गंभीर रूप से घायल एक युवक की इलाज के दौरान मौत हो जाने के मामले में जानकारी दी है। पुलिस ने बताया कि थाना कांड संख्या 397/26 जो 4/8/2026 को पुलिस ने कांड दर्ज कर अनुसंधान शुरू किया था। इसी मामले में कांड की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर एक विशेष टीम का गठन किया गया था। टीम ने मानवीय और तकनीकी साक्ष्यों तथा प्रत्यक्षदर्शियों के बयान पर चार विधि विरुद्ध बालकों को निरुद्ध किया है। इन लोगों से आवश्यक पूछताछ की जा रही है। चारों ने अपनी संलिप्तता इस कांड में स्वीकार की है। चारों बालकों को किशोर न्यायालय में प्रस्तुत किया गया है जहाँ से आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 37 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। अनुकंपा समिति की जिला पदाधिकारी ने की बैठक, 12 मामलों का हुआ निष्पादन। बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन को लेकर जिला पदाधिकारी ने दिया आवश्यक निर्देश। मोहम्मदपुर थाना का पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने किया निरीक्षण। 270 लीटर शराब के साथ दो आरोपियों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जानलेवा हमला करने वाले आरोपी को भी पुलिस ने पकड़ा। इसके साथ ही स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
11: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
12: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
13: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
14: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
13: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
15: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
16: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
15: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
17: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
18: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स। BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
19: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
7: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
20: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
21: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
20: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और X3 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
21: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
20: या अभी कॉल कीजिए 92-899-22567 या 97-714-86-164।
22: अपने जिले के मशहूर डॉक्टर JJ शरण MD फिजिशियन अब बैठ रहे हैं सुबह 10 बजे से आशा मेडिकल जनता सिनेमा रोड गोपालगंज, और डॉक्टर

कैसे अपने जीवन में तमाम तरह के उतार चढ़ाव को बड़े ही अच्छे अंदाज में अपनाया था। उसकी जिंदगी में एक इंसान आया जिसने उसकी तस्वीर को और खूबसूरत बना दिया। उसका नाम था डेविड। डेविड के साथ मीनल की बात बड़ी ही खूबसूरत सी लगती है। दोनों ने कुछ झगड़े की, कुछ नाराजगियां झेली और फिर एक दूसरे से कहीं ना कहीं अपने इश्क को कबूल किया। इस इश्क में तमाम रंग दिखे और एक खास रंग जो दिखा वो रंग था तलाश का। किसी को पाने की तलाश, किसी को चाहने की तलाश, किसी को खोकर उसके पास रहने का मन और फिर अपने वजूद की तलाश। पिछले पन्ने में डेविड ने मीनल को छोड़ दिया था अपना इश्क कबूल करके और उसकी वजह भी कुछ अलग सी बताई थी। अब मीनल क्या करती है अगर ये जानना हो तो आइए पलटते हैं इस रंग के अगले पन्ने को। डेविड ने मीनल को अपने खत में समझाया कि एक कलाकार जो हमेशा से अकेला रहा हो वो किस तरह अपनी एक अलग दुनिया बसा लेता है ताकि उसे जमाने का कोई गम या खौफ ना हो। उसके लिए उसकी अपनी दुनिया से बाहर कुछ नहीं। हाँ, ये हर कलाकार के साथ हो जरूरी नहीं, पर हर आर्टिस्ट कहीं ना कहीं अपनी दुनिया में अपने महबूब की तस्वीर जरूर बनाता है और फिर ताउम्र उस तस्वीर को पाने की कोशिश भी करता है। कई बार ये भी होता है कि वो इस सफर में किसी को हमसफर बना लेता है, पर इससे उसकी तलाश कभी कमजोर नहीं पड़ती। वो अपनी कृति को, अपनी रचना को तलाश करता ही रहता है। पर सबसे बेहतरीन बात तो ये है कि उसकी ये रचना कभी उससे मुलाकात नहीं करती। हाँ, कभी कभी कुछ मिलती सी शक्लें उससे टकरा जरूर जाती हैं। डेविड, मीनल और रोशनी कभी एक हिस्सा था। इससे समझने के लिए बाद में मीनल ने बड़े ही अच्छे और प्यार वाले भाव से डेविड के फैसले की इज्जत की। उसने कभी भी डेविड को किसी बुरे मन से कोई बात नहीं बोली, हमेशा उसको प्यार किया, क्योंकि वो ये जानती थी कि डेविड जहां भी है अभी भी उससे प्यार करता है। मीनल ने अपने इमेजिनेशन की दुनिया में उससे मुलाकात की तस्वीर को बनाया था जिसमें चिट्ठी की लिखी हर बात को डेविड ने उसके आगे कबूल किया हो। उसने उस ख्याली मुलाकात में भी डेविड की आंखों में देखा तो उसे डेविड की आंखों में अपना इश्क कबूल करने का गुरूर और मीनल को अपना ना पाने का दुख एक साथ था। मीनल की भी आंखों में आंसू थे। उसने डेविड के प्यार को सही समझा था। उसने डेविड के हाथ को थामा और उससे कहा कि वो हमेशा उसी से ही प्यार करेगी। हाँ, अपने पहले इश्क के अधूरे रहने का बड़ा अफसोस था उसको, जिसकी उसने दबे शब्दों में शिकायत भी की डेविड से। पर डेविड के दर्द के आगे वो अपने दर्द को उजागर नहीं करना चाह रही थी। डेविड का भी तो इश्क अधूरा रह गया था। डेविड ने अपनी जिंदगी में बस एक शक्ल और एक तरह की इमेजिनेशन को प्यार किया पूरी तरह से डूब के, पर अब वो उसके सामने थी और वो उसे कबूल नहीं कर सकता था। बड़ा अजीब सा होता है वो मंजर जब मंजिल सामने हो और आप उससे मुंह फेरने को मजबूर हो। मीनल ने डेविड को उसकी जिंदगी को नई दिशा और नया हौसला देने के लिए धन्यवाद दिया। उसने उसके अंदर के बच्चे को जिंदा रखने का प्रोत्साहन दिया। डेविड हमेशा चाहता था कि मीनल हमेशा अपने अंदर की सच्चाई और अपने अंदर के बच्चे को सलामत रखे, क्योंकि ये वो बचपना ही तो था जिसने बिना किसी रहस्य के अपने इश्क को कबूल करने की ताकत दी। ये वो बचपना ही तो था जिसमें पाने की जिद तो होती है पर खोने का गम नहीं होता। ये बचपना ही तो है जिसमें हर किसी को चाहने की हिम्मत होती है। इश्क को अपने हिसाब से कबूल करना भी भला है। मीनल और डेविड अपने किस्सों की मसरूफियत में खोए रहते तो ही अच्छा था, पर यूं साथ आकर भी साथ ना रह पाने की तड़प ने आंसुओं का दामन भी रह रह कर छेड़ा था। वो आंसू अक्सर उन्हें उनके इश्क में रहते हुए भी साथ ना रहने के दर्द को उजागर कर रहे थे। ये दर्द तो था पर साथ में अपने इश्क को कबूल करने की खुशी भी थी। वक्त गुजरा था।

0: कई बार मीनल को एक अनजान शख्स की चिट्ठी मिलती थी जिसमें किसी ना किसी पेंटिंग एग्जीबिशन की डिटेल्स लिखी होती थी। मीनल उस चिट्ठी को अनजान ही मानती पर अंदर ही अंदर मुस्कुराती थी और साथ में वहां जरूर पहुंचती थी। एक उम्मीद अक्सर रहती थी कि शायद आज डेविड वहां मिले और उससे अपनी बात करे, पर ये उम्मीद ये तलाश एक अलग ही रंग दिखा रहे थे और यकीनन ये रंग इश्क का था।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: सुनिए,
5: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
4: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
5: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
4: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
6: ठक ठक।
7: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा, मिला ही नहीं
7: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
7: आप भी आए कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
2: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
1: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
2: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
1: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
2: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
1: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
2: संपर्क करें 84710-30992 या 9765-65750।
9: आप सुन रहे हैं एक रंग इश्क का।
0: कभी कभी मीनल खुद से डेविड के सामने इमेजिन करके एक बात कहती और जवाब भी डेविड से ले लेती थी। हाँ, दुनिया इमेजिनेशन वाली थी पर इश्क से बनाई हुई। मीनल बोलती, आप कभी भी मुझे किसी और से इश्क करने पे या किसी और का हो जाने के लिए मजबूर नहीं करोगे। अब मैं ताउम्र सिर्फ आपसे इश्क निभाऊंगी। हम कभी भी एक ना होंगे पर साथ जरूर रहेंगे। मुझे जमाने की फिक्र नहीं है, वो उनको ताने मारते हैं जो कमजोर होते हैं। मैं और मेरा इश्क कमजोर नहीं, आप रहोगे ना मेरे साथ। और फिर डेविड बन के जवाब भी दे दिया करती,
10: मीनल मैं तुम्हारे किसी भी फैसले के आगे कभी नहीं आऊंगा। तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहो जियो, और हाँ, मेरा इश्क कबूल करने के लिए शुक्रिया।
0: मीनल अपनी कविताओं और कहानियों में अपनी जिंदगी को बुनती थी और साथ में ये भी सोचती थी कि डेविड चाहे जहां होंगे, अपनी पेंटिंग्स के रंग से मीनल को रंग रहे होंगे। दोनों ने अपनी जिंदगी को एक अलग ही मुकाम दिया था। ये रिश्ता शायद समाज की समझ से बाहर हो, पर ये इश्क है। इश्क किसी अनपढ़ की जेब में है और कहीं कहीं ज्ञानियों के जद के बाहर भी। इश्क का कोई रूप रंग आकार नहीं, ये हर रंग का है, हर ढंग का है। कभी मौसम की तब्दीली इश्क है, कभी किसी की ठिठोली इश्क है। इश्क को हर कोई अपने रंग में रंगता है और इसी रंग में अपना रंग मिलाया था गीतांजलि कशिश्ना जी ने। कहानी को पढ़ने के बाद तालियों की गड़गड़ाहट हुई। कई आंखें नम भी थी, कुछ को मीनल से हमदर्दी थी, तो कुछ इस रंग में आज भी डूबे हुए थे। वो जिनकी शिकायतें थी कि हमने इश्क में पाया नहीं, उनके चेहरे पे एक जवाब सा घूम रहा था जो गीतांजलि जी ने अपने ही अंदाज में उन्हें दिया था। तालियों की गड़गड़ाहट के बाद गीतांजलि जी ने कहा, मैं शुक्रगुजार हूं आप सभी की जो आपने इतनी बेहतरी से मुझे सुना। मेरी उम्मीद है कि आपको भी मीनल का अंदाज और उसका फैसला पसंद आया होगा। अभी अशोक जी मुझसे पूछ रहे थे कि एक रंग इश्का के बाद मैंने मीनल को किसी और कहानी में क्यों नहीं लिखा, आखिर क्यों मीनल जैसे मजबूत किरदार को मैंने आराम दे दिया। तो आप भी इस बात को समझें कि हर किरदार जिंदगी में सिर्फ अपना ही रोल प्ले करता है, उसका किस्सा खत्म होने के बाद उसको आराम करने देना चाहिए। किसी और के लिबास में किसी और की शक्ल तलाश नहीं करनी चाहिए, वरना जिंदगी डेविड से हो जाएगी। खैर, आप सभी की फरमाइश पे वो आखिरी पोयम उस किताब की आपके सामने जरूर रखूंगी जो किताब की जिल्द पे पीछे लिखी है। पर हाँ, उससे पहले आप सभी का एक और बार शुक्रिया जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि आपने मुझे बड़ी ही बेहतरीन तरीके से सुना। लोग अक्सर अपनी बात बताते हुए बड़ी शिद्दत से बात कर जाते हैं, पर जब बारी सुनने की आती है तो हड़बड़ाहट दिखा देते हैं। पर आप सबने मुझे बड़ी ही सुकून से सुना, इसके लिए मैं आपका जितना एहसान मानूं वो कम होगा। वैसे एहसान ना भी मानूं तो चल जाएगा, क्योंकि आपने भी तो एक बेहतरीन कहानी सुनी, फायदा तो आपका भी हुआ। खैर, अब वो जिल्द का आखिरी पन्ना जो पीछे की लिखी बात है कि जो आया तेरी समझ में फिर इश्क नहीं, जो रहा तेरी जद में फिर इश्क नहीं। इश्क में अक्सर होते हैं हादसे, जो पाया तुमने हरदम फिर इश्क नहीं। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच गीतांजलि जी उठी। सबका ध्यान उनकी किताब और उनके अंदाज पे रहा, पर मेरी निगाहों में मीनल अभी भी तैर सी रही थी। गीतांजलि जी के पीछे ही एक जवान सी लड़की मुझे नजर आने लगी थी। वो पूरा मंजर मेरे लिए शांत सा हो गया था। गीतांजलि जी के पीछे वो लड़की अलहड़ सी, मुस्कुराती सी, नाचती सी नजर आ रही थी, पर मैं उसकी सूरत देख सकती थी। फिर गीतांजलि जी ने अपना लाल बैग उठाया, उन्होंने अपनी शॉल जो लाल थी उसे संभाला और मेरी तरफ देखा। मैं साहसा उन्हें देख के मुस्कुरा उठी और गीतांजलि जी ने भी जैसे कुछ समझा हो और मुझे देख के एक बच्चे वाली हंसी हंस दी। क्या ये मीनल तो नहीं? मुझे एक अलग तरह की बात ने जकड़ लिया था। मैं इसके बाद अपने चेहरे पे कई तरह के सवाल लिए गीतांजलि जी के पास पहुंची और उनसे एक बेतुका सा सवाल कर बैठी। मैंने पूछा, इसके बाद आप कहाँ जाएंगी? गीतांजलि जी ने मेरे कान के करीब आकर धीरे से जवाब दिया, आज भी एक चिट्ठी आई है, साथ में आ जाना, रंग इश्क का है। कभी बिछड़ भी जाना रंग इश्क का है, कभी खुद से सब छुपा लेना दर्द में, कभी सबको सुनाना रंग इश्क का है। ये थी कहानी मीनल की, एक रंग इश्क का में।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है।
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं। तो अब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
3: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
2: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
3: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
2: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान लिया।
3: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिया, दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
4: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
2: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
5: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
6: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
5: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
7: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
8: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
9: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
10: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
9: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
10: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
9: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
10: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
9: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
10: कॉल करें 7070-7563-100 या 7070-7542-400 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
11: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
12: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
11: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
12: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99399-66999।
10: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
9: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
10: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर गोपालगंज, S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।

0: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
0: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
0: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5 से 25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक, गोपालगंज, या कॉल करें 86 034 48 652 पे।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
1: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: राजा रे

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
1: ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
2: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 916293-3538।
2: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
2: बोलबम हर हर महा

0: ग्रेट डे. नमस्कार.
1: बेटा, मैं कल अपने भतीजे के घर होके आया. मैं देखकर हैरान रह गया कि वो लोग दिन भर एसी चलाते हैं, रोज वॉशिंग मशीन चलाते हैं, घर में दो दो फ्रिज हैं, फिर भी उसका बिजली बिल पता है कितना आता है? जीरो. मैंने पूछा तो भतीजा बोला, चाचा जी, सब ऊपर वाले की दया है. मतलब सोलर पैनल की. मैंने सोचा अब तो लगवाना ही पड़ेगा.
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना. जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर.
3: हर घर सूर्य घर.
4: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा? याद रखिए, समाधान आपके पास है. टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें. कहीं से भी कभी भी 24 घंटे यह सुविधा उपलब्ध है. यहाँ आपकी बात सुनी जाती है, समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है. आप अकेले नहीं है, मदद बस एक कॉल दूर है.
0: नमस्कार. आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा. मुख्य समाचार. केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की. लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया. झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से दो कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए. और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की रक्षिता रामराज से. अब समाचार विस्तार से. केंद्र सरकार ने गोवा के विधानसभा क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रतिनिधित्व के पुनः समायोजन अधिनियम 2025 लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है. हमारे संवाददाता ने बताया है कि इससे गोवा में अनुसूचित जनजातियों के लिए विधानसभा सीटों का आरक्षण सुनिश्चित हो गया है.
5: भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के अनुसार यह अधिनियम 6 अगस्त 2026 से प्रभावी हो गया है. इससे राज्य की अनुसूचित जनजाति समुदायों की लंबे समय से प्रलंबित मांग पूरी हुई है और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्समायोजन तथा सीटों के आरक्षण की प्रक्रिया आगे बढ़ सकेगी. गोवा के मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत ने कहा कि यह अधिनियम अनुसूचित जनजाति समुदायों को लंबे समय से अपेक्षित न्याय और राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. डॉ. सावंत ने इस कानून को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि यह सबका साथ सबका विकास की भावना को प्रतिबिंबित करता है. महेश सोप्रेक, आकाशवाणी समाचार, पणजी.
0: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है. इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस यूपीआई और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है.
6: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है. साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं पीएसपी और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है. सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर एमडीआर वसूलने से रोकता है. वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट आरटीजीएस और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर एनईएफटी के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है. यूपीआई लेनदेन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं. भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया. सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया. समाचार कक्ष से शक्ति सिंह.
0: पत्तन पोत और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने देश की समुद्री सुरक्षा व्यवस्था में प्रौद्योगिकी आधारित परिवर्तन का आह्वान किया है। नई दिल्ली में दूसरे राष्ट्रीय बंदरगाह सुरक्षा सम्मेलन में उन्होंने कहा कि देश के बढ़ते बंदरगाह नेटवर्क और वैश्विक व्यापार में बढ़ती भूमिका के लिए ऐसे सुरक्षा तंत्रों की आवश्यकता है जो लचीले, एकीकृत और उभरते साइबर तथा भू राजनीतिक खतरों का मुकाबला करने में सक्षम हों। उन्होंने कहा कि सुरक्षा को ध्यान में रखकर सरकार कई अहम कदम उठा रही है।
7: देश की सुरक्षा सर्वोपरि है और उसी के आधारित अगले दिनों पर हम ऐसा एक कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल ब्यूरो ऑफ नेशनल पोर्ट सिक्योरिटी गठन करेंगे, जिससे जनता की अपेक्षा के मुताबिक हम अपने कर्तव्य को निष्ठापूर्वक निभा पाए। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 12 साल में हम जो तरक्की की है आज दुनिया ने देखी है। पोर्ट्स इंडस्ट्री मैरिटाइम एक्सपर्ट टुगेदर ऑन वन प्लेटफॉर्म।
0: देश ने उड़ीसा के चांदीपुर में एकीकृत परीक्षण रेंज से मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि 4 का सफल परीक्षण किया है। रक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस परीक्षण से मिसाइल के सभी परिचालन और तकनीकी मापदंडों की पुष्टि हुई है। ये परीक्षण सामरिक बल कमान के तत्वावधान में किया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सामरिक बल कमान और रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन को इस सफल मिशन पर बधाई दी है। झारखंड में नौकरियों की भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरुद्ध रांची में विरोध प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। प्रदर्शनकारी विद्यार्थियों ने इस मुद्दे को सुलझाने में राज्य सरकार से बातचीत करने के लिए 11 सदस्यीय दल का गठन किया है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि जेपीएससी और जेएसएससी भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर रांची में चल रहा आंदोलन एक महत्वपूर्ण चरण में प्रवेश कर चुका है।
8: झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों का आंदोलन आज 14वें दिन भी जारी है। राजधानी रांची में 6 छात्र भूख हड़ताल पर बैठे हैं। कल शाम आंदोलनरत छात्रों ने जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम से फ्लैशलाइट मार्च निकालकर अपना विरोध दर्ज कराया। इसके बाद रांची सदर के SDM रजत कुमार और ADM धनंजय कुमार ने धरना स्थल पहुंचकर छात्रों से मुलाकात की। छात्र नेताओं का कहना है कि कल शाम तक राज्य सरकार की ओर से वार्ता का कोई औपचारिक निमंत्रण नहीं मिला था। हालांकि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की बातचीत के लिए दरवाजे खुलने के बयान के बाद छात्रों ने सरकार से वार्ता के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल का गठन किया है। इस मुद्दे को लेकर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन विपक्षी NDA विधायकों ने विधानसभा परिसर में प्रदर्शन कर CBI जांच की मांग की। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि यदि 13 अगस्त तक राज्य सरकार कोई निर्णय नहीं लेती है तो वो भी छात्रों की भूख हड़ताल में शामिल होंगे। महविश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज़ ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्र मार्गरेटा भी कार्यक्रम में उपस्थित रहेंगे। एक रिपोर्ट।
9: इस समारोह का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के लिए संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार होगा। कुल 22 बुनकरों को उनके शिल्प कला, नवाचार और भारत की हथकरघा परंपराओं को संरक्षित करने में योगदान के लिए पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परंपरा पर आधारित 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए जाएंगे। 2 प्रकाशन अर्थ और रूट तथा मध्य भारत में ऑल डाई से रंगे जाने वाले हथकरघा थ्रेड वस्त्र और हथकरघा पुरस्कार पुस्तक 2025 का भी अनावरण किया जाएगा। इस अवसर पर पारंपरिक कानी बुनाई और वॉल हैंगिंग बुनाई की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 2015 में इसकी शुरुआत के बाद से शिल्प कला, कौशल और देश के हथकरघा बुनकरों के समर्पण का उत्सव मनाने के लिए इसका आयोजन किया जाता है। समाचार कक्ष से मैं जया भारती।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है। एक वीडियो संदेश साझा करते हुए श्री मोदी ने लोगों को बुनकर परिवारों को समर्थन देने के लिए प्रेरित किया। श्री मोदी ने देशवासियों से कम एक हथकरघा उत्पाद खरीदने और इससे संबंधित एक वीडियो बनाकर साझा करने का आग्रह किया।
10: मैं आज आग्रह करता हूँ, 7 अगस्त हैंडलूम डे होता है, हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्मजात नागरिकता को सीमित करने और केवल बच्चे को जन्म देने के उद्देश्य से अमेरिका जाने वाले पर्यटकों पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए हैं। उन्होंने कहा कि उनका प्रशासन अमेरिकी आव्रजन प्रणाली के दुरुपयोगों पर कड़ी कार्रवाई कर रहा है। एक रिपोर्ट।
11: व्हाइट हाउस के अनुसार आदेश में विदेशी नागरिकों के उन बच्चों की श्रेणियों की पहचान की गई है जो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मान्यता प्राप्त ऐतिहासिक अपवादों के तहत जन्मजात नागरिकता के पात्र नहीं होंगे, जबकि दूसरा आदेश देश और गृह सुरक्षा विभागों को जन्म पर्यटन को समाप्त करने का निर्देश देता है, जिसमें विदेशी नागरिक मुख्य रूप से अपने बच्चों के लिए नागरिकता प्राप्त करने के उद्देश्य से अमेरिका की यात्रा करते हैं। समाचार कक्ष से मैं मनोज।
0: मौसम विभाग ने आज तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, राजस्थान, केरलम, माहे, उड़ीसा और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्रों, दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र, कर्नाटक और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में भी दिन के दौरान तेज वर्षा हो सकती है। असम में इस साल बाढ़ से मरने वालों की संख्या बढ़कर 97 हो गई है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
12: असम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार करगोलाघाट और उदालगुरी जिलों में बाढ़ से एक एक व्यक्ति की मृत्यु हुई। राज्य में अब तक 480 से अधिक गांव बाढ़ की चपेट में हैं, जबकि हजारों लोग राहत शिविरों में रह रहे हैं। शिवसागर, गोलाघाट, चोरहाट और सरायदेव जैसे सर्वाधिक प्रभावित जिलों में बाढ़ की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। बाढ़ के बाद की स्थिति से निपटने के लिए सरकार ने प्रभावित इलाकों में स्वास्थ्य शिविरों और चिकित्सा सेवाओं को तेज कर दिया है। जल जनित बीमारियों की रोकथाम और प्रभावित लोगों को स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। राकेश तोले, आकाशवाणी समाचार, गुवाहाटी।
0: कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का मुकाबला भारत की ही रक्षिता रामराज से होगा। अश्मिता चालिया का सामना जापान की हिना अकेची से होगा। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
13: धन्यवाद प्रियंका। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति में लागू नहीं हो सकती क्रीमी लेयर प्रणाली। सर्वोच्च न्यायालय में केंद्र सरकार के हलफनामे को नवभारत टाइम्स सहित अधिकांश अखबारों ने प्रमुखता दी है। मंत्रिमंडल के फैसलों पर भी अखबारों की नजर है। हिंदुस्तान ने लिखा है बायोगैस उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए गोबरधन योजना को मंजूरी। सीएनजी और पीएनजी में क्रमिक तरीके से 5% तक बायोगैस को मिलाया जाएगा। दैनिक भास्कर की सुर्खी है देश में डीप फेक कंटेंट से निपटने के लिए नए आईटी नियम लागू। अब 36 नहीं 3 घंटे में हटाना होगा एआई से बना फर्जी वीडियो। हिंदुस्तान ने कुछ अलग शीर्षक से लिखा है बीमा दावा निपटान में देरी पर 2% ब्याज के साथ दावे की रकम दी जाएगी। दावे की प्रक्रिया पारदर्शी, आसान और जवाबदेह बनाने के लिए कई अहम बदलाव किए गए। जेंजी हमारी पीढ़ी से अधिक ईमानदार, उनकी बात सुननी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के इस बयान को अमर उजाला सहित अधिकांश अखबारों ने प्रकाशित किया है। 2013 के दुष्कर्म मामले में तहलका के पूर्व संपादक तेजपाल को 10 वर्ष कैद की सजा मिलने के बंबई उच्च न्यायालय के फैसले को दैनिक जागरण सहित सभी अखबारों ने दिया है। हिन्दुस्तान ने अपने संपादकीय में लिखा है तरुण तेजपाल के प्रति नरमी बरतने का आधार नहीं है, महिला सुरक्षा के लिए जो कानून बने हैं उनका पालन होना ही चाहिए। वायुसेना की पहली महिला टॉप गन बनी भावना कंठ। राजस्थान पत्रिका ने बताया है कि स्क्वाड्रन लीडर भावना ने ग्वालियर स्थित टेक्सटिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट का प्रतिष्ठित लड़ाकू प्रशिक्षण कार्यक्रम फाइटर कॉम्बैट लीडर कोर्स पूरा कर ये उपलब्धि हासिल की।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्र सरकार ने गोवा में अनुसूचित जनजाति समुदाय को राजनीतिक आरक्षण देने से जुड़े अधिनियम की अधिसूचना जारी की। लोकसभा ने यूपीआई लेन देन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। झारखंड में विरोध प्रदर्शन कर रहे विद्यार्थियों ने राज्य सरकार से बातचीत के लिए 11 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल का गठन किया। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जन्म आधारित नागरिकता पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से 2 कार्यकारी आदेशों पर हस्ताक्षर किए और कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स क्वार्टर फाइनल में आज तन्वी शर्मा का

0: RI कॉलेज रोड गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS MS, एक्स रेसिडेंट KGMU लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता: कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
3: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
3: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी या दाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
4: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
5: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
6: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
4: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
2: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
4: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
5: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: गोपालगंज। अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 या 9656 57902।
2: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
4: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
5: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
5: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं, उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
0: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
1: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
0: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512 11001।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन हर रंग हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करें 87-894-18744।
5: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
5: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
5: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
8: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
9: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86-034-48-652 पे।
10: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
11: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
12: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
13: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
12: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94-704-34-468 पे।

0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
3: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
4: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
3: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
5: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
6: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
5: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
6: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
5: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
8: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
8: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
8: जानकारी है तो कॉल करें 6052 62112 पे।

0: तब भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में, महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री। कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
4: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
3: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
4: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
0: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
4: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
0: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
4: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
0: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
5: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

0: क्या?
1: नहीं
0: कप्तान, क्या तुझे यकीन नहीं है?
1: हाँ पार्टनर, यकीन है, पूरा यकीन है। अगर मैं कूदा मत तो मैं मर जाऊंगा।
2: साले डर गया, ट्यूबलाइट
0: गिर गया। साले इतने हंसाए, तू कूद गया?
2: अब मैं पागल नहीं हूँ तेरी तरह, मर जाएगा किसी दिन, लाश भी नहीं मिलेगी।
0: क्यों?
2: तो क्या हुआ? अबे आत्मा भटकती रहेगी तेरी, शांति नहीं मिलेगी।
0: अगर ये लाश नहीं मिली ना तो जला देना मेरी चीजें, मेरे कपड़े, मेरे जूते और उसकी राख नदी में बिखेर देना, मिल जाएगी मेरी आत्मा को शांति। अब तू भी खुद मेरे साथ।
3: पटना है, अब आप समी अहमद से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश के साथ फरक्का जल संधि पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। और तेल कंपनियों ने कहा 16 अगस्त तक EKYC नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू दर पर गैस सिलेंडर आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। अब समाचार विस्तार से। जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश के साथ फरक्का जल संधि पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया है। राज्यसभा में विशेष उल्लेख के जरिए मुद्दे को उठाते हुए श्री झा ने कहा कि यह संधि देश और विशेषकर बिहार के हितों के खिलाफ है।
4: मैं भारत सरकार से आग्रह करता हूं कि फरक्का वाटर ट्रीटी 1996 का रिन्यूअल न किया जाए, वो देश के इंटरेस्ट के खिलाफ है, खास करके बिहार के इंटरेस्ट के खिलाफ है। इसके स्थान पर बिहार सहित सभी बेसिन स्टेट्स की जल आवश्यकताओं का साइंटिफिक आकलन कर नई व्यवस्था बनाई जाए। जब तक बिहार की जल सुरक्षा, कृषि, पेयजल तथा विकास संबंधी आवश्यकताओं की पर्याप्त गारंटी सुनिश्चित न हो, तब तक ट्रीटी का रिन्यूअल बिहार के दीर्घकालिक हितों, विकास की संभावनाओं तथा करोड़ों लोगों के आजीविका के प्रतिकूल होगा।
3: लोकसभा ने भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 में संशोधन करने वाला विधेयक पारित कर दिया है। इसके अंतर्गत सरकार को बैंकों और अन्य सेवा प्रदाताओं को एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI और अन्य अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान साधनों के माध्यम से किए गए भुगतानों पर शुल्क लगाने की अनुमति दी गई है। एक रिपोर्ट।
5: सरकार का उद्देश्य उपभोक्ताओं और छोटे व्यवसायों के लिए डिजिटल भुगतान सेवाओं पर मामूली शुल्क लगाना है। साथ ही बैंकों, भुगतान सेवा प्रदाताओं, PSP और डिजिटल भुगतान प्रणाली को संचालित करने वाली भुगतान और संरचना फर्मों के लिए एक स्थायी राजस्व मॉडल सुनिश्चित करना है। सदन द्वारा पारित संशोधन में उस मौजूदा कानून प्रावधान को हटाने का प्रयास किया गया है जो बैंकों और भुगतान सेवा प्रदाताओं को अधिसूचित इलेक्ट्रॉनिक भुगतान माध्यमों पर व्यापारी छूट दर MDR वसूलने से रोकता है। वहीं रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट RTGS और नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर NEFT के माध्यम से किए गए रियल टाइम भुगतानों पर पहले से ही ऐसा शुल्क लगता है। UPI लेनदेन अब तक ऐसे शुल्कों से मुक्त रहे हैं। भुगतान तथा निपटान प्रणाली अधिनियम में प्रस्तावित परिवर्तन कराधान पर व्यापक कानून का हिस्सा है जिसे मंगलवार को सदन में पेश किया गया। सदन की कार्यवाही के पहले स्थगन के बाद दोपहर 2 बजे फिर शुरू होने पर लोकसभा में विधेयक पारित किया गया। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
3: खान और भूतत्व मंत्री डॉक्टर प्रमोद कुमार ने कहा है कि प्रदेश में 1000 खनन सिपाहियों की बहाली होगी और इसका अलग कैडर बनाया जाएगा। खनन सिपाहियों की बहाली बिहार राज्य कर्मचारी चयन आयोग से होगी। पटना में पत्रकारों से बातचीत में श्री कुमार ने कहा कि नई बहाली से खनन प्रक्रिया में पारदर्शिता आने के साथ ही अवैध खनन के खिलाफ कार्रवाई करने में मदद मिलेगी। मंत्री ने कहा कि सरकार नदियों की गाद से ईंट बनाने की योजना पर विचार कर रही है। श्री कुमार ने जानकारी दी कि नवादा जिले में पत्थर खनन के 8 पट्टों के लिए निविदा प्रकाशित कर दी गई है, जबकि औरंगाबाद, गया, शेखपुरा तथा बांका में पत्थर खनन पट्टों के लिए 15 अगस्त तक निविदा जारी कर दी जाएगी। केंद्र सरकार ने कहा है कि अनुसूचित जाति जनजाति आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान सरकार ने कहा कि संविधान और न्यायिक फैसलों में कहीं भी यह नहीं कहा गया है कि क्रीमी लेयर का सिद्धांत SC/ST Act आरक्षण पर लागू होता है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग की तर्ज पर एससी एसटी आरक्षण में क्रीमी लेयर लागू करने की कोई योजना नहीं है। केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री डॉक्टर राजभूषण चौधरी ने कहा है कि विकसित भारत 2047 के सफर में जल एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। नई दिल्ली में ईएडब्ल्यू ग्लोबल एक्वा एक्सपो के 21वें संस्करण के उद्घाटन के दौरान श्री चौधरी ने कहा कि इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक सामूहिक दृष्टिकोण की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि इसमें सरकार, उद्योग, प्रौद्योगिकी, नव प्रवर्तक, शोधकर्ता और समुदाय मिलकर टिकाऊ, लचीली और भविष्य के लिए तैयार जल प्रणालियों का निर्माण करें। गौरतलब है कि यह प्रदर्शनी जल और अपशिष्ट जल प्रबंधन के क्षेत्र में भारत की सबसे पुरानी और प्रमुख प्रदर्शनियों में से एक है। पटना स्थित बिहार संग्रहालय आज अपना 11वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बिहार संग्रहालय स्थापना दिवस कार्यक्रम का शुभारंभ करेंगे। बेली रोड स्थित संग्रहालय में इस अवसर पर आयोजित 3 दिवसीय समारोह में कई कला प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों और नृत्य तथा गायन की प्रस्तुतियां होंगी। संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने बताया कि इस अवसर पर देश के 100 से ज्यादा कलाकारों की विशेष प्रदर्शनी लगाई जा रही है।
6: इस वर्ष हम लोग अपने स्थापना दिवस पे हिंदुस्तान के, देश के 100 से ज्यादा प्रमुख कलाकार हैं, उनकी एक प्रदर्शनी लगा रहे हैं। पहली बार होगा जबकि सारे लोग एक ही जगह, जितने देश में बड़े कलाकार हुए हैं उनकी प्रदर्शनी एक साथ देख सकते हैं। और ये एक बहुत बड़ी इवेंट है, खासकर बिहार के लिए और ईस्टर्न इंडिया के लिए।
3: देश में 9 अगस्त शुरू हो रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम को लेकर व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। प्रदेश में भी इसे लेकर तैयारियां अंतिम चरण में हैं। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से आग्रह किया है कि हर घर तिरंगा कार्यक्रम में इस बार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के सम्मान में इसका गायन करते हुए तिरंगे के साथ वीडियो बनाकर अपलोड करें।
7: और मैं आप सबसे आग्रह करता हूं, अनुरोध करता हूं कि वंदे मातरम का जब 150 वर्ष का प्रारंभ किया था तब माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथ से हमने एक वेबसाइट शुरू की थी, उस वेबसाइट को हमने और इवॉल्व किया है और अधिक विकसित किया। आज संगीत के साथ में कराओके के माध्यम से देश का हर नागरिक वंदे मातरम को गाए, अभ्यास करे और अपना वंदे मातरम के साथ में सेल्फी लेकर के अपना फोटो अपलोड करे।
3: आकाशवाणी पटना से प्रसारित हो रहे भोजपुरी समाचार बुलेटिन के प्रसारण समय में बदलाव किया गया है। यह समाचार बुलेटिन आज से प्रतिदिन संध्या 5:30 से सुना जा सकता है। भोजपुरी समाचार बुलेटिन का प्रसारण आकाशवाणी पटना के साथ ही 101.6 मेगाहर्ट्ज पर एफएम रेनबो चैनल पर भी सुना जा सकेगा। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। 7 अगस्त 1905 को शुरू हुए स्वदेशी आंदोलन की स्मृति में प्रतिवर्ष यह दिवस मनाया जाता है। हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्रालय आज राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में एक राष्ट्रीय कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। इस कार्यक्रम में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह और राज्य मंत्री पवित्रा मार्गरेटा भी कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। वस्त्र मंत्रालय ने बताया कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत के उत्सव को मनाना तथा राष्ट्र के सांस्कृतिक और आर्थिक विकास के लिए हथकरघा बुनकर समुदाय के योगदान को मान्यता प्रदान करना है। हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश में भी कई कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। इधर इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने का आग्रह किया है।
1: मैं आज आग्रह करता हूँ 7 अगस्त हैंडलूम डे होगा। हमने उत्साह और उमंग के साथ हैंडलूम डे मनाना है। हमारा काम है आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए हमारे इन छोटे छोटे छोटे गरीब परिवारों को भी आर्थिक रूप से समृद्ध करना। आइए हम स्वयं हैंडलूम से कुछ न कुछ खरीदे, उसका एक वीडियो बनाए और देश और दुनिया में उस वीडियो को प्रचारित करें, ताकि हमारे बुनकर भाई बहनों के सामर्थ्य का परिचय दुनिया को भी हो।
0: सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों ने कहा है कि 16 अगस्त तक EKYC नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू दर पर गैस सिलेंडर आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। कंपनियों के अनुसार प्रदेश में लगभग 59 लाख LPG उपभोक्ताओं ने EKYC नहीं कराया है। कंपनियों ने उपभोक्ताओं से EKYC की प्रक्रिया को कंपनी के मोबाइल ऐप के माध्यम से पूरी करने का आग्रह किया है। संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती आज श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। इसके लिए प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कला और संस्कृति विभाग की ओर से इस मौके पर समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की जा रही है। इसका शुभारंभ मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश की संभावना जताई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान औरंगाबाद, गया, भभुआ और रोहतास जिले में भारी बारिश की चेतावनी है। वहीं राज्य के शेष स्थानों पर आंधी, बारिश और वज्रपात का अलर्ट है।
2: दिनांक 7 अगस्त को राज्य के दक्षिण पश्चिम भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ तेज हवा 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है। राज्य के औरंगाबाद, भभुआ, गया एवं रोहतास जिलों में भारी वर्षा होने की संभावना है।
0: इधर पिछले 24 घंटों के दौरान खगड़िया जिले में सबसे अधिक 230.3 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। समस्तीपुर के विद्यापति नगर में 130 मिलीमीटर, गया के वजीरगंज में 111, नवादा के हिसुआ में 104 और पश्चिम चंपारण के वाल्मीकि नगर में 103.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। पटना में आयोजित 52वीं बिहार राज्य जूनियर बालक कबड्डी चैंपियनशिप का खिताब सारण ने जीत लिया है। पाटलिपुत्र स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए फाइनल मुकाबले में सारण ने शानदार प्रदर्शन करते हुए बक्सर को 49-45 से हराकर खिताब अपने नाम किया। प्रतियोगिता में पटना और भोजपुर को तीसरे स्थान से संतोष करना पड़ा। जमालपुर रेल यार्ड में खड़े रेल इंजनों से हो रही कॉपर पाइप चोरी के मामले में रेलवे सुरक्षा बल ने चोरी की संपत्ति खरीदने वाले एक व्यक्ति समेत 2 आरोपितों को गिरफ्तार किया है। छापेमारी के दौरान 60 फीट न्यूमेटिक कॉपर पाइप बरामद किया गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 6 करोड़ रुपये है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत सोलर संयंत्रों की स्थापना को बढ़ावा देने के मकसद से आज सहरसा विकास भवन परिसर में सोलर सह लोन मेला का आयोजन किया जाएगा। पटना से भोपाल के बीच सीधी उड़ान सेवा 10 अगस्त से शुरू हो रही है। जयप्रकाश नारायण अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पटना प्रशासन के अनुसार यह साप्ताहिक फ्लाइट 72 सीटों वाली होगी। पटना हवाई अड्डे ने इस महीने विमानों के लिए नया कार्यक्रम जारी किया है। इसके तहत पटना हवाई अड्डे से अब प्रतिदिन 78 विमान उड़ान भरेंगे। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने प्रदेश में औद्योगिक निवेश से जुड़ी खबरों को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान ने इस खबर को सुर्खी बनाते हुए लिखा है, इस्पात, कपड़ा और परमाणु ऊर्जा में 51,000 करोड़ रुपए का निवेश होगा। दैनिक जागरण लिखता है, शनिवार को अब सरकारी विद्यालयों में होगा हाफ डे, सुबह 9:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक खुलेंगे विद्यालय। दैनिक भास्कर ने आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हवाले से लिखा है, जेन जी ईमानदार, उनका गुस्सा जायज, विरोध में संवाद, विरोध भी संवाद का तरीका। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्यसभा सांसद संजय कुमार झा ने केंद्र सरकार से बांग्लादेश के साथ फरक्का जल संधि पर पुनर्विचार करने का आग्रह किया। लोकसभा ने यूपीआई लेनदेन पर बैंकों को शुल्क लगाने की अनुमति देने के लिए सरकार को अधिकृत करने वाला विधेयक पारित किया। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों से हथकरघा उत्पादों को बढ़ावा देने का आह्वान किया। और तेल कंपनियों ने कहा, 16 अगस्त तक ईकेवाईसी नहीं कराने वाले उपभोक्ताओं को घरेलू दर पर गैस सिलेंडर आपूर्ति अस्थायी रूप से बंद कर दी जाएगी। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
3: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
4: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
5: सुनिए,
6: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
5: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
6: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
5: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
7: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434068 पे।
11: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
12: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
11: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
12: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
11: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
12: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा?
13: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
11: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
14: नन्ना मुन्ना लाही हूँ, देश का सिपाही हूँ।
15: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
14: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
15: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
14: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
16: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
17: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
16: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
17: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम एक डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
16: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
17: जानकारी है तो कॉल करे 6205-62112 पे।
18: हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त RJ मनोरमा और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और समय हो गया हेलो माई चॉइस का, तो समय के साथ बिल्कुल हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 8029994911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और सुन सकते हैं अपने गाने की फरमाइश। और अब बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल।
19: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
20: जी, मैं मनन बोल रहा हूँ।
19: जी जी, क्या हाल चाल है?
20: हाल चाल तो बहुत अच्छा है। इतना अच्छा है कि जब धूप निकलता है तो खूब गर्मी, धूप नहीं रहता है तो मच्छा गर्मी है। और ये गाना सुनवाइएगा मैडम, गाना तो अपना नहीं है तो दूसरे जगह है, आपको मिल जाएगा। तो गाना है बरसात का मौसम है तो जब दूर ना जाइए, उसका गाना है जाएगा। यही गाना सुनवा दीजिएगा मैडम।
19: और डेडिकेट भी है?
20: और डेडिकेट आपको रहेगा, महावीर जी को रहेगा, सोनी जी को। सोनी जी का प्रोग्राम सुनने को नहीं मिलता है,
19: तो सोनी जी छुट्टी पे है तो फिर कैसे?
20: हाँ, तो आप ही सब कवर कर रही है ना? तब तो आपको बहुत मेहनत पड़ जाता होगा।
19: नहीं, भारती जी भी है।
20: अच्छा, आप भारती जी नहीं बोल रहे हैं?
19: नहीं, मैं भारती नहीं बोल रही हूँ।
20: आपका शुभ नाम मैडम?
19: जी, मेरा नाम मनोरमा है।
20: अच्छा, मनोरमा जी, मनोरमा जी पहली बार बात हो रहा है, बात होते हैं। आप अभी नए ज्वाइन किए हैं क्या?
19: जी जी।
20: और ठीक है, कोई बात नहीं, चलिए आप अच्छे जगह पर लगे हैं। तो अच्छा से प्रोग्राम मनोरमा मनोरमा चलिए ठीक है, नाम को याद रखेंगे। आज पहली बार क्योंकि बात हो रहा है ना, तो पहले तो सोनी जी से हम बात किया करते थे, उससे पहले दिव्या थी, हम आते भी आई है, आज मनोरमा जी से बात हो रहा है ना। ये भी बहुत हमको खुशी हो रहा है कि लोग नए नए आदमी आ रहे हैं। तो ये गाना जो है मैडम सुनवा दीजिएगा।
19: ओके, वैसे आप ये रेडियो रिंगिन कैसे सुनते हैं?
20: बहुत दिन से सुनते हैं, लेकिन सब सब प्रोग्राम हम नहीं रहते हैं, इसी में रहते हैं जो आपसे हम बात करते
19: हैं। हेलो माय चॉइस।
20: हाँ, और वो 1 बजे वाला प्रोग्राम आता है ना, तो उसमें तो हम मैसेज नहीं डालते, हम अपना गाना का ये करते हैं, पर कॉल करते हैं तो उसमें कॉल करिंग होता है, कोई उठाता भी नहीं है ना। तो कभी कभी कॉल करके आज मैसेज करके छोड़ देते हैं, कभी भी नहीं लगा
19: मेरा।
20: हाँ, तो आप लोग मैसेज के ई में लगे रहते हैं, कॉल नहीं उठाते हैं आप?
19: कॉल भी उठता है लेकिन अब सब तो देखना पड़ता है ना।
20: आप रहेंगे क्या 1 बजे वाला प्रोग्राम में?
19: नहीं, वो भारती चलाएंगे अभी।
20: हम उधर तो मीरगंज कपूरा से बोल रहे हैं। मीरगंज पटे है, लगे 1 किलोमीटर का फासला है मीरगंज और मेरा घर का, 1 किलोमीटर से 1 किलोमीटर हमें पड़ेगा। हम लोग के पास रेडियो बैठता है तो बहुत क्लियर बैठता है रेडियो, बहुत बेहतरीन साउंड में बैठता है, वो भी साउंड आपको देश में हम बजाते हैं रेडियो यहाँ।
19: अच्छा, मतलब ये रेडियो आप कैसे सुनते हैं, जैसे कि मतलब ऐप के जरिए या फिर FM?
20: नहीं नहीं, ऐप तो हम डायरेक्ट रेडियो खरीद रहे हैं, 2-2 रेडियो खरीद रहे हैं। एक रेडियो खरीदे 1000 रुपए का, एक खरीदे 3000 रुपए का रेडियो। रेडियो का आवाज हमको ट्यूनिंग करके सुनना बहुत अच्छा लगता है ना। तो पुराने रेडियो वाले नए जमाने से नहीं है, मोबाइल पर तो गाना सुन लेता है आदमी, फिर भी रेडियो का मजा जो ट्यूनिंग करके सुना जाए, दो चार बातें हो उसमें अच्छा लगे तो बहुत मजा आता है उसमें। गाना तो आदमी मोबाइल पर सुन लेता है और भी कहीं लेता है ना, तो वो गाना में गाने में रेडियो में बहुत अंतर, हमारे लिए अंतर है, और लोग नहीं बता सकते हैं ना, तो हमको अच्छा लगता है वैसे। हम लोग उम्र लड़ाए आदमी है ना, पहले बजा चुके हैं रेडियो, एक टाइम था कि हम लोग गोरखपुर तो पोस्ट कार्ड भेजते थे, सेना के फरमाइश उसी को करते थे, गोरखपुर पटना भेजते थे, शिलोंग का जो पहले आता था उसमें हम लोग भेजते थे, तो उस टाइम पे जो है ऐसे करके हम लोग गाना सुनते थे, है ना। आमिर सयानी जो शिलोंग में चलाते थे पहले, हम उसका टाइम में हम लोग गाना के फरमाइश है पोस्ट कार्ड से भेज रहे हैं। हम लोग बहुत पुराने रेडियो प्रेमी है, हम लोग रेडियो हम लोग का कई ज्यादा होता है, वैसे मोबाइल वोबाइल और ये जो है ना MP3 बजा लो धाक धोक ये वाला नहीं, जो ट्यूनिंग करके हाथ में लेके मोबाइल जो सुनने का मजा होता है सबसे जो हमको दूसरा अच्छा नहीं लगता। और ये रेंजिन खोला था तो जब ये रेडियो स्टेशन खोला पहली बार जब गोपालगंज में, तो हम उस टाइम पे थे सऊदी, है ना, तो सऊदी में जब सुने की अरे रेडियो स्टेशन हमारा गोपालगंज में खुल गया, इतना खुशी हुआ, इतना की हुआ खुशी है। अब सऊदी से जब हम आए तो रेडियो लेकर खुशी था। ठीक है मैडम, तो हम रख रहे हैं, तो ये गाना जो है ना बरसात का मौसम है, तो गाना प्ले करते हैं
19: आपका।
20: ओके, थैंक यू।
19: तो फिर ये सबके साथ रेडियो रिंगी 90.4 FM।

0: हेलो,
1: हेलो,
0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: हाँ जी, गाना सुनना है
1: जी, बता दीजिए।
0: कचारीलाल का कोई सॉन्ग है, गाना सुना दीजिए बलराम का।
1: अच्छा, कोई भी।
0: हाँ जी, नंबर तो आपका लगता नहीं है
1: जी। क्या ना, बहुत सारे कॉल आते रहते हैं किसी को।
0: कचारीलाल का गाना आज शाम को सुना दीजिएगा ना।
1: जी जी, आपके पास अभी शोर हो रहा है क्या?
0: काम कर रहे हैं हम लोग।
1: अच्छा जी, किस चीज का काम करते हैं आप?
0: हम लोग का तो अपना मिशन का राजा प्रोग्राम करता है।
1: अच्छा अच्छा, बढ़िया। वैसे आपका नाम?
0: मेरा नाम परमात्मा कुमार है जी।
1: कहाँ से बोल रहे हैं?
0: काला मठने गोपाला जिले से, खास के बगल में पड़ती है। खास से बोल रहा हूँ, अभी तो घर मेरा वही है, अभी बाहर में है।

0: कॉल भी करके तो बोल नहीं रहे, उधर से तो फोन काट दिया।
1: नहीं नहीं नेटवर्क प्रॉब्लम होगा इसकी वजह से।
0: जी सुनवा दीजिए गाना।
1: जी बिल्कुल, तो आप क्या गाना प्ले करते हैं? जी सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।

0: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है। रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
1: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
2: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल।
0: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा में NH 27 पर दक्षिण साइड गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
2: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
0: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेषज्ञों द्वारा।
2: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता MBBS MS सर्जरी लैप्रोस्कोपिक सर्जन और डॉक्टर डेजी सिन्हा MBBS MD DNB स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
0: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD IPD ICU मॉड्यूलर OT अल्ट्रासाउंड पैथोलॉजी लैब फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
2: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरब भोजपुरवा NH 27 गोपालगंज।
0: कॉल करे 70 70 75 63 100 या 70 70 75 42 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com। ओम नमः शिवाय।
2: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
2: दूसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ तारापीठ जगन्नाथपुरी गंगा सागर काली घाट कोलकाता रजरप्पा राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गया बोधगया वाराणसी अयोध्या गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
2: चौथा रूट थावे सुल्तानगंज देवघर बासुकीनाथ गुवाहाटी माँ कामाख्या धाम दार्जिलिंग सिलीगुड़ी गंतोक जनकपुर अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन

0: बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम, हर हर महादेव।
2: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
3: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 8604348652 पे।
4: एक जमाने में हुकुम सिंह को घर वाले कुरकुरदास बुलाते थे, क्योंकि लाइट पंखे चालू देखते ही वो सब पर चिल्लाने लगते थे,
5: अरे रमुआ ये पंखा क्यों खुला छोड़ा, बिजली का बिल क्या तेरा बापू भरेगा।
4: पर आज उन्हें सब प्यारे लाल बुलाते हैं, क्योंकि जब से उन्होंने सोलर पैनल लगवाया है तब से मीटर की सुई भी चैन से सोती है। और हुकुम सिंह भी। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर।
6: हर घर सूर्य घर।
7: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
8: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
7: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
9: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello.
10: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
11: नमस्कार जी।
12: नमस्कार,
11: राजस्थान में है अभी और कौन सी है
12: बता दीजिए।
11: आवारा पंछी का।
12: हेलो जी,
11: बोल रहे हैं आवारा पंछी का कौन सी है? आवारा पंछी का कोई भी सॉन्ग।
12: ओके, वैसे आपका नाम?
11: रवि कुमार बोल रहे
12: हैं। ओके,
11: रहे हम बजरंगी बोल रहे हैं ना, नाम क्या
12: हो रहा है अभी?
11: अभी जो हम राजस्थान में इधर बिल्डिंग विल्डिंग काम करते हैं इधर, हम लोग बहुत दिनों से सुनते हैं, कॉल करते हैं।
12: रेडियो रिंगिंग का कार्यक्रम आपको कैसा लगता है?
11: अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज्यादा सॉफ्ट टाइम को उम्मीद करते थोड़ा बहुत कम सुनते हैं, लेकिन ये वाले जो सॉन्ग है सुनते हैं सबसे ज्यादा। आज गाना बज जाएगा ना आज हमारा?
12: बजेगा जी। तो आप रेडियो रिंगिंग को कैसे सुनते हैं?
11: हाँ,
12: कैसे सुनते हैं, ऐप के जरिए या फिर इंटरनेट के माध्यम
11: से? जरिए सुनते हैं ना, आप लोग सुनते हैं उसी के लिए किए हैं।
12: चलिए बढ़िया, ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते
1: विकास कुमार बोल रहा हूँ हिमतापुर से।
0: जी जी क्या हाल चाल है विकास जी?
1: बढ़िया है जी, आप कैसे हैं मैम?
0: जी मैं भी बढ़िया हूँ।
1: सब बारिश वरिश हो रहा है गोपालगंज में?
0: नहीं बारिश तो नहीं हो रही है।
1: अच्छा और बताइए क्या हाल चाल? मेरे तरफ नोएडा में हो रहा है।
0: अच्छा
1: अभी सुबह सुबह हुआ था ना, कल परसों इतना ना पानी लग गया था कि रोड में आने में बहुत मुश्किल पड़ रहा था।
0: अच्छा जी।
1: हाँ जूता खोल करके हम लोग घुटना बराबर पानी लग गया था। इतना रोड में पानी लग गया था, क्या बताएं पानी को।
0: बताइए कहीं कितना ज्यादा बारिश हो जा रहा है, इधर थोड़ा भी नहीं हो रहा है।
1: अब जहाँ धान का फसल है मैडम वहाँ नहीं बारिश हो रहा है। भगवान भी नहीं सोचते है कि हाँ जहाँ धान का फसल है वहाँ हो जाए।
0: जी भगवान जी से बताना पड़ेगा।
1: बताना पड़ेगा।
0: हाँ बताइए, इधर पानी लग गया, इधर थोड़ा भी नहीं हो रहा है।
1: इधर पानी इतना ना रोड पर लग गया है कि वो अगर 2-4-5 दिन अगर बारिश आज हो जाए बढ़िया से पूरा बाढ़ आ जाएगा नोएडा में।
0: भगवान जी से बोलना पड़ेगा कि उधर बारिश ना हो, नहीं तो बाढ़ आ जाएगा तो फिर दिक्कत होगा।
1: भगवान जी नहीं सुन रहे हैं ना, भगवान जी आज हम चले गए मंदिर में इसलिए नहीं सुन रहे। और बताइए और सब बढ़िया है ना?
0: जी जी सब बढ़िया। जी तो आज का फरमाइश बता दीजिए।
1: आज का फरमाइश वही है खेसारी लाल का, जहाँ जहाँ डेग डाली वो वाला गाना नहीं है? हाँ वही गाना हमको सुनना है।
0: जहाँ जहाँ डेग जहाँ रखबुए धनिया वही वाला गाना।
1: हाँ वही वाला गाना। बहुत मस्त गाना है। आज सोचे कि यही गाना आज सुनेंगे।
0: बहुत अच्छा गाना। हाँ विकास जी ये गाना किसी को सुनवाना भी है?
1: ये मेरी भाभी बहुत सुनती है ना गाना ये। उनको ये बहुत फेवरेट है। सबसे पहले तो आपको सुनवाना है ना।
0: अच्छा।
1: और जितना रेडियो रंजन सुनने वाले हैं उनको।
0: चलिए ठीक है, तो विकास जी आपका गाना प्ले करते हैं।
1: जी ठीक है मैम, ओके।
0: सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रंजन 90.4 FM।
1: जी नमस्ते मैम।
0: नमस्ते।

0: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
1: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
0: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
1: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
1: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड एक्सिस बैंक के सामने तड़कुल के पास गोपालगंज।
1: याद रहे, शादी विवाह जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
3: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
4: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
5: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
4: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
5: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
4: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
5: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
4: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
6: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
7: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
8: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
7: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
8: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ 1 रुपए प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
9: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
7: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
9: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
7: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
9: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
10: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
11: Pick up, pick up, pick it up.
12: Hello.
6: हाँ
11: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 एफएम में।
6: मैडम एक गाना सुनना है।
11: जी गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए अपना।
6: मुझे शर्मा थावे से।
11: अच्छा,
6: प्रिय शर्मा नाम है। थावे से बोल रहा हूँ।
11: क्या हाल चाल है आपका?
6: ठीक है, आप लोग कैसे?
11: जी हम लोग भी बढ़िया। क्या हो रहा है?
6: कौन बोल रहे? दुकान में है अपना किराना का।
11: अच्छा,
6: आप कौन बोल रहे हैं?
11: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
6: अच्छा अच्छा, एक गाना सुना है प्रेम रोग का, भौरे ने खिलाया फूल फूल को ले गाना है ना। सुनवा दीजिएगा, कब तक आएगा
11: ये गाना आपका? कोशिश है कि आज ही बजे।
6: जी बहुत बहुत मेहरबानी होगी बजेगी।
11: वैसे ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
6: ये सब बहुत लोग आते हैं इधर शाम को कान में अपना सब सुनेंगे। नाम किसको पता है? मौसम तो आज तो बहुत गर्म है।
11: बहुत ज्यादा
6: बारिश भी नहीं लगता है, आएगा रात को थोड़ा आया फिर उसके बाद बंद हो गया।
11: हाँ, रात में आएगा।
6: चलिए ठीक है, सुनवा दीजिए।
11: ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए उसके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
6: ओके जी।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 FM में।
0: नमस्कार भारती जी।
1: नमस्कार, नहीं भारती नहीं,
0: क्या हाल चाल
1: जी? बढ़िया है, अपना बताइए।
0: मेरा भी ठीक है। वो गाना है बोल बम के नारा है भाई, ये बाबा एक सहारा।
1: ओके, गाना सुनवाएंगे, आप अपना नाम बता दीजिए।
0: लाल बाबू,
1: क्या हाल चाल है?
0: ठीक है।
1: सब क्या हो रहा है?
0: वो काम हो रहा था, आराम कर रहे थे, लगा रहे थे आधा घंटा पहले ही, नहीं लग रहा तो बिजी बता रहा था।
1: ओके, ना बहुत सारे कॉल आते रहते हैं तो
0: इसलिए इसका नंबर लग जाए। ठीक है, सूरज है, रिया है, रुपी है, विकास है और आप है आपका टीम बस।
1: वैसे आप रेडियो रिंगिंग को मतलब कैसे सुनते हैं?
0: सुबह में 2 घंटा और रात में तो 11 बजे।
1: और मतलब कैसे सुनते हैं, मोबाइल ऐप के जरिए या फिर इंटरनेट के माध्यम से?
0: नहीं, रेडियो भी है, घर पर जाते हैं तो रेडियो है, नहीं तो मोबाइल है छोटा वाला, तो गोपालगंज में रहते हैं तो छोटा वाला मोबाइल चलाते हैं। वो 12 बजे से नहीं चलाती है और सुनते हैं हम 4 बजे। बात ऐसा, कॉल लगाते हैं एक दो बार, अगर लाइन मिल जाता है तो लग जाता है, नहीं तो काम के बिजी में रहता है तो नहीं लगा।
1: जी जी, शो में जुड़ते हैं ना?
0: हाँ, शो में जुड़ते हैं, तो में 2-3 दिन मतलब टाइम मिलता है तो लगाते हैं, सुनते ही रहते हैं।
1: चलिए, बहुत अच्छी की बात है।
0: हम लोग 2000 से शुरू हुआ है ना, 9 से 10 से शुरू हुआ था, अभी से हम लोग। और तो स्टेशन सब बंद हो गया है, यही अपना गोपालगंज में कितना भाग से खुल गया है, तो और स्टेशन बंद है।
1: जी जी, ये सब आप लोग के द्वारा प्यार से ही चल रहा है?
0: चल रहा है, अच्छा है, जो है वो स्टेशन है, चल रहा है।
1: जी, तो रेडियो रिंगिंग का कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है?
0: अभी अच्छा लगता है, वो बीजा बार बंद हो गया कि चल रहा
1: चलता है,
0: किस दिन चलता है वो,
1: उसका भी टाइमिंग है।
0: बुधवार को चल रहा था और ये फिर दिन बोलता है, बोलता है एक और है बीरा, नहीं बोलते हैं वो बीरा भी सुनते हैं। और ये लोकगीत हुआ 4 बजे से, टाइम बदल गया है।
1: जी जी,
0: वो भी
1: जी, अब अभी तो मतलब सावन आ गया तो उसमें अब कभी गीत को बजाया जाता है।
0: हाँ, वो भी जैसे सुबह हमें 5 बजे भक्ति हुआ हम तो सुनते हैं सुबह,
1: बहुत बढ़िया की बात।
0: वो एक और रात में वो सोनू जी नहीं है, वो देते हैं 1 घंटा के प्रोग्राम, तो भी हम लोग नियम से आते हैं, टाइम बताते हैं रात वाले, तो रिकॉर्डिंग हो जाता है। एक और जो समाचार अभी आता है तो नियम से भी सुनते हैं
1: दोपहर में।
0: हाँ, दोपहर का सुबह में 7 बजे, रात को 9 बजे 5 मिनट को आता है।
1: मतलब ऑल प्रोग्राम सुनते हैं, बहुत अच्छी की बात है। जी, तो आपका गाना सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंगिम 90.4 FM।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
3: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
4: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी। लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
4: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
4: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
4: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
5: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है, चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से।
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें, आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94-512-11001।
8: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान, पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में। सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज, ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
9: Now pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up. Hello. Pick it up, pick it up. Hello. Now pick your phone up.
10: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चल

0: हेलो जी,
1: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: हम रमजान बोल रहे थे
1: जी।
0: बनारस
1: जी, कहाँ से बोल रहे हैं आप?
0: जी बनारस से बोल रहे हैं।
1: अच्छा, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, तो सुनना है।
1: बता दीजिए
0: जी, क्या किया तो डालना क्या ये मूवी सुनना चाहते हैं।
1: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी है
0: जी? हम सुनेंगे जी, सोचा हम सभी सुनेंगे। उसमें का वो वाला गाना चलाइएगा, तो बारे हम है हटके यारा दिल बीमारे झटके।
1: ओके, वैसे क्या करते हैं आप?
0: जी हम लोग पावर लूम बनारस साड़ियों का काम करते हैं। बनारस साड़ियों का पावर लूम अपन काम करते रहते हैं, रेडियो रिमझिम सुनते रहते हैं मोबाइल पर।
1: तो आप रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं?
0: जी मोबाइल जो है उसी पर सुनते हैं।
1: मतलब रेडियो रिमझिम का कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है?
0: जी सबसे पहले ये वाला जो है ये वो अच्छा लगता है
1: जी। हेलो मैं
0: जी, कब प्ले होगा
1: ये गाना आपका? कल बजेगा
0: जी। ठीक,
1: और कोशिश रहेगा कि मतलब आज ही बजे, अगर आज नहीं बजा तो कल, तो पूरा कंफर्म है कि कल बजेगा।
2: तो गाना प्ले करते हैं आपका, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिन 90.4 FM में।
0: कैसी हूँ
1: जी? मैं बढ़िया हूँ, अपना बताइए।
0: मैं भी अच्छी हूँ
1: जी। क्या हो रहा है?
0: कुछ नहीं, बैठी हूँ, चल लगा रही।
1: अच्छा
0: जी, मैं गोपाल दत्त से बोल रहे हैं
1: जी। आपका नाम?
0: सुरभि कुमारी।
1: सुरभि, एक बार फिर से नाम बता दीजिए, आवाज क्लियर नहीं आ रही अपनी।
0: सुरभि कुमारी बोल रही हूँ।
1: सुरभि?
0: हाँ।
1: अच्छा जी, जी बहुत प्यारा नाम है
0: जी। मैंने उनको गाना सुना है
1: जी, बता दीजिए।
0: दिल लगा लिया मैंने तुमसे प्यार कर।
1: क्या आप दो लाइन गा के सुना सकती हैं?
0: नहीं, मुझे याद नहीं।
1: अरे कोई ना, बस आप दो लाइन गा लीजिए।
0: तो बताइए, उतना ही हमको याद था।
1: अच्छा जी, कोई बात नहीं जी। तो सुरभि जी, आप कहाँ से बोल रही हैं?
0: जी गोपालगंज से बोल रही हूँ, जिले में। दिखा दे
1: गोपालगंज में कहाँ?
0: जिले में स्कूल है ना पहले।
1: जी जी।
0: अच्छा, बात अच्छी है ना?
1: जी जी, मैं भी बढ़िया हूँ।
0: आपका आवाज बहुत अच्छा लगा है मुझे।
1: अच्छा जी।
0: मेरी बहन भी बोल रही थी मैम का आवाज बहुत ही अच्छा लगता है बोलती।
1: पर आप लोग से बहुत कम ही है।
0: मैं 19 से सुनती हूँ, 2019 से सुनती हूँ रेडियो
1: रिंगिंग। मतलब रेडियो रिंगिंग को आप कैसे सुनती हैं?
0: अभी फोन से सुनती हूँ, छोटा वाला फोन है उसी से सुनती हूँ। बड़ा वाला फोन था उसमें ऐप इंस्टॉल की थी, सुन रही थी। तो अभी अभी आई हूँ
1: जी।
0: तो मेरा पहला ही कॉल है लग रहा है।
1: नहीं, अभी तो 2-3 कॉल आ चुके हैं ना।
0: वो तो मैंने जा चुका है।
1: जी जी जी। तो जी आपका गाना प्ले करते हैं जी। सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
2: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
3: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
4: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
5: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
4: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
5: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: ओम नमः शिवाय।
5: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
4: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
5: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
4: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
5: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
4: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
5: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
4: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
5: बोलबम, हर हर महादेव।
4: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया, बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
5: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय, अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
4: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज, और लखपतिया मोर, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
6: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8009294911। जी हाँ, 8009294911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
7: Hello. हेलो,
8: बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगम 90.4 एफएम में।
7: जी जी, मैं अरुण मिश्रा बोल रहा हूँ तिरवीरवा से, और हमको गाना सुनना है हमराज फिल्म का, ये दुनिया ये महफिल मेरे काम के नहीं।
8: ओके।
7: हाँ जी, और सबको डिलीकेट करना है, जो भी अपना प्रेमी है रेडियो एफएम का, ये सबको डिलीकेट कर दीजिएगा।
8: ओके, वैसे क्या करते हैं आप?
7: जी, मैं तो अभी फिलहाल घर पर ही हूँ, बॉम्बे में रहता था, है ना। अभी तक सुनाएंगे ये गाना, कभी तक सुनाएंगे
8: ये गाना आपका आज ही 5-7। ठीक है, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए साथ रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
7: ओके जी।

0: हेलो
1: जी, बता रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
2: नमस्कार मैम।
1: नमस्कार,
2: भारती जी बोल रही हैं?
1: नहीं,
2: सॉरी सॉरी सॉरी मैम। आप सब बोलिए, कैसी हैं?
1: जी सब बढ़िया है, अपना बताइए।
2: हम भी ठीक है मैम। आप और भारती मैम से दोनों आदमी से ना आवाज ना मिलता जा रहा है।
1: अच्छा जी,
2: जी इसीलिए पूछ दीजिए।
1: कोई बात नहीं है,
2: आप सब बोलिए।
1: जी सब बढ़िया, नाम बता
2: जी। सुनीता, सुनीता देवी
1: हाजियापुर
2: से। सोमवार को फोन

0: रोज रोज का पेट दर्द।
1: अरे तो उसे डांटते क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
2: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
3: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
2: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
0: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
4: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
5: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
6: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
7: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
8: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
6: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
5: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
6: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
8: कॉल करें 87-894-18744।
9: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
10: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
11: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
2: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434-03, 62042434-03।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
2: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है पर कोनो जचल है ना।
1: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
3: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
4: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माई चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है क्या रेडियो रिंकी 90.4 एफएम में।
0: प्रणाम।
1: प्रणाम।
0: क्या हाल है
1: जी? बढ़िया बा, नाम बता दिया अपन और कहाँ से?
0: गणेश कुमार मिश्रा, दिल्ली।
1: ओके,
0: आप कौन हो?
1: जी मैं मनोरमा बोल रही हूँ।
0: अरे मनोरमा जी, आज पहली बार आपसे बात हो रही है।
1: इसीलिए ना, नहीं
0: आज आपसे पहली बार बात हो रही है। और बात जी कहाँ है? सब सुनाइए।
1: और सब बढ़िया, आप अपना बताइए।
0: सर फोन लगाते लगाते लंच हो गया, यही बोला कि आज भी आज ही लगाइए दे। करना भी नहीं था, आज किए तो आज मिल गए आप, नहीं करते तो आप मिलते नहीं। पूरे रिकॉर्डिंग आती का है
1: जी जी।
0: अरे जी, तो मुझे एक गाना ना दीजिए, खेसारी लाल का है, कहीं और अब बोले मूवी का है, तुहरा बिना खाना पीना सब बेकार बा, जान तीनों तुहार बा। हाँ यही सुना दीजिएगा।
1: और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: भारती जी को, मनोरमा मैम को, सोनी जी को, और जितने हमारे नाम जानने वाले हैं सबको।
1: तो बताइए मौसम कैसा है उधर का?
0: बस मौसम में जो तो दो दिन पहले बारिश हुआ है बहुत में है, जैसे वहाँ है वैसे ही यहाँ है, वहाँ भी तो बारिश नहीं हो रही है।
1: नहीं नहीं, लेकिन ऐसा मतलब लग रहा है जैसे कि बारिश होगा।
0: हाँ वैसे यहाँ भी कभी बादल हो जा रहा है, कभी धूप निकल जा रहा है। अब हम भी तो वहीं क्या है ना, राजापति स्टेशन के पास, तो हमें भी पता है कि कैसे मौसम हो रहा है उधर। भारती जी को, सोनी जी को पता है, आपसे पहली बार हो रही है बात।
1: रेडियो रिजिंग आप कितने समय से सुन रहे हैं?
0: जी हम तो 4-5 साल से सुन रहे हैं, लेकिन जुड़ते नहीं थे, जुड़ रहे हैं। ये सोनी जी आई है, जब से जुड़ रहा हूँ 1.5 साल हो गया, 2 साल करीब हो गया, मैं जुड़ा नहीं हूँ लगातार। पहले मैं लिसनर हुआ ऐसा कि 4 घंटे शो चलता है, तो 4 घंटे इधर उधर कुछ नहीं, पूरे रेगुलर रहा हूँ।
1: चलिए,
0: आपका गाँव कहाँ पड़ेगा? वही प्रॉपर गोपालगंज से। चलिए ठीक है,
1: ठीक है, तो
0: हो ही जाएगा बात विचार बढ़ेगा तो। ऐसे सोनी जी से, भारती जी से तो सब बात होती है, सब जानकारी हमारे बारे में।
1: वो क्या है रिकॉर्डिंग?
0: हाँ एक दिन आप किए हैं, उस दिन हम इंतजार किए, सुने तो हम सोचे कि मनोरमा जी कब चढ़ी हैं, हमारे से मिली नहीं है, मैं बराबर फोन करता हूँ, लेकिन आज मिली गए आप
1: जी।
0: चलिए बात करके बहुत अच्छा लगा
1: जी, मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। ठीक है तो गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंजिम 90.4 FM।

0: हेलो मैम, नमस्ते।
1: नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगजीम 90.4 एफएम में।
0: धन्यवाद मैम। सुनील कुशवाहा बात कर रहा हूँ मैम, मैयर।
1: क्या हाल चाल है सुनील जी?
0: बस ठीक है मैम, बस बैठे थे आपका शो का इंतजार करते हुए मैम।
1: अच्छा
0: जी जी जी मैम
1: जी।
0: अब मैम वहाँ का मौसम की क्या हाल चाल है मैम?
1: मौसम सुहाना हुआ है, कभी धूप हो रहा है।
0: जी जी
1: हवा चल रहा है।
0: जी जी जी मैम, बारिश नहीं है मैम?
1: नहीं, बारिश तो नहीं हो रही है।
0: हमारे यहाँ तो बारिश चालू है मैम, हल्का फुल्का बारिश चालू है। बहुत अच्छा है यहाँ का मौसम है मैम।
1: अभी बारिश हो रही है?
0: जी जी अभी बारिश चालू। जी जी जी मैम, आज एक फरमाइश है, गाने की बोल है पार्की में होके सवाल, और सुनवाएंगे कितने रेडियो रिंजिम दोस्त लोग सुनते, सभी दोस्तों। ठीक है मैम, गाना भजवाइए। धन्यवाद मैम, थैंक यू।

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ
3: भरोसे वाले से लेंगे,
2: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
3: और कीमत भी।
2: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
4: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
6: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
7: 22 कैरेट 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
6: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड गोपालगंज,
8: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
6: कॉल करें 85070-32042 पे।
9: अरे मुन्नी तुम आ गई, चल मेरे कान का झुमका ला।
10: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
9: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
10: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
6: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी,
10: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
6: तो अगर आपको कुछ अच्छा कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
10: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
6: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
11: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
12: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
11: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 अमरजैट पर।
13: अरे रीमा, सोलर पैनल लगवा ले।
14: कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
15: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
14: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो।
16: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना आज ही रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in पर। सूर्य घर
17: Now pick it up.
18: Hello.
17: Now pick your phone up.
18: Hello.
17: Pick it up.
18: Hello.
17: Now pick your phone up.
18: Hello.
19: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94911। जी हाँ, 80029-94911। तो चलिए बढ़ते हैं

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंकिम 90.4 FM में।
0: नमस्कार मैडम।
1: नमस्कार।
0: हम गाना सुनना चाहते हैं मैडम।
1: जी गाना सुनवाएंगे, नाम बता दीजिए आप अपना।
0: धर्मा से बोल रहा हूँ, मेरा नाम श्यामदेव माझी हुआ।
1: अच्छा,
0: गाना सुना है? गाना है भोजपुरी में है मैडम।
1: बताइए।
0: मारो में बैठल बाड़े गौर के दूल्हा हो, मारो में बैठल बाड़े गौर के दूल्हा हो, मांगे ले भर थरिया भांग ए सखी, मांगे ले भर थरिया भांग ए सखी।
1: ओके, और गाना किसी को सुनाना भी है?
0: नहीं, साथी लोग सुना है, सबको सुनवाना है मैडम।
1: वैसे क्या हो रहा है अभी?
0: हाँ, पेशे से मैं शिक्षक हूँ, छुट्टी पर हूँ आज, और मैं आपका रिमझिम रोज सुनता हूँ, बराबर सुनता हूँ मोबाइल से।
1: अच्छा,
0: ये है कि थोड़ा आज सोचे थे कि आज गाना कॉल करेंगे, सुने गाना आज।
1: आप रेडियो रिमझिम कितने समय से सुनते हैं?
0: जब से शुरू है तब से सुनते हैं मैडम।
1: अच्छा जी, तो मतलब पूछ रहे थे कि रेडियो रिमझिम का कार्यक्रम आपको कैसा लगता है?
0: बहुत अच्छा लगता है मैडम, बहुत मशहूर सुनता है, सुनते हैं। आपके रेडियो रिमझिम के मालिक हैं शंकर बाबू, उनका जो है भाषण ऐसी ऐसी देते हैं, बहुत मुझे अच्छा लगता है जी।
1: अच्छा, रेडियो रिमझिम को कैसे सुनते हैं आप?
0: जब से मैंने ऐसी हुआ है, चालू हुआ, तब से मैं सुनता हूँ। मेरा घर बिजर में हुआ, इसी पंचायत में मेरा रेडियो रिमझिम है।
1: अच्छा,
0: हमारे पंचायत में है।
1: अच्छा, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि रेडियो रेडियो रिमझिम मतलब कैसे सुनते हैं? मोबाइल, मतलब
0: मोबाइल से मैडम, मोबाइल से,
1: ऐप के माध्यम से।
0: जी जी, ऐप के माध्यम से।
1: अच्छा, चलिए बढ़िया,
0: बहुत अच्छा लगता है।
1: अच्छा, अब आप लोग का दुआ प्यार से लगा।
0: बिल्कुल एकदम, बिल्कुल, देखिए भगवान से दुआ करते हैं, पूरे रेडियो रिमझिम परिवार को मैं दुआ करते हैं कि सभी लोग खुश रहे और रेडियो रिमझिम चलाते रहे, सबको मनोरंजन कराते रहे।
1: अब आप लोग का आशीर्वाद चाहिए।
0: भगवान की कृपा है सर। जी जी
1: जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं।
0: जी मैडम, जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद।
1: आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: थैंक यू मैडम, थैंक यू मैडम।

0: हेलो,
1: नमस्ते
0: जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंजिम 90.4 FM में।
1: हम खादर राजन मार्केट से बोलते हैं, रामा जी प्रसाद।
0: ना ना, एक पहले कॉल आ गई
1: यहाँ बोल बम के। हाथी न घोड़ा पैदल सवारी, हम दुआरी।
0: और गाना के लिए सुनवावे के भी बात
1: जितना लोग सुन दो सब कुछ सुने। और कौन
0: एक बार फिर से बता दी।
1: हाथी ना घोड़ा पैदल सवारी, बाबा हम चलिए तोरे दुआरी। जितना रेडियो रिंगिंग सुन दो सब कोई हम रहुआ, जितना लोग बाबा धन जा फिर से उस नत होई।
0: ठीक बताओ,
1: हाथी जी बोले
0: गाना प्ले करी।
1: नमस्ते
0: नमस्ते, सुनत रही सबके साथ रेडियो रिंगिंग 90.4 FM।

0: बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0970-06-575।
4: सोहन मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
5: अरे टीना टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
4: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
5: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज, प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-300-99-66-999।
3: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
3: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
3: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
3: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
6: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं, कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं, अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
6: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
6: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99-554-97-644।
7: ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने की फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं।

0: जी बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
1: नमस्कार मैम।
2: नमस्कार,
1: हम अयोध्या डिस्ट्रिक्ट के गुंधौर ग्राम सभा से बोल रहे हैं।
2: जी, और आपका नाम?
1: सूरज प्रजापति। मैम, मुझे एक गाना सुनना था।
2: बता दीजिए।
1: इतिहास फिल्म का अचको मचको एक गाना है।
2: जी जी
1: जी, वही सुनना है।
2: ओके, और ये गाना डेडिकेट भी है?
1: जी मैम।
2: जी, ये गाना आप किसी को सुनवाना भी चाहते हैं?
1: हाँ, अजय प्रजापति है और लुकमान भाई है और एक दो लोग हैं और सुनने वाले सभी साथियों को।
2: ओके,
1: नमस्ते।
2: नमस्ते, तो गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए सबके साथ रेडियो 90.4 FM।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
2: तो श्रोताओ, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो हमें दीजिए जाने की इजाजत और सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM। नमस्कार।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
4: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
5: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
6: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराएं नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
7: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
6: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9847434468 पे।
8: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
9: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
8: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HFD लक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
9: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
8: या अभी कॉल कीजिए 9289922567 या 9797146164।
9: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
8: हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
9: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
8: अभी कॉल कीजिए 9006672131।
9: कॉल कीजिए 9006672131। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
10: Excuse me boss, you have a text message.

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू सो SMS फरमाइश के साथ रेडियो रमझिम 90.4 FM पे। यदि आप इस शो से जुड़ना चाहते हैं, अपने पसंद के गाने सुनना चाहते हैं, तो बिल्कुल इस शो में अपने पसंद के गाने फरमा सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। टेक्स्ट मैसेज के लिए नंबर है 72 77 16 65 96। बस अरते ध्यान रखना है कि जब भी गाने के फरमाइश आप करें तो पुराने गाने के फरमाइश करें, ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। 90s के गाने फरमाएं या ओल्ड इज गोल्ड गाने के फरमाइश करें, जैसे किशोर कुमार जी और मोहम्मद रफ़ी जी, मुकेश जी की आवाज़ों में आप गाने पसंद करते हैं, तो बिल्कुल फरमाएं, हम आपकी फरमाइश पूरी करेंगे। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। तब तक अपना भी कार्यक्रम शुरू करें मैसेज टाइप करने का। और पहला मैसेज हमारे पास पहुँचा हुआ, लिखा गया है कि भैया जी मुझे सॉन्ग सुनना है जो बीच बजरिया तूने मेरी पकड़ी भैया। मोबी नेम अंश, माई नेम इज दीपक एंड जेलर। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और आप ही के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हेलो सुनो भैया नमस्ते, MD 97 दरभंगा भजीतपुर से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो हाय क्या हाल है। तो बिल्कुल बढ़िया है और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में निशा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, ना कर मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं, ना कर मोहब्बत तेरे बस की बात नहीं, जो दिल करे मोहब्बत वो दिल तेरे पास नहीं। अगर मैं होता बादशाह तो एक कानून बना देता, दिल तोड़ने वाले को सजा ये मौत का हुक्म सुना देता। सुनो भाई नमस्कार, क्या छो, मैं रोहित देहरादून से। तो बिल्कुल बढ़िया और आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और क्या हाल है। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लाल बाबू सिंह नवादा शहर भोजपुर से जुड़े हुए हैं। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज, हाय मैं कमलेश कुमार विलेज सबिया फील्ड गोपालगंज से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है कमलेश जी। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, बुलेट चौधरी जी तीन फिड़िया से जुड़े हुए हैं, गाने की फरमाइश करते हैं, आपका भी स्वागत है। आगे मैसेज मनीषा करती हैं, हेलो हाय कैसे हैं। तो बिल्कुल बढ़िया और आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। आगे मैसेज, सर नमस्ते मेघनाथ माझी, सर मुझे गाना सुनना है और गाने का बोल है बोलबम का। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे मेघनाथ माझी जी। आगे कई मैसेज पहुंचते जा रहे हैं तो मैसेज को रुकते हैं और इस कार्यक्रम की शुरुआत गाने के साथ भी कर देते हैं और सुनते हैं पहले गाने की फरमाइश दीपक एंड जेलर जी की, इन्हीं के पसंद के गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत कर रहे हैं और सुनते हैं हम सभी।

लिखा गया है कि हाय सोनू बाबू, कैसे हैं? हम भी जुड़े हैं, साथ में मैडम जी भी हैं, और इन्हें मेरे द्वारा एक सॉन्ग सुना दें। तो बिल्कुल सुनाने की कोशिश रहेगा। और फिलहाल आप दोनों का स्वागत है इस कार्यक्रम में, वीरेंद्र गुप्ता एंड लवली गुप्ता। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि थैंक्स भैया जी। चलिए, आपको धन्यवाद है रेडियो एमसीएम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, और आगे लिखा गया है कि मधु सरिया से सॉन्ग सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और इस मैसेज को करते हैं राजू कुमार यादव जी। और राजू जी, आपने एक दिन मैसेज किए हुए, वो मैसेज हमारे पास अभी भी सुरक्षित रखा हुआ है। क्या ये सही मैसेज किए हैं? थोड़ा सा आप बताएं आज। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, मैं डॉक्टर अमोद कुशवाहा, ग्राम जय छपरा, जिला कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और कहते हैं कि अभी अपने क्लिनिक पर हूँ और आपके कार्यक्रम का लुत्फ़ उठा रहा हूँ। मुझे गाना सुना दीजिए, पतझड़ सावन बसंत बहार। तो अमोद जी, आज तो नहीं सुना पाएंगे क्योंकि यह बहुत छोटा कार्यक्रम है और इसमें सप्ताह में एक ही बार एक व्यक्ति को मौका दिया जाता है, क्योंकि जनसंख्या बहुत है और समय कम है। इसी कारण अब आपकी फरमाइश का नंबर आएगा अगले सप्ताह। तो आप थोड़ा सा सब्र करें और दूसरों को भी अपने गाने को सुनने का मौका दें। फिलहाल बने रहे हमारे साथ। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा भी सॉन्ग सुना दीजिए। बिल्कुल लेके करके फरमाइश हम पूरी करेंगे। अभी तो एक ही गाने हम सभी सुने हुए हैं। और आगे बढ़ते हैं, अगली गाने की फरमाइश यहाँ पे प्ले करते हैं। इस गाने की फरमाइश करते हैं MD 97 दरभंगा भाजीतपुर से, और फिल्म ओ लम्हे गाने का बोल, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल जवां है हंसी। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने।

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा मिला ही नहीं।
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
3: जी हाँ कमल श्री, याद रखें सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
3: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है। सुनिए सुनिए सुनिए,
4: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
3: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
4: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
3: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
5: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
6: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
7: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
6: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
7: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
6: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलो फेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
7: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनके विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
6: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-65750।
5: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
6: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
5: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
6: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
5: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
6: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
8: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
9: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
6: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
7: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
6: यहां आयुष्मान कार्ड से 5,00,000 रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
7: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
6: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
7: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
6: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
7: कॉल करें 70705763100 या 70705042100 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर पी के गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
7: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
6: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
7: संपर्क करें 9939365923।
11: Excuse me boss, you have a text message।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो एमजीएम 90.4 एफएम पे शो चल रहा है एसएमएस फरमाइश का। और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए हैं तो आगे बढ़ेंगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे अगले गाने की फरमाइश प्ले करते हैं और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है जिंदगी में तुझी पे लुटाऊँगी। उदित नारायण की आवाज़ में इस गाने को फरमाया गया है तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे और इस मैसेज को करती हैं निशा डुमरिया से। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि बहुत बहुत शुक्रिया सोनो भैया आपका मुझे मेरा सॉन्ग सुनाने के लिए। MD 97 दरभंगा भाजीतपुर से मैसेज करते हैं, चलिए आपको धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, तू जो नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये माना कि महफिल हंसी है जवां है। बहुत सुंदर सॉन्ग, समझिए मेरा ही गाना बज गया। बहुत बहुत शुक्रिया सोनू जी, चलिए आपको धन्यवाद है कार्यक्रम में बने रहने के लिए और बने रहें आगे भी। और इस मैसेज को करते हैं अमोद जी, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, नमस्ते सर जी, हम निरंजन कुमार बतरदे से गाना सुनना है तो बिल्कुल आपका स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइशें तो पूरा करने की कोशिश है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू भाई नमस्कार और सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। मैसेज करते हैं दिलीप जी दिल्ली से, आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि हमारा भी सॉन्ग सुना दीजिए, बिल्कुल लेके करके फरमाइश पूरी करेंगे, आपकी भी फरमाइश पूरी होगी, बने रहे हमारे साथ। आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए अगले गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं अगली फरमाइश रेडियो 90.4 FM पे।

ಆಮೇಲೆ टुडे एमसीएम 94 एफएम पे काफी प्यारा सॉन्ग सुन रहे थे हम सभी, और उदित नारायण अलका याग्निक की आवाज़ में जानी दुश्मन मूवी से। आगे कई मैसेज पहुंचे थे, मैसेज को अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं, और अगले गाने के फरमाइश यहां पे प्ले करते हैं। लाल बाबू सिंह जी नवादा शहर भोजपुर से जुड़े हुए हैं और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुँचा हुआ है, हम जैसा कहीं आपको दिलबर ना मिलेगा। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। और यहाँ पे राजू जी मैसेज रिपीट पर रिपीट कर रहे हैं, तो राजू जी थोड़ा सा सब्र करें, आप जहाँ हैं वहाँ पे स्थिर हैं, आप इतना ना खुद फन कर देते हैं कि आपकी मैसेज को पकड़ना मुश्किल हो जाता है, पता नहीं चलता है कि आपको मैसेज किया है। हर 2-3 मिनट पर देखा जाए तो आप सामने आ जाते हैं, तो हम आपसे कहेंगे कि आप जब मैसेज कर दे रहे हैं तो आप थोड़ा सा स्थिरता बनाए रखें, ताकि आपकी भी नंबर आए और आपकी फरमाइश हम पूरी करें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और लाल बाबूजी की फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं, एंजॉय करते हैं हम सभी इनके गाने के साथ।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714-86164।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: कब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नु सारा मार्केट, देख लेनी नु सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
4: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में।
6: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
7: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
8: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमछीम 90.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें फरमाइश का और यहाँ पे आगे मैसेज और अगले गाने की फरमाइश करते हैं कमलेश कुमार जी फिलेश सविया फील्ड गोपालगंज से और कहते हैं कि मुझे सॉन्ग सुनना है फिल्म हीरो तू मेरा जानू है तू मेरा हीरो है। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचा हुआ है, मैसेज देखा जाए आगे मैसेज पहुँचाते हैं। मेघनाथ माझी जी कहते हैं कि सर सुभाष राजा का ब्रिजाभार बोलबम गाना सुना दीजिए। तो आपकी फरमाइश हम पूरी करने की कोशिश में और आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, लिखा गया है कि सोनू बाबू हमारे दिलबर मैडम जी का भी सॉन्ग तो सुनाने को बनता है। तो बिल्कुल बनता है तो सुनाएंगे। और उससे पहले मैसेज किए हुए हैं कि जब आप अच्छी दिलबर हैं तो फिर आपका दिलबर घर छोड़कर क्यों जा रहे हैं, कोई तो कारण होगा, बताएं झगड़ा की होंगी या खाना दो बेरा नहीं दी होंगी जिसके कारण घर छोड़कर जा रहे हैं, और क्या हो सकता है। फिलहाल आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और आगे लिखा गया है कि हम भी हैं, तो बिल्कुल आप भी हैं, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। फिलहाल आगे गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं, इंजॉय करते हैं हम सभी रेडियो रमछीम 90.4 FM पे कमलेश जी की फरमाइश।

94.4 FM सुन रहे हैं आप सभी, और कमल के सॉन्ग है अनुराधा पौडवाल जी की आवाज़ में। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है कई, तो समय भी दिखे तो बहुत कम है। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं, और इस गाने की फरमाइश और मैसेज को करने वाले वीरेंद्र गुप्ता एंड लवली गुप्ता दोनों दंपत्ति एक साथ बैठकर गाने की फरमाइश किए हुए हैं लो, और इनके तरफ से गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। और गाने का बोल है, कुछ कहता है ये सावन क्या कहता है, डेडिकेट आपको और शफाक, हिना रोशनी, निशा गुड़िया, ब्यूटी आशा, शब्बा, शबीता, सबीना, शाहजहाँ, खुशी, बाकी छूटे सभी श्रोताओं को, और साथ में हमें भी सुनाएंगे। और इस गाने की फरमाइश लवली गुप्ता जी की हैं, और मैसेज किए हमें वीरेंद्र गुप्ता भैया के करियर अफसर नेपाल बॉर्डर से। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपकी फरमाइश हम सभी रेडियो MGM 90.4 FM पे।

बिल्कुल कुछ कहता है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि गाना हम बेवफा हरगिज ना थे, पर हम वफा कर ना सके। आवाज़ किशोर कुमार, नाम शगीर अंसारी फ्रॉम तेजपुर आसाम से, और डेडिकेट दिलीप राम जी को करते हैं। तो चलिए आपकी भी फरमाइश हम प्ले करेंगे। यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और आगे गाने की फरमाइश तो हम प्ले करेंगे। आगे मैसेज लिखा गया है कि शुक्रिया सोनू बाबू को मैडम जी की तरफ से और सॉन्ग सुनाए। चलिए आप दोनों रेडियो रिमझिम सुने और इसके लिए धन्यवाद है। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि मेरा सॉन्ग ना बजेगा काशर मधुसरिया से राजू कुमार जी, तो कैलाश धुआँ तो नहीं बजेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, अगली गाने की फरमाइश हम प्ले करेंगे। और इस गाने की फरमाइश करने वाले हैं मेघनाथ माझी जी, तो हो सके तो इस गाने के बाद आपकी भी फरमाइश हम प्ले करें। फिलहाल इंजॉय करते हैं अगले गाने के साथ।

0: पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
1: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर डॉक्टर स्वाति के गुप्ता MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन SVBPN न्यू दिल्ली।
0: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहां सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9939365923।
3: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
4: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
3: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
5: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
5: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर X 101,354 रूपए और X3 125R 110,836 रूपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
5: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714-86164।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
5: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
5: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
0: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।

हेलो नमस्ते नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और समय हो गया है आप सभी के मन पसंद कार्यक्रम योर वॉइस योर चॉइस का। तो यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप, इंस्टा और कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 92। जी हाँ, 9852 78 8291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। जी हाँ, 7277 16 65 96। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे कार्यक्रम की ओर। और इससे पहले हमारी तरफ से आप सभी के लिए प्यारा सा सॉन्ग, जब तक हमसे सभी जो लोग जुड़ रहे हैं तब तक सॉन्ग प्ले कर रही हूँ। और गाने के बोल हैं हाँ तू है और मूवी है जन्नत। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

तो अभी आप लोगों ने सुना मेरी तरफ से जन्नत मूवी का सॉन्ग, तो बताइएगा ज़रूर गाना आपको कैसा लगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे, यहाँ हमारे पास बहुत सारे मैसेज पहुँच चुके हैं जो कि लिख रहे हैं कि जी मैम नमस्ते जी, गुड मॉर्निंग, उत्तम सोनी हरपुर से मैं भी जुड़ गया हूँ और मैम मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा जी मैम, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है, वाह सुपर सॉन्ग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और यहाँ हमारे साथ पंकज जी भी जुड़ चुके हैं और लिख रहे हैं वाह सुपर सॉन्ग, ये सॉन्ग जब आया था तब हमने नया नया कीपैड फ़ोन लिया था और 2008 में इस सॉन्ग को कॉलर ट्यून के चक्कर में 400 मैंने बैलेंस कट करवा दिए थे। ओह तो ये बात है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय भारती जी क्या हाल है, गुड आफ्टरनून, मैं गणेश कुमार पिपरा नारायण से। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, सरफरोज अली गोपालगंज से, गाना सुनना है थोड़ी सी बेकरारी है कुमार सोनू का। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे, बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है और इन्जॉय कीजिए सभी लोग।

0: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से।

0: 125 hours, 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर? अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-029-94-921 पे, हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में, ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4।

0: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नाइस सॉन्ग चल रहा है, चल, और लिख रहे हैं कि वैसे भारती मैम आपको क्या, आप क्या कहेंगी कि क्या सच में होता है सबको एक बार? बात तो सही है, सभी को होता है। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम, नमस्कार इरशाद मास्टर ग्राम धनाव से, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि शमशेर मुंबई से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और बिना देरी किए हमारे पास यहाँ एक गाने की फरमाइश पहुँची है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो,
1: नमस्ते मैम।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: हम थावे से रामाजी प्रसाद बोलते हैं।
0: जी कैसे हैं आप?
1: गाना सुनता
0: हूँ। बता दी कौन सा गाना सुने हम?
1: हे डॉक्टर बाबू बताई दवाई।
0: बताई दवाई
1: जी।
0: गाना क्यों के सुना हूँ के बाद?
1: सब कुछ सुने, जितना लोग रेडियो सुनता।
0: भोजपुरी गाना है, हिंदी
1: भोजपुरी है। डॉक्टर बाबू बताई दवाई।
0: अच्छा चलिए फिर गाना प्ले करते नहीं, सुनत रही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: नमस्ते
0: नमस्ते।

तो अभी हम लोगों ने सुना है रामा जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग ए डॉक्टर बाबू, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी, हम मुन्ना दिल्ली से, मुझे भी ये गाना सुनना है और लिंक भेज रहा हूँ, कृपया करके सुना दीजिएगा। और गाना दिनेश मिश्रा को सुनाना चाहता हूँ और दोनों आदमी साथ में हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसके साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अभी तक तो मुझे नहीं हुआ, और लिख रहे हैं नी गाना ए डॉक्टर बाबू बताई दवाई। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि अब हम ना तुम्हें खोना चाहते हैं, अब ना तुम्हारी यादों में रोना चाहते हैं, बस तुम्हारा साथ मिले हमें हर पल, अब बस इतनी सी बात तुमसे कहना चाहते हैं। हम भी जुड़ गए हैं, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और मैं धनेश कुमार मिश्रा दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं नमस्ते भारती मैम, मैं आप कैसी हैं, मैं राजू सोनी हरपुर से, और मुझे भी सॉन्ग सुनना है दिल चीर के देख तेरा ही नाम होगा। और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगली फरमाइश जो कि पहुँची हुई है, लिख रहे हैं कि हर हर महादेव नमस्ते, आप कैसी हैं, मैं मुन्ना ठाकुर क्रोशिया में है और हमें एक गाना सुनना है स्वर्ग मूवी से, और गाने के बोल हैं ए मेरे दोस्त तू लौट के आ जा, और पिछली बार गाना नहीं सुन पाया था और इस बार बजेगा कि नहीं बता दीजिए। तो जी बिल्कुल, आपकी गाने को प्ले कर रहे हैं और गाना बहुत ही खूबसूरत है मेरे दोस्त लौट के आ जा। तो चलिए सभी के साथ गाने को इंजॉय करते हैं आपके गाने को।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 9956 97644।

ब्रेक के बाद जो जो अभी हमसे जुड़े हैं और जो पहले से जुड़े हुए हैं उनका एक बार फिर से तहे दिल से स्वागत करती हूँ योर वॉइस योर चॉइस के शो में। और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 98 52 78 82 91। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 72 77 16 65 96। तो चलिए बिना देरी किए अगले मैसेज की तरफ चलेंगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, गुड आफ्टरनून, मैं रोहित कुमार हैदराबाद से, हमें भी गाना सुनना है, सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और मैं आपको बता दूँ कि हफ्ते में एक ही बार अपने गाने को सुन सकते हैं। और आपका गाना मंगलवार को प्ले हुआ था तो आप मंगलवार को ही सुने अपना गाना, ताकि सभी को मौका मिले अपने अपने गाने को सुनने को। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते प्रणाम, हम अजय कुमार दिलसुई दरौली सिवान बिहार से, हमके गाना सुने एक बार और जानी दुश्मन मूवी के, और गाने के बोल हैं आजा आजा जिंदगी मैं तुझे पे लुटाऊंगी, और सुनाना चाहते हैं अनूप और सभी रेडियो दोस्तों को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि सोनम भैया, मैं भी जुड़ गया हूँ और मुझे गाना सुनना, सोनू भैया मुझे भी गाना सुनना है, और सोना लाल अरे राज के रहने वाले हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इनकी गाने की फरमाइश पहुंची हुई है और गाने के बोल हैं मेरे महबूब मेरे सनम। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

अभी हम लोग ने सुना सोना लाल जी की तरफ से बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, मेरे महबूब मेरे सनम। तो चलिए बिना देरी किए गाने को अगली फरमाइश की तरफ बढ़ेंगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं रेडियो रिमझिम से हम भी जुड़ गए हैं। और नमस्कार मैम, सुनील कुमार, सुनील कुशवाहा एमपी से, और सुपर सॉन्ग मेरे दोस्त लौट के आ जा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि हेलो दी, नमस्ते, कैसी हो आप? हम देवरिया से, सोनी बर्नवाल, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और सावन का सॉन्ग सुनना है, हिंदी सॉन्ग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि हेलो मैडम, दीपक मुंबई से जुड़ चुके हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं किस्मत जिंदगी में हमेशा ऐसे लोग भी मिल जाते हैं जिनको सिर्फ चाहा जा सकता है, पाया नहीं, क्योंकि वो किसी और की किस्मत में होते हैं। बहुत ही खूबसूरत लाइन है, बहुत बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुन्ना दिल्ली से, और मुझे गाना सुनना है, और डेडिकेट है गाना दिनेश मिश्रा जी को, और गाने के बोल हैं प्यार के टावर पर। तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी लिसनर के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978855 या 6203139564।
2: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
3: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
4: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
5: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
4: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
6: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
7: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 9439456 या 9707065575।
8: ठक ठक।
3: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
9: अच्छा मिला ही नहीं।
3: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
4: जी हाँ, कमल श्री, याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
3: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
4: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
10: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 91.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा और बहुत दिनों बाद जुड़ा हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, नमस्ते मैम, संजय यादव दुबई से, क्या हाल है मैम? तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि सुनी जी, मेरा नाम केतन खरे है और नासिक महाराज से, प्लीज़ मेरा गाना बजा दीजिएगा, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और मैसेज करने वाले हैं प्रमुख जी, तो बिना देरी किए गाना गाना है अवधेश प्रेमी और शिल्पी राज की आवाज में, और गाने के बोल हैं उठलाली क्रीम कलर। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अभी हम लोगों ने प्रमुख जी की फरमाइश सुना और देश प्रेमी की आवाज़ में, तो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग था। और ये लिख रहे हैं कि थैंक यू सो मच डियर गाना बजाने के लिए। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि अच्छा तो सच्चा प्यार ऐसे होला। और टावर वाला सॉन्ग हम दोनों सुन रहे हैं और बहुत मज़ा आया, और ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपको अच्छा लगा। और इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, राधे राधे, पाजी यूपी 54 से, और मेरी भी हाजिरी लगा दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, सोनू भाई कहाँ थे कि टावर पे चढ़ने की नौबत आ गई। और जुड़ गए हैं दिल प्रेम दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला फरमाइश पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा भारती जी, मेरा नाम है, मेरा नाम आप बताइएगा। ओ तो राकेश भारती बक्सर से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला फरमाइश कॉल के माध्यम से पहुँचा हुआ है, चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या इनकी फरमाइश। हेलो।
1: हेलो मैम
0: जी, नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में। वालेकुम अस्सलाम,
1: गाना सुना दीजिए।
0: नाम बताइएगा अपना। अच्छा जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको? गाना
1: बताइए।
0: बर्बादी सॉन्ग।
1: ठीक है,
0: ओके, फिर गाना आपका प्ले कर दिया है। एंजॉय कीजिए सभी के साथ रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
1: ठीक है।

0: तो भौजी आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
1: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
0: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
2: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
0: एसपी ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
5: प्योरिटी यानी मामी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन्स तो मेरा सर्टिफिकेशन।
0: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए एसपी ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
6: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
0: आज यहाँ एसपी ज्वेलर्स, जो है डीएवी गर्ल्स स्कूल के सामने, स्टेशन रोड, गोपालगंज।
7: और अब एसपी ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
0: कॉल करें 85070-32042 पे।
8: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
9: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद हैं अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
8: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
10: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
8: संपर्क करें 9939365923।
11: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
12: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
11: आज ही संपर्क करें 7388894703 या 9198886973।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782191। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँच चुके हैं और हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है। तो चलिए, कॉल भी डिस्कनेक्ट हो गया, कोई बात नहीं। हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैम अपनी जिंदगी के बस यही वसूल है, अगर तू कह तो काटे भी कबूल हैं, हंस कर चल दो कांच के टुकड़ों पर भी, अगर तू कहे ये मेरे बिछाए हुए फूल हैं। भारती जी नमस्कार, गाना सुपर से ऊपर चल रहा है, और क्रीम कलर की दिलीप राम। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं, नमस्कार भारती जी, और हम भी जुड़ गए हैं, हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा, और मैसेज करने वाले हैं सन्यासी रंजन। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं, नमस्ते मैडम, सुनील केसरी भागलपुर से, और गाना सुनना है तू धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी, और तुझे तेरी खुशबू से पहचान लूँगा। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

अभी हम लोग ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, तो धरती पे चाहे जहाँ भी रहेगी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि हाय नमस्कार मैम, अबू धाबी से दिलीप शर्मा, और आज हमारा छुट्टी है और हम भी जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं कि मैं अशोक यादव, ग्राम सदरपुर पोस्ट बढ़रिया जिला सिवान बिहार, फिलहाल हम सऊदी अरब से जुड़े हुए हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश है पहुंची हुई है, जो कि लिख रहे हैं कि मैं राजू सोनी, और मुझे भी गाना सुनना है, और गाने के बोल हैं पवन सिंह का गाना है, और गाने के बोल हैं धनिया ये जान। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
4: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
5: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
4: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,01,354 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
5: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
4: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714861.
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन।
4: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रूपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रूपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स।

0: से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
1: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51 पे।
3: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भरोसा बहुत भारी होता है और इसे हर किसी के कंधों पर नहीं रखा जा सकता। तो बात तो सही, और मैसेज करने वाले हैं उत्तम सोने जी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है और गाना सुना दीजिएगा। और लिख रहे हैं मोहब्बत अधूरी ही अच्छी लगती है और पूरी हो जाए तो रस्में बन जाती हैं और अधूरी रह जाए तो शायरी बन जाती हैं। तो बहुत ही खूबसूरत सी शायरी है। और इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते मैम, मेरा नाम देवेंद्र कुमार, कुटवा से गाना सुनना है और सुनाना चाहते हैं अपनी पत्नी को। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले होगा। उससे पहले हमारे पास जो फरमाइश पहुंची हुई थी जो कि लिख रहे हैं कि नमस्ते भारती जी, मैं प्रेम सऊदी अरब से और आपको 3 दिनों से मैसेज कर रहा हूँ, और मेरे गाने का फरमाइश से नहीं बज रहा है और पूरा प्रोग्राम ख़त्म हो जा रहा है, फिर भी हमारा मैसेज नहीं पढ़ा जा रहा है। और लिख रहे हैं कि जो गाना हमसे कोई दुश्मनी है क्या? तो नहीं, आपसे मेरी कोई दुश्मनी नहीं है, और आपके गाने का टाइमिंग नहीं हुआ था, आज आपके गाने का टाइमिंग हो चुका है, तो मैं आपका गाना प्ले कर रही हूँ। और आप गाने के बोल हैं राखी हर साल कहेला सावन में। तो चलिए, बहुत ही खूबसूरत सा गाना, और प्ले करते हैं, सभी के साथ एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग सुना राखी पे। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं, मैडम जी नमस्ते, मैं रतन कुमार, मुझे ये गाना सुनना है और सुना दीजिएगा। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि हाय मैम नमस्कार राधे राधे, मैं अशोक यादव ग्राम सदरपुर पोस्ट बढ़रिया जिला से सिवान का रहने वाला हूँ, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और आपका भी गाना प्ले होगा, उससे पहले हमारे पास इंस्टाग्राम के माध्यम से एक मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी नमस्कार, राम धर्मेंद्र तिवारी बोल रहे हैं और चंडीगढ़ से, और हिंदी मूवी का गाना सुनना है और गाने के बोल हैं सावन के झूलों ने मुझको बुलाया। तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करेंगे और बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग है और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और X3 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97714-86164।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल की सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878891, और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277-16-65-96। तो चलिए बिना देरी किए कार्यक्रम को आगे बढ़ाएंगे और हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो।
4: हेलो मैडम जी, प्रणाम।
3: प्रणाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
4: नगेंद्र माझी उर्फ दयवान जी, अघोट पकौली बहुत दो ब्लॉक फुलवरिया से बोलते हैं मैडम जी। क्या समाचार बराबर?
3: हमारे ठीक बराबर, आपन बताए रहो कैसन बानी?
4: ठीक बा।
3: अच्छा जी, तो कौन सा गाना सुने?
4: गाना हम तंचे से गावत नहीं है ना।
3: बिल्कुल।

0: हम सब तेरे गुलाम, हम सब तेरे गुलाम। मैडम जी गुलाम फिल्म का गाना आ जाने
1: जी जी,
0: ये गाना बजाओ के बाद सबसे पहले रहूगा के सुनवाओ के चाहत निकलनी। जितना लोग सुनता सब लोग गया, हम अपना पूरा परिवार के साथ सुनता नहीं। गाना बजाई बजावे खातिर थैंक यू, ठीक बनू, सुनता नहीं प्रोग्राम।
1: रेडियो रिमझिम में कॉल करे खातिर और बहुत बहुत धन्यवाद।
0: अच्छा ठीक बा, प्रणाम
1: प्रणाम।

0: तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग मालिक मेरे होठों पे तेरा नाम, और इसी के साथ बढ़ेंगे मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहा है कि बहुत बढ़िया सॉन्ग, बस एक तेरा ही नाम। और मैसेज करने वाले हैं अजय कुमार, तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपको गाना अच्छा लगा, ये सुन के बहुत अच्छा लगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गुड आफ्टरनून, और मैसेज करने वाले हैं मुस्तफ़ा सऊदी अरबिया से जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रहे हैं कि भूख महंगाई गरीबी इश्क मुझसे कर रही थी, और एक होती तो निभाता तीनों मुझ पर मर रही थी। बहुत ही खूबसूरत सी लाइन है। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो लिख रहे हैं नमस्कार हरे कृष्णा, अभी सऊदी अरब से जुड़ा हूं, और मैं गुड्डू कुमार मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा और गाना सुनना चाहता हूं, और रिकॉर्डिंग पहुंची हुई है तो चलिए सुनते हैं रिकॉर्डिंग और क्या है इनकी फरमाइश।
1: हरे कृष्णा नमस्कार, मैं गुड्डू कुमार सऊदी अरब से, और हमको एक प्यारा सा सॉन्ग सुना दीजिए, और गाना डेडिकेट होगा आपको और सभी रेडियो रिमझिम दोस्तों को, और गाना अपनी चॉइस से सुनाइए। हरे कृष्णा।

0: और लिख रहे हैं कि नीलकमल सिंह जी की आवाज में गाना सुनना है, और गाना नीलकमल जी का कोई भी। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग नीलकमल जी की आवाज में, हुई प्यार ना दोबारा।
1: तेरी तस्वीर बना सकता

0: आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
1: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं।
2: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
1: ध्यान दें, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
2: आज ही आए डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
9: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो भारती जी, प्रेम मदेसिया पटरौना कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और भारती जी नमस्कार जी, कैसी हैं? गुड आफ्टरनून जी, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुँची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो, नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
10: नमस्कार मैम।
9: नमस्कार,
10: कैसी हैं?
9: मैं ठीक हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
10: हम भी ठीक हैं मैम।
9: अच्छा जी, नाम बता दीजिएगा अपना।
10: मेरा नाम है सुमित्रा देवी।
9: जी जी, और कौन सा गाना सुनना है आप?
10: गाना सुनना है मैम।
9: बता दीजिए कौन सा गाना।
10: मेरा पति मेरा देता है, भला है बुरा है, जो भी किया है मेरा पति मेरा देता है।
9: और सॉन्ग डेडिकेट भी है
10: जी मैम, आपको जितना सुनते हैं सभी श्रोताओं को है मैम।
9: जी जी, तो आपका गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम पे 90.4 FM में।
10: थैंक यू मैम।
9: वेलकम।

अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, भला है बुरा है जैसा भी है मेरा पति मेरा देवता है। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हाय मैम नमस्कार, राधे राधे, मैं अशोक यादव ग्राम सदरपुर पोस्ट बढ़हरिया जिला सिवान से हूँ और मुझे गाना सुनना है और गाने के बोल हैं बदरवा शिल्पी राज की आवाज़ में और समर सिंह की आवाज़ में। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अब बेटा बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
1: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
2: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
3: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्रगोखो लोड गोपालगंज, मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: ठक ठक।
5: काजी आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए

0: कमल श्री बारी मार्केट गोपालगंज।
1: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
2: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
3: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
2: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
3: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ। फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
4: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
5: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
4: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते, मैं अभिषेक सिंह ससांग पुस्तक सदन तीन फेरिया बाजार कुशीनगर से, और गाना सुनना है और प्लीज़ गाना बजा दीजिएगा। तो नहीं बजा सकती क्योंकि आपका गाना एक दो दिन पहले ही बजाए थे। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि आपका नाम क्या है प्लीज़ बता दीजिए। तो मेरा नाम भारती है, और आप बताइए आपका नाम क्या है और आप कहाँ से हैं। और इसी के साथ यहाँ अगला मैसेज जो पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि गाना बजाने के लिए दिल से धन्यवाद, और आपने एंजॉय किया, ये अच्छा लगा। और इसी के साथ हमारे पास मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मोतिहारी से MD मीनू जुड़ चुके हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो अगला मैसेज पहुंचा हुआ है लिख रहे हैं कि हेलो मैम नमस्ते, मैं प्रीति कुमारी देवी कोटवा से पहली बार जुड़ रही हूं, और कोई भी भोजपुरी सॉन्ग सुना दीजिएगा। तो आप बताइए आप अपनी पसंद से कौन सा भोजपुरी सॉन्ग किसका सुनना चाहती हैं, ये आप बताती तो सबसे अच्छा होता। पहली बार जुड़ रही हैं तो अपनी पसंद का गाना सुनना चाहिए। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि सोनी जी मेरा नाम केतन खरे है और नासिक महाराज से जुड़ा हूं, और मुझे गाना सुनना है। गाने के बोल हैं मेरा दिल भी कितना पागल है, मेरा दिल भी कितना पागल है। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: तो अभी आप लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग मेरा दिल भी कितना पागल है, और मूवी है साजन। तो बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग था, और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दुर्गेश आजमगढ़ से, गुड आफ्टरनून मैम जी, और मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि उत्तम सोने जी, जो कि लिख रहे हैं कि वाह बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग है। और इसी के साथ है यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मेरा भी हाजिरी लगा दीजिएगा और मुझे भी गाना सुनना है। और गाने की फरमाइश है जो वॉइस के माध्यम से पहुंची हुई है, तो चलिए सुनते हैं वॉइस और क्या है इनके गाने की फरमाइश।
1: हेलो, हाय, अस्सलाम वालेकुम मैम, मैं हाजिरा सूरत से फिलहाल, और मुझे भी एक सॉन्ग सुनना है। और सॉन्ग गाने में अपनी भी जिंदगी में खुशियों का पल आएगा, ढूंढेंगे तो मिल जाएगा, और सुनवाना चाहती हूँ आपको, अपने हस्बैंड जी को, और कुछ रेडियो दोस्त हैं उनको, हिना, शफाक, सलेहा, शाहजहाँ, रोशनी, ब्यूटी परवीन, और इरफान जी, कमरान जी, गुलाम हुसैन, वीरेंद्र गुप्ता, साहिल राजा, और समीर भाई, और जितने लोग जाने पहचानने वाले हैं उन सभी को।
0: तो चलिए गाना प्ले करते हैं और एंजॉय करते हैं सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

दोस्तों इसी गाने के साथ बढ़ेंगे दोपहर न्यूज की तरफ और फिर मिलेंगे आपसे दोपहर न्यूज के बाद। तब तक गाने को एंजॉय कीजिए और जिनके जिनके फरमाइश बच गए हैं दोपहर न्यूज के बाद सुनने को मिलेगा तो एंजॉय।

0: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल घोसमोड़ दरगाह रोड गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
2: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
3: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434।

0: 03 नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899225 67 या 97-714-86-164।
2: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एनडीए में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार होने वाली बाधाओं पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। दोनों पक्ष सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखने पर सहमत हुए। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तरी हिस्सों में मूसलाधार बारिश। शतरंज में ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्स का पहला खिताब जीता और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। समाचार विस्तार से। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से सोमवार को मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने भी आज इस विधेयक को पारित कर दिया। एक रिपोर्ट।
3: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा पक्षों की दलीलें पूरी होने की तारीख से 90 दिनों के भीतर निर्णय देने का प्रावधान है। यदि कोई मामला 6 महीने से अधिक समय से लंबित है तो आपूर्तिकर्ता को तय की गई राशि का कम से कम 50% भुगतान करना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। यदि कोई व्यक्ति पंजीकरण के लिए जानबूझकर गलत जानकारी देता है तो पहली बार उसे चेतावनी दी जाएगी। इसके बाद दोबारा गलती करने पर 1,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
2: इससे पहले सदन के बाद सदन की कार्यवाही शुरू होने पर सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी ने सूक्ष्म लघु तथा मध्यम उद्यम विकास अधिनियम 2006 में संशोधन संबंधी विधेयक सदन में पेश किया। विधेयक के अनुसार सभी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को एमएसएमई से खरीदे गए सामान और सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन अधिकारी दिलीप सैकिया ने सदन की कार्यवाही चलाने का प्रयास किया और प्रदर्शन कर रहे सदस्यों से सदन को सुचारू रूप से चलने देने की अपील की। उन्होंने लगातार हो रहे व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने भी विपक्ष के रवैये पर चिंता जताते हुए कहा कि गृह मंत्री अमित शाह संसद सत्र के दौरान नियमित रूप से सदन में आते हैं और देर रात तक संसद में मौजूद रहते हैं। लगातार हंगामा जारी रहने पर पीठासीन अधिकारी ने लोकसभा की कार्यवाही दिनभर के लिए स्थगित कर दी। अब सदन की अगली बैठक सोमवार दिन में 11 बजे होगी। इससे पहले सुबह सदन की कार्यवाही शुरू होने पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने भारत छोड़ो आंदोलन के स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। राज्यसभा में भी विभिन्न मुद्दों पर विपक्ष के हंगामे के कारण सदन की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित करनी पड़ी। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि भारतीय रेलवे हर वर्ष लगभग 58 करोड़ पैकेट भोजन परोसता है और भोजन की गुणवत्ता से संबंधित शिकायतों की संख्या नगण्य है। लोकसभा में एक लिखित उत्तर में श्री वैष्णव ने बताया कि पिछले 3 वर्ष में भोजन की गुणवत्ता और स्वच्छता संबंधी शिकायतों पर IRCTC ने कड़ी कार्रवाई की है। इसके तहत

0: चुनावी भूमिका और उनके जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया।
1: वेलकम के साथ जो है और उसके बाद उन्होंने बताया जो क्या करना है, हम लोग को कैसे आगे बढ़ाना है, राष्ट्रीय हित के लिए हम लोग एक साथ कैसे काम करेंगे।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से संचालित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का उद्घाटन करेंगे। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा है कि हथकरघा क्षेत्र केवल आजीविका का साधन ही नहीं बल्कि समावेशी विकास का एक सशक्त माध्यम भी है। नई दिल्ली में आज 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि हथकरघा भारत की संस्कृति और सभ्यता का अभिन्न अंग है।
2: हजारों वर्ष से हथकरघा भारत के प्रकृतिपोषक सभ्यता की विकास यात्रा का अभिन्न हिस्सा रहा है। इसमें हमारे राष्ट्र की असाधारण विविधता दिखाई देती है। हथकरघा क्षेत्र से रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला संस्कृति और प्रकृति प्रेम को बढ़ावा मिलता है। हथकरघा भारत के स्वतंत्रता संग्राम और आत्मनिर्भरता से भी जुड़ा हुआ है।
0: राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि हथकरघा क्षेत्र से 35 लाख से अधिक लोग जुड़े हैं जिनमें लगभग 25 लाख महिलाएं हैं। उन्होंने कहा कि हथकरघा देश की अद्भुत सांस्कृतिक विविधता का प्रतीक है। राष्ट्रपति मुर्मू ने कहा कि सरकार ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े लोगों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पहले की हैं।
2: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीमियम इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलवती हुई। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: राष्ट्रपति ने हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को शुभकामनाएं दी।
2: मैं देश के प्रतिभाशाली बुनकरों, डिजाइनरों, उद्यमियों, विद्यार्थियों और भारत के हथकरघा क्षेत्र से जुड़े सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ।
0: इस अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि सरकार हथकरघा को टिकाऊ और पर्यावरण अनुकूल वस्त्र के रूप में बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुँचे।
3: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूँ।
0: कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने वर्ष 2025 के संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार प्रदान किए। कुल 22 पुरस्कार दिए गए जिनमें 3 संत कबीर हथकरघा पुरस्कार और 19 राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार शामिल हैं। ये पुरस्कार बुनकरों को उनकी उत्कृष्ट शिल्पकला, नवाचार और भारत की हथकरघा परम्परा के संरक्षण में योगदान के लिए प्रदान किए गए। इस अवसर पर देश की समृद्ध और विविध हथकरघा बुनाई परम्पराओं को समर्पित 4 स्मारक डाक टिकट भी जारी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के अवसर पर वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह के एक अंग्रेजी दैनिक में प्रकाशित लेख को साझा किया। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि इस लेख में हथकरघा को देश की सबसे बड़ी सभ्यतागत परंपरा में से एक बताया गया है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। भारत और चीन ने कल नई दिल्ली में आयोजित भारत चीन सीमा मामलों पर परामर्श और समन्वय कार्यतंत्र की 36वीं बैठक में वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति की समीक्षा की। एक रिपोर्ट।
4: विदेश मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि दोनों पक्षों के बीच सीमा निर्धारण, सीमा प्रबंधन, संस्थागत तंत्र को मजबूत करने और सीमा पार सहयोग से जुड़े मुद्दों पर विस्तृत विचार विमर्श हुआ। दोनों पक्षों ने इस बात पर बल दिया कि सीमा क्षेत्रों में शांति और स्थिरता बनाए रखना द्विपक्षीय

0: संबंधों के समग्र विकास के लिए आवश्यक है। भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में पूर्वी एशिया मामलों के संयुक्त सचिव सुजीत घोष ने किया, जबकि चीन के प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व चीन के विदेश मंत्रालय के सीमा और समुद्री मामलों के विभाग के महानिदेशक हो यानची ने किया। दोनों पक्ष वास्तविक नियंत्रण रेखा पर लंबित मुद्दों के समाधान तथा किसी भी प्रकार की गलतफहमी और गलत आकलन से बचने के लिए मौजूदा राजनयिक और सैन्य संवाद तंत्र का उपयोग जारी रखने पर सहमत हुए। इनमें कार्यतंत्र के स्थानीय कमांडर की बैठकें और अन्य सहमत तंत्र शामिल हैं। भारतीय पक्ष ने सीमा पार नदियों से संबंधित विशेषज्ञ स्तरीय तंत्र की अगली बैठक जल्द आयोजित करने की आवश्यकता दोहराई। साथ ही चल रही परियोजनाओं से संबंधित तकनीकी जानकारी साझा किए जाने के महत्व पर भी बल दिया। सुपर्णा की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से प्राची वाजपेयी।
1: केंद्रीय मंत्री संजय सेठ ने कहा है कि लंबे समय से चल रहे छात्र आंदोलन के बावजूद झारखंड सरकार ने छात्रों की चिंताओं के समाधान के लिए पर्याप्त कदम नहीं उठाए। संसद परिसर में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार की तलाश के दौरान अनेक परिवारों को आर्थिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है।
2: में कितने बड़ा करप्शन हुआ है, कितनी माताएं ऐसी हैं जिन्होंने अपना गहना बेच दिया, कितने पिता ऐसे हैं जिन्होंने अपना जमीन बेच दिया, कि एक लिस्ट होनी चाहिए कि क्या क्या सितम जो है पिछले 7-8 साल से युवाओं और छात्राओं पर ढाया है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है, मैंने कहा है कि 13 तारीख तक पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट सेशन जब खत्म होगा, यदि तब तक उसका फैसला नहीं होगा, 13 तारीख के बाद मैं वहां आमरण अनशन करूंगा।
1: सर्वोच्च न्यायालय ने आज इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश यशवंत वर्मा के आवास से कथित रूप से बरामद नकदी के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने और अदालत की निगरानी में जांच कराने की मांग वाली याचिका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। श्री यशवंत वर्मा के आवास से कथित तौर पर जले हुए नोटों के बंडल मिलने के बाद उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर महाभियोग की कार्यवाही शुरू हुई थी। उन्होंने पिछले वर्ष अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिमी हिस्सों में आज कई स्थानों पर तेज बारिश दर्ज किया। दिल्ली के लिए आज येलो अलर्ट जारी किया गया है और मध्यम से तेज बारिश की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग के अनुसार जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के कुछ हिस्सों में 12 अगस्त तक लगातार बारिश जारी रह सकती है। वहीं ओडिशा, तटीय कर्नाटक, पूर्वी मध्य प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, केरलम, माहे, दक्षिण आंतरिक कर्नाटक और पूर्वोत्तर भारत के कुछ इलाकों में भी आज तेज बारिश की संभावना है। ओडिशा में बाढ़ के बाद राहत और पुनर्वास कार्य जारी है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि राज्य के कुछ हिस्सों में हुई बारिश से बाढ़ की आशंका फिर बढ़ गई है।
3: जलका नदी मथानी में खतरे के निशान 6.50 मीटर को पार कर, जिससे बस्ता और आसपास के इलाकों में निचले स्तर की कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। अधिकारी संवेदनशील तटबंध पर नजर रखे रहे और जरूरत पड़ने पर लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने के लिए तैयार है। इस बीच IMD ने अगले 5 दिनों तक पूरे उड़ीसा में व्यापक बारिश, आंधी और बिजली गिरने का अनुमान लगाया है। मयूरभंज के लिए ऑरेंज वार्निंग और कई अन्य जिलों के लिए येलो वार्निंग जारी की गई है। राज्य सरकार ने बाढ़ से प्रभावित 22 जिलों के लिए शुरुआती सहायता के तौर पर 110 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
1: भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानानंद ने अमेरिका में आयोजित ग्रैंड चेस टूर सेंट लुइस रैपिड और ब्लिट्ज का खिताब जीत लिया है। प्रज्ञानानंद ने उज्बेकिस्तान के ग्रैंड मास्टर जावोखिर सिंदारोव के साथ ड्रॉ खेला। उन्होंने टूर्नामेंट में 35 में से 23 अंक हासिल किए। बैडमिंटन में भारत की रक्षिता रामराज और अश्मिता चालिहा ने दक्षिण कोरिया के आसन में कोरिया मास्टर्स के महिला सिंगल सेमीफाइनल में प्रवेश कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में रक्षिता ने अपने ही देश की तन्वी शर्मा को और अश्मिता ने जापान के हिना अकेची को हराया। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित किया। विपक्ष के हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने NDA में नए शामिल हुए सांसदों से मुलाकात की। संसद में बार बार व्यवधान पर चिंता व्यक्त की। भारत और चीन ने वास्तविक नियंत्रण रेखा की स्थिति पर चर्चा की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रीय हथकरघा पुरस्कार 2025 प्रदान किए। देश के कई उत्तर हिस्सों में मूसलाधार बारिश। और रक्षिता रामराज तथा अश्मिता चालिहा ने कोरिया मास्टर्स बैडमिंटन टूर्नामेंट के महिला सिंगल्स के सेमीफाइनल में प्रवेश किया। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
4: दोपहर न्यूज के बाद स्वागत है आप सभी का रेडियो रिमझिम 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं आगे का प्रसारण।
5: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
6: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
5: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
6: अभी कॉल कीजिए 90066-7231।
5: कॉल कीजिए 90066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है, इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523-52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-41-51-51 पे।
8: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर 0 अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना 0 बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
9: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
10: हर घर सूर्य घर।
11: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
12: मैं बनूंगा। मैं भी बनूंगा।
7: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
11: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029-94921 पे,
7: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
11: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 AMZ पर।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।

0: ओम नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सीरिया रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
0: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
1: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
0: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
1: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
0: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।

छोटी सी ब्रेक और दोपहर न्यूज के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और मैं हूं आप सबकी दोस्त आरजे भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852782891। जी हाँ, 9852782891। और कॉल करने के लिए हमारा नंबर है 7277165696। जी हाँ, 7277165696। और इसी के साथ बढ़ेंगे आगे की तरफ, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि मोतिहारी से पुट्टू भाई मुझे गाना सुनना है, और गाने के बोल पहुँचे हुए हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मुझे भी गाना सुनना है, और प्रीति कुमारी देवी कोटवा से पहली बार जुड़ी हैं तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और लिख रही हैं कि मुझे गाना सुनना है का देखे ला ऐसे हंस के, और गाना चंदा जी की आवाज़ में सुनना है। और तो चलिए बिना देरी किए गाना को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे ये खूबसूरत सा सॉन्ग सभी के साथ।

0: अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग अचरे में बंधले दिल बंधले रहे था, और गाना था मणि मिराज और चंदा जी का, तो बहुत ही खूबसूरत सा गाना था। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दिनेश कुमार दोहा कतर से जुड़ चुके हैं, और नमस्ते जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है, उससे पहले हमारे पास कॉल के माध्यम से फरमाइश पहुंची हुई है, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो
1: मैडम जी।
0: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में। अभी तो खा के आई हूँ। बता दी कौन सा गाना सुने आज? कौन सा गाना सुने के बाद? तो गाना के बोल बता दी।
1: फूल और कांटा के।
0: कौन सा गाना? फूल और कांटा के। और गाना किसी को सुनाना भी है? तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम जी नमस्ते।
0: नमस्ते।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
4: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
5: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
6: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
5: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
3: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।

छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम। और मैं आप सभी को एक बात और बता दूं कि आप रेडियो रिमझिम को यूट्यूब चैनल पर और फेसबुक ट्विटर पर विजिट करके गोपालगंज के हालचाल सुन सकते हैं और समाचार के बारे में जान सकते हैं। तो इसी के साथ चलिए बढ़ते हैं अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि नया पारा भिरई जिला बालोद, बसंत कुमार ठाकुर, भारती मैम जी सादर नमस्ते। आज मैं पहली बार शामिल हो रहा हूँ और मुझे भी गाना सुनना है, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी और आपको भी गाना सुनाया जाएगा। और हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दुर्गेश आजमगढ़ से और गाना सुनना चाहते हैं, और गाने के बोल हैं सच्ची कहो हमसे तुमको कितना प्यार है। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

अभी हम लोग ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग बसंत कुमार ठाकुर जी की तरफ से, और लिख रहे हैं कि भारती मैम जी आपकी आवाज़ कोयल की तरह है, बेहतरीन मधुर स्वर है और आपने हमारे मैसेज शामिल किया है, इसके लिए आपको दिल से धन्यवाद। और सुनाना चाहते थे प्रमोद कुमार साहू लीला साहू को, तो आपने इंजॉय किए ये सुन के अच्छा लगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि उल्फत में कभी यह हाल होता है, आंखें हंसती हैं मगर दिल रोता है, मानते हैं हम जिसे मंजिल अपनी, हम सफ़र उसका कोई और होता है। तोहरो याद आवेलाल किना संहिता जी का सुपर सॉन्ग दिलीप राम, और लिख रहे हैं अपने दिल का दर्द उसे बताना चाहता हूँ, उसे कितना चाहता हूँ, उसे महसूस कराना चाहता हूँ, कितना रोया हूँ उसे पाने के लिए, उसकी गोद में सर रखकर उसे बताना चाहता हूँ। तो बहुत ही खूबसूरत के लाइन के साथ जुड़े हुए हैं। और इसी के साथ यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि थैंक्स नाम बताने के लिए। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा है जो कि लिख रहे हैं, हेलो मैम नमस्कार, मैं विनोद कुमार चौहान विलेज कोयनी से और अभी देवघर झारखंड में हूँ, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश है पहुंची हुई है दीपक मुंबई से, और गाने के बोल हैं ये दिल ये पागल दिल। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: नमः शिवाय।
1: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
0: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
1: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
0: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
1: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
0: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
1: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
0: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
1: बोलबम हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
0: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मैटरनिटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: यहाँ है डॉक्टर इमरान।

0: हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
1: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
0: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
1: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
0: पता, कमला राय कॉलेज रोड नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
2: थोड़े से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, और मैं हूँ आप सबकी दोस्त आरजे भारती। और यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप इंस्टा कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं, और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852878291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए बिना देरी किए बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो लिख रहे हैं कि फूल है गुलाब का जो टूट कर भी खुशबू दे जाता है, और प्यार करना उसी से जो रूट कर भी अपना हो जाता है। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है, लेकिन अपना नाम नहीं लिखे हैं कि कौन है और कहाँ से है, लेकिन इनका भी बहुत बहुत स्वागत है। और आपको बता दूँ, अपना नाम ज़रूर बताइएगा कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि दीदी जी नमस्कार, ब्रजेश मिस्त्री दिल्ली से मैसेज भेज रहा हूँ, और फिल्म दिलवाले का गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, और आपका भी गाना प्ले होगा, पर थोड़ा वेट कीजिए। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैं रामविलास गवरिया जैतापुर बलरामपुर उत्तर प्रदेश से जुड़ गया हूँ, और मुझे भी गाना सुनना है। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ जो अगला मैसेज पहुँचा हुआ है लिख रहे हैं कि बदले नहीं हम बस खामोश होना सीख लिए हैं, जिंदगी के हर एक दर्द को हंसकर सहना सीख लिया, गिला नहीं अब किसी के बदले जाने से क्योंकि हमने अकेले मुस्कुराना जीना सीख लिया। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं पाजी यूपी 54 से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास अगली फरमाइश है पहुंची हुई है कॉल के माध्यम से, तो चलिए लेते हैं कॉल और सुनते हैं क्या है इनकी फरमाइश। हेलो जी, बहुत वालेकुम अस्सलाम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में। नाम बता दीजिएगा अपना। अच्छा जी, और कौन सा गाना सुनना है आपको?
3: क्या
2: गाना बता दीजिए, कौन सा सुनना है?
3: भारत की वाली का गाना सुना दीजिए।
2: और गाने के बोल कुछ याद है?
3: जो अगले सप्ताह में बजाई थी वही बजा दीजिए, कोई भी बजा दीजिए।
2: आप बताती तो अच्छा होता। तो चलिए आपका गाना प्ले कर दिया है, एंजॉय कीजिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग, और इसी गाने के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि प्रमोद कुमार साहू भिरई दिलवाले फिल्म का गाना सुनना है, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश पहुँची हुई है, लिख रहे हैं गुड आफ्टरनून, और भगवान सिंह दोहा कतर से गाना सुनना चाहते हैं, और गाने के बोल हैं ये धरती चांद सितारे कुर्बान मूवी का। तो चलिए बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

और यहाँ श्री भगवान सिंह जो कि दोहा कत्तर के रहने वाले हैं उनके तरफ से मैसेज पहुंच गया, लिख रहे हैं मेरा मनपसंद गाना बजाने के लिए आपका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, रेडियो रिमझिम पर इस गाने को सुनकर मेरा दिल दिन बन गया और पूरी टीम ऐसे ही शानदार काम करती रहे, एंजॉय कीजिए अपने गाने को।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
5: माँ, अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
6: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। तो बिना देरी किए बढ़ेंगे आगे की तरफ, और हमारे पास यहाँ बहुत सारे मैसेज पहुँचे हुए हैं जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैम, सलमान अली साउथ बंटी बैकुंठपुर से गोपालगंज का रहने वाला हूँ, बिहार से, और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि जिंदगी में कोई प्यार से प्यार नहीं मिलता, जिंदगी में कोई प्यार से प्यार नहीं मिलता, जो है पास आपके उसको संभाल कर रखना, क्योंकि एक बार खोया प्यार दोबारा नहीं मिलता। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन के साथ जुड़े हुए हैं धनेश कुमार मिश्रा जी दिल्ली से, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास अगला मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि इस बार अच्छा लगा जी मैम आपकी आवाज़ वो। इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि मैसेज देख लेते हो मैडम जी, लेकिन गाना नहीं बजाते हो, और मोतिहारी से MD मीनू जी, तो आपका, आपको मैं बता दूँ, आपका गाना प्ले हो चुका है और फिर से अगले बुधवार को ही प्ले होगा, इसीलिए मैं आपका गाना नहीं प्ले कर रही हूँ। और इसी के साथ यहाँ हमारे पास एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि बोलिए जी हम भी फरमाइश करें, और जी बिल्कुल आप भी फरमाइश कर सकते हैं, और इसी के साथ अपना नाम भी ज़रूर बताइएगा कि आप कौन हैं और कहाँ से हैं। और यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं मैम, मैं मोहब्बत मोहम्मद सदाम मुंबई से और जुड़ गया हूँ, और मुझे भी एक गाना सुनना है, और गाना सुनवा दीजिएगा तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ जो हमारे पास अगली फरमाइश पहुँची हुई है जो कि लिख रहे हैं मैं राम विलास गवरिया से, और मुझे भी गाना सुनना है, और गाने के बोल हैं शाम है धुआं धुआं दिलजले मूवी से। तो चलिए बिना देरी के इनके गाने को प्ले करेंगे और इन्जॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

आरजू झूठ है, कहानी है, आरजू का फरेब खाना नहीं। खुश जो रहना हो जिंदगी में तुम्हें, दिल किसी से कभी लगाना नहीं।

तो अभी हम लोगों ने सुना बहुत ही खूबसूरत सा सॉन्ग शाम है धुआं धुआं, और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले मैसेज की तरफ। और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि लालगंज और वैशाली से एमडी नौसाद, हमारा भी एक गाना है, गाना प्ले कर दीजिएगा। और हम भी गाना सुनना चाहते हैं, तो बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ अगला मैसेज पहुँचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि भारती जी गुड आफ्टरनून, मनीष रजाक फाजिलगढ़ कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और हमारा भी हाजिरी लगा दीजिएगा। और लिख रहे हैं कि रात गुमसुम है मगर खामोश नहीं, कैसे कह दूं आज फिर होश नहीं, ऐसा डूबा तेरी आंखों की गहराई में, हाथ में जाम है मगर पीने का होश नहीं। बहुत बहुत ही खूबसूरत लाइन है। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ लिख रहे हैं कि मेरा एक हफ्ता हो गया है भारती जी, और मैं भी फरमाइश करना चाहता हूँ, और सोनी जी कहाँ चली गई हैं, और मेरा भी मैसेज देख लीजिए। और लिख रहे हैं कि तेरी मोहब्बत से मुझे इनकार नहीं, कौन कहता है जान मुझे तुमसे प्यार नहीं, तुमसे वादा है साथ निभाने का पर मुझे अपनी सांस पर एतबार नहीं। और लिख रहे हैं शाम है धुआं धुआं, वेरी नाइस सॉन्ग। तो बहुत बहुत स्वागत है आपका, और आपका भी गाना प्ले होगा। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश है पहुंची हुई है जो कि लिख रहे हैं कि बंटी कुमार शर्मा और तरैया बिहार छपरा से, और मुझे भी गाना सुनना है, और एक रिक्वेस्ट मैंने पूरे एक ईयर बाद किया है, और आप मेरा सॉन्ग प्ले कर दीजिएगा। और गाना है सुनाना चाहते हैं रूपा जी, अभिषेक जी, अभिषेक को, अंजलि जी को और शिव सागर जी को। और गाने के बोल हैं देर ना हो जाए, कहीं देर ना हो जाए। तो चलिए बिना देरी किए गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये खूबसूरत सा सॉन्ग।

0: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
1: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
0: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
1: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
2: तो भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
3: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना?
2: ई बात बा, तो ऐसन करी कि अब चली सीधे हमरा साथे कमल श्री में। महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
4: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
5: अरे मुन्नी, तुम आ गई, चल मेरा कान का झुमका ला।
6: ओ माय गॉड, आज फिर से भूल गई।
5: मैं तुमसे कितनी बार बोली हूँ कि अब महिलाओं के सारे सामान एक ही छत के नीचे नाइस गैलेक्सी में मिल रहा है।
6: सॉरी यार, कल पक्का नाइस गैलेक्सी में जाऊंगी।
2: महिलाओं की स्पेशल दुकान नाइस गैलेक्सी।
6: आर्टिफिशियल फ्लावर, आर्टिफिशियल गहने, सौंदर्य प्रसाधन, गृह कार एवं गृह सज्जा के सामान के साथ गिफ्ट, फूलों का गुलदस्ता एवं चांदनी का विशाल भंडार हमारे यहाँ मौजूद है।
2: तो अगर आपको कुछ अच्छा, कुछ अलग चाहिए हो तो आज ही आए नाइस गैलेक्सी, हजियापुर रोड, एक्सिस बैंक के सामने, तड़कुल के पास, गोपालगंज।
6: याद रहे, शादी विवाह, जन्मदिन या किसी भी शुभ अवसर पर गिफ्ट और सजाने का सारा सामान थोक एवं खुदरा मिलता है,
2: साथ ही प्लास्टिक के सारे सामान भी उपलब्ध हैं।
7: छोटे से ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है योर वॉइस योर चॉइस के शो में, और आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। और बिना देरी किए बढ़ेंगे कार्यक्रम की तरफ, और हमारे पास यहाँ मैसेज पहुंचा हुआ है जो कि लिख रहे हैं कि हेलो मैडम जी, राम राम जी सभी को, मैं फागड़वाड़ा पंजाब से, मैडम मुझे गाना सुनना है, और भरत शर्मा का गोरिया चांद की अजूरिया नियर गुड़ बारू, और ये सॉन्ग मैं अपनी वाइफ रिंकी सोनू, रिंकी सोनी को सुनाना चाहता हूँ, और मैडम आज शुक्रवार है तो मेरा गाना बजेगा, और मैं आपको बता दूँ आपका गाना कल बज जाएगा क्योंकि अभी टाइमिंग बहुत ज़्यादा हो रहा है, और इससे पहले आपके इससे पहले यहाँ एक और फरमाइश पहुँची हुई है, और एक और मैसेज पहुंचा है जो कि लिख रहे हैं कि मैं आज फरमाइश नहीं करूंगा, मैं कल करूंगा, और लिख रहे हैं कि प्यार करो तो हमेशा मुस्कुरा के, किसी को धोखा ना दो अपना बना के, कर लो याद जब तक हम जिंदा हैं, फिर ना कहना कि चले गए दिल में यादों को बसा के। तो बहुत ही खूबसूरत लाइन है, और लिख रहे हैं कहीं देर ना हो जाए, बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश है पहुँची हुई है सदाम जी की तरफ से, जो कि मुंबई के रहने वाले हैं, और गाना सुनना है खेसारी लाल की आवाज़ में, राजवा रे राजवा। तो चलिए बिना देरी किए गाना प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ ये प्यारा सा सॉन्ग।

इसी के साथ हमारे पास बहुत सारे अभी भी मैसेज पहुंचे हुए हैं, तो मैं बता दूं समय हो गया है शो को समाप्त करने का। और प्रमोद कुमार साहू जी, मेरा वाइफ लीला गाना सुनना चाहती है, और गाना सुनाइए कोई सलमान खान का। तो मैं आपको बता दूं कि आज तो टाइम ओवर होने वाला है, कल आप सुन लीजिएगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा हुआ है, जो कि लिख रहे हैं नैन टेलर, शिवराम राजपूर, भोजपुरी गाना सुनना है और गाना है तीन थान। तो आज तो आपकी फरमाइश पूरी नहीं हो सकती, कल सुन लीजिएगा। और इसी के साथ हमारे पास यहाँ एक और मैसेज पहुँचा है, जो कि लिख रहे हैं जब भी कोई हद से ज़्यादा याद आता है तब बच्चे की तरह रोने का मन करता है। भारती जी कल मिलते हैं, बाय बाय। दिलीप राम जी, दिलीप राम दिल्ली से, तो बहुत बहुत बाय बाय। और मैसेज बहुत ही लाइन अच्छी है। और इसी के साथ हमारे पास जो अगला मैसेज पहुंचा हुआ है, जो लिख रहे हैं हाय नमस्ते मैम, मैं विमल कुमारी, आप कैसी हैं? तो मैं अच्छी हूँ और बहुत बहुत स्वागत है आपका भी। और इसी के साथ हमारे पास जो अगली फरमाइश है पहुंची हुई है, जो कि लिख रहे हैं गुड इवनिंग और टुनटुन यादव, विलेज पठरापट्टी पोस्ट, पठानपट्टी पोस्ट, पठरा जिला गोपाल बिहार से, और हमें भी एक गाना सुना है और गाना है आ अब लौट चले। तो बिना देरी किए इनके गाने को प्ले करेंगे और एंजॉय करेंगे सभी के साथ।

तो श्रोताओं, समय हो गया है कार्यक्रम समाप्त करने का। तो कार्यक्रम समाप्त करने से पहले मैं आप सबको बता दूं, यदि आप हमारे शो से जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे व्हाट्सएप इंस्टा कॉल के माध्यम से जुड़ सकते हैं। और हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9852788291। और यदि कॉल के माध्यम से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा नंबर है 7277165696। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही, और मैं आज सभी से लूँगी विदा। और सुनते रहिए ये प्यारा सा सॉन्ग।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया?
1: बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
3: शादी की ज्वेलरी लेनी है? हाँ,
4: भरोसे वाले से लेंगे,
3: पर दिया की पसंद भी जरूरी है
4: और कीमत भी।
3: प्योरिटी का सर्टिफिकेशन तो चाहिए ही।
5: SP ज्वेलर्स पे हमें पूरा भरोसा है।
6: प्योरिटी यानी मम्मी सर्टिफाइड, भरोसा और सही प्राइस यानी पापा सर्टिफाइड, और डिजाइन तो मेरा सर्टिफिकेशन।
7: गहनों की खरीदारी के लिए आप भी आए SP ज्वेलर्स, क्योंकि रिश्ते हर रोज नहीं बनते।
8: 22 कैरेट, 18 कैरेट के जेवर, शादी सेट और साथ ही पुराने जेवर बदलकर नए जेवर के करे खरीदारी।
7: आज यहाँ SP ज्वेलर्स, जो है DAV गर्ल्स स्कूल के सामने स्टेशन रोड गोपालगंज।
9: और अब SP ज्वेलर्स का नया ब्रांच मेन रोड गोपालगंज, इन फ्रंट ऑफ बासु गारमेंट्स। सभी प्रकार के गहनों के मेकिंग चार्ज पर 25% की भारी छूट।
7: कॉल करें 85070-32042 पे।
10: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा,
11: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
10: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
2: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
10: संपर्क करें 9939365923।
12: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
13: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
12: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
14: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
15: All right.

0: अपनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 39 51 51 पे।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90 066 7231।
1: कॉल कीजिए 90 066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
4: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
5: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
0: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 6200 42 34 03 6200 42 34 03। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
1: आज ही आए चंद्रगोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करें 86034 48652 पे।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80029-94921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 AMZ पर।
5: नमः शिवाय।
6: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
5: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
6: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
5: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
6: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
5: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
6: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
5: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
6: बोलबम, हर हर महादेव।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
7: ऑलराइट।

0: लीजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
1: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
0: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट, KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right. 3, 2, 1.

0: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है। लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
0: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001। नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
0: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
1: श्री गोपाल मोटर्स, गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रूपए, HF डीलक्स 76,275 रूपए, ग्लैमर एक्स 1,03,54 रूपए और एक्सट्री 125R 1,10,836 रूपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
0: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
1: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164। गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
0: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
0: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमलाराय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
0: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
0: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
5: All right.

0: ठक ठक।
1: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
2: अच्छा, मिला ही नहीं
1: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें। अब चलिए सीधे कमल श्री में।
2: जी हाँ, कमल श्री। याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
1: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
2: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
3: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ। मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे, और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा। अब मैं क्या करूँ?
4: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
3: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
4: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटो कॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज। हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है। माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी। संपर्क करें 99-399-66-999।
5: सुनिए जी, पेट में दर्द कई दिनों से ठीक ही नहीं हो रहा।
6: तो फिर देर क्यों? चलो अभी चलते हैं साई कृपा क्लिनिक में, जहां मौजूद है अनुभवी डॉक्टर, डॉक्टर स्वाति के गुप्ता, MBBS, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, पूर्व वरीय चिकित्सक, पारस हॉस्पिटल चंडीगढ़, और डॉक्टर PK गुप्ता, MBBS, BMC जनरल फिजिशियन एवं सर्जन, SVBPN, न्यू दिल्ली।
5: यहां नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन, हर्निया, अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बवासीर, भगंदर आदि ऑपरेशन की सुविधा और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
7: यहाँ सभी प्रकार का ऑपरेशन बिना टाका का आधुनिक विधि द्वारा किया जाता है। साई कृपा क्लिनिक, थावे रोड बस स्टैंड के सामने, गोपालगंज।
5: संपर्क करें 9939365923।
8: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
9: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से, संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
8: आज ही संपर्क करें 7388-89470 या 9198-88-6973।
10: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
1: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं।

0: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
1: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
0: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
2: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
3: मैं बनूंगा।
4: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
2: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 029 94 921 पे,
4: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
2: ओनली ऑन रेडियो रमझेम 90.4 आमज़ ज़ेड पर।
5: आप सुन रहे हैं रेडियो रमझेम 90.4 FM। सुनो दिल से।
6: All right.

0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
2: Now pick your phone up.
3: Hello.
2: Pick it up.
3: Hello.
2: Now pick your phone up.

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूँ। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो।
2: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमजिम 90.4 है।
2: थैंक यू और नमस्ते आपको।
1: नमस्ते,
2: अनिल बात कर रहे हैं टो टूडे।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
2: बस बढ़िया, अपना बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं।
2: तो क्या हो रहा है अभी?
1: कुछ नहीं, बस आप सभी से बातें हो रही हैं।
2: और गाना सुनना है?
1: बता दीजिए कौन सा गाना।
2: राज मूवी का कोई भी गाना सुना दीजिएगा।
1: राज मूवी का कोई भी सॉन्ग?
2: हाँ, दीनो मोरिया बिपाशा बसु, जिसमें से वो वाला दूसरा का।
1: और गाना बता सकते हैं कोई उसमें का?
2: उसमें सभी गाने अच्छे हैं, कोई भी बजा दीजिएगा।
1: जी जी, और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
2: हाँ, सभी दोस्तों को और जो नहीं पहचानते हैं पहचानते हैं।
1: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: हेलो जी, नमस्कार
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: मैं मोहम्मद सिराजन बात कर रहा हूँ, कंपनी रात कुशीनगर से।
1: जी, कैसे हैं आप?
0: जी मैं बढ़िया हूँ, अपना बताएं।
1: हम भी बढ़िया हैं। नाश्ता हो गया आपका?
0: हाँ, नाश्ता हो गया, खाना भी हो गया।
1: तो कौन सा गाना सुनाई से है?
0: आज सुना दीजिए, आवाज़ ये गाना गाकर के बता रहा हूँ।

0: बहुत अच्छा लग गा रहे हैं आप। वैसे गाना किसी को डेडिकेट है?
1: और कितने भी लोग सुनने वाले हैं तो?
0: जी जी,
1: आज शाम को चल जाएगा ना?
0: हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रेमबो 90.4 FM।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए, स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-7-14-86-164।
2: जिले का गौरव संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
3: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
4: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
5: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434003।
6: ओम नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
6: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
6: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
6: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
6: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629-3-3538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
6: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर, पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH 27, काली स्थान बंजारी, गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
7: Now pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up,
8: hello.
7: Pick it up,
8: hello.
7: Now pick your phone up.
9: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029-94-911। जी हाँ, 80029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
10: हेलो
11: जी, नमस्कार।
10: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
11: कमरान रसूल डिस्ट्रिक्ट सिवान के लिए।
10: हाँ जी, कैसे? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए, आप कैसे हैं?
11: मैं अच्छा है, अंदर तो हो गया।
10: नाश्ता हो गया है,
11: मैं तो बारिश हो रहा है दिल्ली में।
10: अच्छा, अभी आपकी तरफ बारिश हो रहा है?
11: हाँ, अभी हो रहा है।
10: अभी तो इधर भी बहुत गर्मी है और धूप भी निकला हुआ है।
11: कल भी हुआ था बारिश।
10: और बता दीजिए, गाना कौन सा सुनिएगा आज?
11: फिल्म का नाम है मदर इंडिया।
10: और गाने की बोल?
11: गाना है गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाथ, सुशांत
10: देवेंद्र।
11: गाड़ी वाले गाड़ी धीरे हाथ।
10: अच्छा जी, और गाना जो रिपीट हुई है?
11: जी, सबसे पहले आप समीर आलम, मुकेश भाई, भादर,
10: नमस्कार। रेडियो रिमझिम में कॉल किए के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाँ नमस्कार मैम
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 92.4 एफएम में।
0: भारती मैम,
1: हाँ
0: आप कैसी हैं मैम?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं। तो खाना खा कर आई है?
1: खाना खा के आते हैं। आप बताइए, आपका नाश्ता हो गया?
0: जी मैम, नाश्ता हो गया।
1: आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: जी मैं पवन सिंह का जो है कि गाना ये जीजा जगले जगले बहार बहारवा, शंकर भगवान को गाना सुनना है मैम।
1: जी जी, और सॉन्ग डेडिकेट भी है किसी को?
0: जी मैम, आपसे तो पहले बार बार हुआ है, एक बार बात हुआ था कोई भक्ति गाना पे, हे गुरुदेव आप नाम आप चरणों में, हम आपके पास कॉल किए थे, मैंने एक बार वही बात हुआ था, उसके बाद भी आपसे बात नहीं हुआ था। दो तीन बार फोन किए थे तो मुनरमा मैम उठाई थी तो उनसे बात हुआ।
1: जी जी,
0: सबको सबको डेडिकेट है मैम।
1: ओके, बस आप रेडियो रिम रिम कब से सुन रही हैं?
0: मैम हम

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरो सर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या

0: 3139564।
1: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
2: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
3: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
4: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
3: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD सादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
8: Now pick it up,
9: hello.
8: Now pick your phone up,
9: hello.
8: Pick it up,
9: hello.
8: Now pick your phone up,
9: hello.
10: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं
11: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
12: हेलो
13: हेलो
12: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 असम में।
13: जी, मैं कैसी हूँ?
12: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
13: मैं भी ठीक हूँ।
12: हम सभी ठीक हैं। और कौन सा गाना सुनना है आपको?
13: मुझे गाना सुनना है क्या ये तुमको इंतजार में,
12: एक बार और बता दीजिए, थोड़ा स्लो बोलिएगा।
13: किसका है ये तुमको इंतजार में?
12: अच्छा जी, और गाना किसी को डेडिकेट है?
13: जी मैम, जाकर
12: बिल्कुल गाइए।
13: कहने की हो गए कोई कोई दिन

0: आप तो बहुत अच्छा गाती हैं।
1: थैंक यू मैम।
0: आप जब भी फरमाइश कीजिएगा तो गा के ही बताइएगा।
1: थैंक यू मैम।
0: गाना डेडिकेट हुआ है किसी को?
1: आपको टेली मैम को सारी लिखी।
0: जी जी, तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मतलब।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी, आपका रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं और बरसात हो रही है हमारे यहाँ पर।
0: अच्छा, बारिश हो रही है आपके यहाँ?
1: जी जी जी।
0: और कौन सा गाना सुनना है आपको?
1: जी पिटर का नाम है हम।
0: और गाने के बोल?
1: गाने के बोल है कागज कलम दबादला लिख दूं दिन तेरे नाम पर।
0: ओके, और गाना डेडिकेट है?
1: सोनी मैम को है, भारती मैम को है, मनोरमा मैडम को है, और गोपाल ओझा जी है, जितेन धाकड़ जी है, गजराज सिंह लोधी जी है, ये सभी को गाना डेडिकेट है।
0: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है।
1: सॉन्ग कब आएगा ये? कल के आज?
0: आज ही आएगा।
1: ठीक है मैडम जी, धन्यवाद।
0: ओके, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम।
1: ठीक है मैडम, धन्यवाद।
0: वेलकम।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
5: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
6: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
7: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
6: आज ही आए JB हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
4: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
1: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
2: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
1: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
2: और एक्सट्रीम 125R, स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
1: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
2: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
1: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
2: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
8: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
9: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
10: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94-309-45-651 या 97-097-06-575।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो
14: गुड मॉर्निंग मैम।
13: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
14: जी मैं सुधीर कुल बोल रहा हूँ, कोरिंग जिला देवघर झारखंड से मैम।
13: हाँ जी, कैसे हैं आप?
14: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
13: हम भी अच्छे हैं
14: जी। सोनी मैम आई ईटीएम है?
13: ये तो मुझे मालूम, मैं नहीं बता सकती, ये मैनेजमेंट बताएगा हमारा।
14: जी जी जी, बुधवार को मैं बोल लगी थी मेरा, बोले की आज अल्लाह टाइम में लगाएंगे, 12:26 में लगी रही हुई, लेकिन कॉल को इग्नोर कर दिया गया, उसके बाद स्विच ऑफ हो गई।
13: अच्छा
14: जी,
13: कोई बात नहीं, आज तो लगा ना।
14: जी जी, आज तो लगी।
13: तो बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
14: आज पुरानी फिल्म का गाना सुनना है मैम, जीने की राह फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज़ में।
13: और गाने के बोल कुछ बताएंगे?
14: जी जी जी, बता रहा हूँ, एक बंजारा गाए, जीवन के गीत गाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए।
13: और सॉन्ग डेडिकेट भी है
14: जी। सबसे पहले मैं आपको, आपके रेडियो रंजन को, लिसनर को, और जितने भी रेडियो रंजन के प्यारे सुरागन हैं, सबको दिल से सुनाना चाहता हूँ। और कुछ हमारे साथी सभी हैं, मदन कौल हैं, किशन कौल हैं, राजकुमारी हैं, युगल कौल हैं, कमली कौल हैं, राजीव रोशन, रोहित कुमार सिंह, शशिधर प्रसाद यादव, विष्णु प्रसाद यादव, भोलाना कौल, संजय कौल, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ।
13: ओके, चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम।
14: जी मैम, कॉल रिसीव करने के लिए धन्यवाद मैम।
13: वेलकम।
15: नया एक फसाना के आंगन में मेरे, सवेरे सवेरे।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: कैसी हैं मैम?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: हम भी ठीक हैं।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
0: हम चप्पल लगा रही थी, लग रहा था कि आज नहीं लगेगा।
1: नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, लग जाएगा।
0: लगाते लगाते 11 बजे से लगाते लगाते अभी चल रहे हैं।
1: अच्छा, वैसे कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: और सब बताइए।
1: और सब तो बढ़िया है, आप बताइए, आप सब कैसे हैं?
0: सब ठीक है। और आपका खाना हो गया है?
1: हाँ हाँ, मेरा हो गया है।
0: चलिए सब ठीक है, कॉल लीजिए अब आराम से। मैम उस दिन गाना फरमाई थी बुधवार को, कब दूसरा गाना बजा दी।
1: अच्छा, तो वो कॉल मनोरमा जी रिकॉर्डिंग की थी, अब मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा गाना बजाई है वो।
0: हम फरमाए थे जी आले मरण जी, तो आप दूसरा गाना बजा दी। अच्छा, हम जा रहे हैं कि हम मनोरमा मैम बोल रहे हैं।
1: नहीं नहीं,
0: चलिए तो ठीक है, दूसरा गाना बजा दी।
1: कोई
0: दूसरा गाना
1: इस बार बता दीजिए, बजा दिया जाएगा।
0: तो संतोषी माँ का गाना बजा दीजिए।
1: संतोषी माँ का भक्ति सॉन्ग तो मतलब उतना नहीं बजाते हैं लोग, भक्ति सॉन्ग भी अगर हो तो फिल्म का गाना चलता है इसमें।
0: आज बजा दीजिए,
1: कोई मूवी का ही गाना बता दीजिए।
0: मदद करो संतोषी माँ।
1: अच्छा, और गाना डेडिकेट है?
0: जी मैम, आपको और सोनी मैम को, दिव्या मैम को और मनोरमा जी को और अपनी दीदी को और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी जुड़ा।
1: ओके ओके, तो वैसे आप रेडियो रिमझिम कितने दिनों से सुनती हैं?
0: मैं 2008 मतलब सुनती थी, कॉल नहीं करती थी। तो श्रुति मैम जब कॉल ले रही तो सुने तो हम भी करते थे कॉल।
1: अच्छा,
0: जब सुने तो हम भी करने लगे कॉल।
1: रेडियो से सुनती हैं या मोबाइल फोन से?
0: नहीं, रेडियो से।
1: अच्छा, चलिए बढ़िया है।
0: जब सुनी तो अच्छा लगा, सोची कि मैं भी कॉल लगा कर रेडियो पर सुनने के लिए।
1: बढ़िया,
0: अच्छा लगा है, रेडियो हम सुनते हैं हमेशा।
1: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: जी मैम।

0: Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो हेलो हेलो हेलो हेलो।
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
4: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 104 FM।
4: हाँ, किशोर बोल रहे हैं।
5: हाँ जी, कैसे आप?
4: हाँ, सब ठीक हुआ। तुम ठीक हो रहे ना?
5: हाँ।
4: तो बारिश हो तो रहा आज तो नहीं क्या हो गया? ठीक हुआ दिन, ठंडा दिन हुआ ना?
5: हाँ, आज दिनों ठंडा बाबे आतनी बारिश नहीं क्या हो खता आज हो
4: बाबे। जुम्मा है तो ठीक हो बाबू, सुना दियो कवाली बढ़िया।
5: अच्छा, कौन सा कवाली सुने?
4: तू अपना मुँह से सुना दू, अच्छा होला।
5: चलिए ठीक बाबा,
4: ठीक
5: गाना प्ले करते नहीं, सुनते हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
4: ठीक।

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है
0: हेलो
1: आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्कार,
0: आप कुमार सिंहतापुर।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, आप कैसे हैं मैडम?
1: हम भी ठीक हैं।
0: अच्छा, और बारिश वारिश हो रहा है गोपालगंज में?
1: नहीं, अभी तो नहीं हो रहा है, हुआ था रात को, अभी ठीक है।
0: अच्छा, अभी मौसम सही हो रहा है ना?
1: मौसम अभी सही हो रहा है, ठंडा ठंडा रह रहा है अभी।
0: हम लोग का तो धान बोरिंग से रोपा गया, तब बारिश हुआ, भगवान जी मेहरबान है एकदम।
1: चलिए कोई नहीं, दोबारा नहीं पटाना पड़ेगा।
0: हाँ, दोबारा नहीं चलाना पड़ेगा।
1: हाँ हाँ
0: और बताइए मैम, खाना वाना हो गया?
1: हाँ, मेरा तो हो गया, आपका भी तो हो गया क्या?
0: नहीं, हम लोग का 2 घंटा अभी टाइम है लंच होने में, अभी 11 बजे नाश्ता तो सुबह में करके आते हैं।
1: चलिए, तब तो बढ़िया है। तो
0: आज हमको गाना, आज गाना खेसारी लाल का गाना सुनवाइएगा, नया सॉन्ग।
1: खेसारी लाल का नया सॉन्ग कौन सा?
0: वो वाला गाना नहीं है वो, फलाली लगाएंगा जूते करिए। अरे वो सब छोड़ दीजिए, कौन सी कम बनवा दीजिए, अब कबो जर भी खैला पर बेअसर होला।
1: अच्छा,
0: यही कौन सिंह सुनवा दीजिएगा, ठीक है? नया नया खेसारी लाल का है गाना, लेकिन हमको याद नहीं है ना।
1: कोई नहीं, अगली बार वो बता दीजिएगा, इस बार ये पवन सिंह का सॉन्ग बजा दूंगी।
0: यही पवन सिंह के व्यवसायी सुनवा दीजिएगा।
1: जी जी
0: जी।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं
1: जी,
0: जितना रेडियो रंजन सुनने वाला है सबसे।
1: चलिए फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए के साथ रेडियो रंजन 91.4 FM।

0: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
1: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
0: और लाइट बिल के।
1: अब 0 रुपए कैसे दूं?
0: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
1: पक्का।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।
3: हर

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
2: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहाँ मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
1: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मौनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी। क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
2: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
2: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
1: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
3: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98-523-52-599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99-39-39-51-51 पे। Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. The phone game be much the head to get the
4: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-029-94-911। जी हाँ, 80-029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो।
6: हेलो, नमस्ते मैम।
5: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: जी मैम, कैसी मैम?
5: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: हम ठीक है।
5: नाम बता दीजिएगा अपना।
6: नाम सोलह देवी।
5: अच्छा, क्या हो रहा है?
6: अभी काफी नंबर बढ़ा रहे हैं बात करने के लिए।
5: अच्छा,
6: गाना सुनना है?
5: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
6: हिंदी गाना सुना दीजिए, आप देखे चला किसी को चला था।
5: एक बार और बताइएगा।
6: साधना बैरिंग है क्या? नहीं,
5: एक बार थोड़ा सा लाइन कुछ जो याद है बताइएगा।
6: चुपचाप देखा चला किस्मत समाता।
5: और गाना डेडिकेट है किसी को?
6: आप लोग सुनाना चाहते हैं? हमारा हस्बैंड है, हमारा।
5: अच्छा जी।
6: हम है, मेरा बच्चा है, बड़का लड़का नाम है, छोटा लड़का है राजा, मेरी बेटी है सोना कुमारी।
5: जी,
6: तो खाना ना खा ली है?
5: हाँ हाँ, हम खाना खा लिए। आप सबका हो गया है?
6: हम लोग का ही हो गया, फिर बस फोन भर आ रहा है।
5: जी जी। वैसे आप रेडियो का कौन कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है?
6: सब कार्यक्रम सुनते हैं, पाँच बजे से लेकर 10 बजे रात में।
7: जी जी चलिए तब तो बढ़िया है।
6: मोबाइल पर सब सुनते हैं।
7: रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड की है?
6: नहीं है, एफएम है, उसी से बराबर सुनते हैं।
7: अच्छा,
6: 4 पर उसी से बराबर सुनते हैं, सब सुनते हैं।
7: चलिए बढ़िया है, फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: नमस्ते।
7: नमस्ते।

0: हेलो,
1: बहुत स्वागत का रेडियो 90.4 FM में। वालेकुम
0: सलाम।
1: हाँ जी, कैसी हैं आप?
0: ठीक बनी है, तुम बताओ।
1: हम यूँ की ठीक बनी सन।
0: नाश्ता तो मैं,
1: हाँ नाश्ता तो घर पे करके आनी सन।
0: लंच लेके आनी है।
1: हाँ तब रहो
0: ठीक है। नाश्ता सब हो गया। गाना और बाजत का है? नहीं
1: गाना और निखे बाजत। कौन सा गाना? निखे बाजल
0: गाना कहाँ है? गाना कौन है? राजन मेरा उत्पाद है। कहाँ गाना बाजल?
1: अच्छा निखे बाजल। अब ठीक करे की बाजल बकाए नहीं है बाजल। आज बता दी, आज कौन सा गाना सुने?
0: ये तो पहले अगला शुक्रवार के कॉलर है, वो गाना देखेंगे ना बजे।
1: अच्छा जी, ठीक कर लेनी हम काहे नहीं है बाजत और गाना।
0: कौन ने बोल सर मना में भाती?
1: भारती।
0: अच्छा, यही तरह को आप कहे गाना आज भारती में बाजे बात जाए।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बाजी, आज सुन ले बुआ।
0: आपको सुनाना है ना? हो
1: जाए ना, हो जाला कबो कबो मिस्टेक हो जाला।
0: और सब ठीक बा?
1: हाँ हाँ सब ठीक बा। तो आज बता दी कौन सा गाना सुने?
0: मोहब्बत फिल्म में गाना सुने।
1: मोहब्बत मूवी पे। और गाना कौन सा?
0: मैजिक ना बजेला। बड़े बड़े होला मैजिक बजेला।
1: हाँ हाँ हाँ
0: गाना
1: गाना है आँखें खुल।

0: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
1: मैं बनूंगा।
2: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
0: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 8029294921 पे,
2: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
0: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 अमरजैट पर।
3: ओम नमः शिवाय।
4: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
3: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।

0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, कालीघाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम, हर हर महादेव।
2: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
3: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
4: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
3: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
4: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीत की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
3: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99 554 97 644।
5: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो।
7: हेलो
6: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: हाँ जी, नमस्कार।
6: नमस्कार,
7: मैं राकेश भारती बस्तर से बोल रहा हूँ।
6: हाँ जी, कैसे हैं आप?
7: बढ़िया हूँ, आप बताइए।
6: हम सभी ठीक है।
7: तो भारती जी, समझ जी कहाँ है?
6: मैं भारती बोल रही हूँ।
7: भारती जी बोल रहे हैं?
6: हाँ।
7: एक और है ना, वो क्या नाम है उनका, मुनाजमा जी। तो दो दिन से वही कर रहे हैं कभी, तो हमने सोचा कहीं वही दोनों, आप दोनों का आवाज सेम है ना?
6: अच्छा,
7: तो आप दोनों का आवाज सेम है। थोड़ा बहुत भारती जी का दीदी का थोड़ा बहुत मिलता है।
6: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
7: सुनना चाहते थे रिकेश पांडे का मोहल्ला गरमाई।
6: कौन सा गाना, एक बार और बताइएगा।
7: मोहल्ला गरमाई, बहुत पुराना संग है, वही टाइटल संग।
6: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
7: गाना तो आपको सुनाना है, हम लोग है पंचायत में, हम लोग है और आप संग है।
6: अच्छा जी, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
7: बहुत बहुत
6: वेलकम।

0: हेलो मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरा से।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: ठीक ठाक हूँ। मुझे गाना सुनना है मैडम।
1: बता दीजिए कौन सा गाना।
0: लता जी का गाना है पवन झकोरा मेरे संग गाए की गुनगुन गुनगुन आवाज। यही गाना सुनवा दीजिएगा मेरा।
1: और गाना डेडिकेट भी रहेगा।
0: और डेडिकेट आपका नाम भूल जा रहे हैं मैडम।
1: मेरा नाम भारती है।
0: अच्छा, भारती जी है।
1: हाँ
0: अच्छा, तो हुआ के बहुत बड़ा प्रणाम बा, नमस्कार बा। अल्टा दिन से बात कहाँ रहनी है?
1: रहनी है यही दिन, बस दूसर काम में बिजी रहनी है।
0: तो आज बहुत दिन के बाद वो घटाई एक जन नया आयल बड़ी वह बड़ी कोई नया आयल बड़ी।
1: हाँ हाँ
0: चल रोवा तो मैंने राहुल आवाज सुन तो बहुत रोशन बन गए कि बहुत दिन बाद हुआ आज के प्रोग्राम में शामिल भेल बने। यही तरह बीच बीच में ले तो रहे प्रोग्राम अब हम ही सोचन तो हमने एक और मत दी हमनियों के।
1: ना ना क्यों के नहीं बुलाएल हमनियों के एकदम काम मिले ला पे करला।
0: हां तो ये बात बा हमार तो रे ना राव का एकदम अब रुआ जो नहीं को बजे वाला प्रोग्राम ना तो रुआ खूब बढ़िया एकदम हो गेल बने रुआ खूब बढ़िया बोला था ले। हां अच्छा लगा था बहुत बढ़िया प्रोग्राम। हम तो डेली हम रेडियो सुन ले और वो भारतीय जी का प्रोग्राम था तेरा हम ज्यादा करके चाव करके सुन ले। अच्छा
1: जी।
0: एक बजे के प्रोग्राम में ये प्रोग्राम में तो रहो छोड़िए दला बने का नाम से एक जन आयल बड़ी हम उनका भूला जाता नहीं।
1: मनोरमा
0: हाँ उनको बोले के बड़ा बढ़िया एक्टिव है वो देखा था। आप रेडियो सुनते हैं कब से सुन रहे हैं है? कितने दिन से सुन रहे हैं? आपको अच्छा लगता है आप ऐप पर सुनते हैं या रेडियो से सुनते हैं? मैंने एक सोन वहाँ के पूछे के आधारशिला जो बड़ा बढ़िया उनका मैंने अपनौले बनी वहाँ है ना। मैंने यू सुन के हमारा बड़ा अच्छा लगता है कि सुनील जी ने अपना उलर लिया है ना, हमारे भारती जी अपना उलर लिया, मनोरमा जी यहाँ अपना ले लो बड़ी अच्छा लगा था बहुत बढ़िया है ना। तो रघु ये सोन लेके चोली कोनो कोनो सोन ले के तो मैंने के भी बा अपन गाना के सुने के चाहता तो हालत में रघु ऐसा प्रश्न करे की वो अच्छा लगा खूब बात बने कहीं कहीं करे एक बार भारती जी तब हमारा की है।
1: हाँ ठीक बा।
0: तब हम भारती जी के सुनवा बा कोनी जी तो वहाँ का परिस्थिति बतल रहे मनोरमा जी साथ में डेलीकेट रही और बाकी जितना मैं रेडियो सुनने वाला के साथ लिखेट रही की ये गाना रही मेरे संग गाया थी गुनगुन गुनगुन आवाज ले सुनवा दे मैडम ये सब।
1: ठीक बा, फिर गाना प्ले करते नहीं सुनत रहे रेडियो रिमझिम 90.4।
0: जल्दी सुनवाई हमारे भाभी जी सुनो भाभी जी सुना गाना।

0: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं। दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
1: और दुल्हन का लहंगा साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ। इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
2: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा।
3: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी।
4: अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
2: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा साड़ी सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
1: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
2: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
4: कॉल करे 87-894-18744।
5: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
6: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर एमडी सादाब के पास, जो है ईएनटी स्पेशलिस्ट।
7: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर एमडी सादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान नाक गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस वक्त ईएनटी केयर सेंटर सिसवन ढाला के उत्तर आरके मॉडल स्कूल के बगल सिवान में।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
8: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
9: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह MBBS MS जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
10: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
9: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम आरआर रोड गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 94704-34468 पे।
11: Now pick it up, hello. Now pick your phone up, hello. Pick it up, hello. Now pick your phone up.
12: के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80-29-94-911। जी हाँ, 80-29-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
13: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
14: जी हम जैन बनारस से।
13: जी कैसे हैं आप?
14: बढ़िया है।
13: क्या हो रहा है अभी?
14: गाड़िया में काम कर रहे हैं, पावर लूम।
13: तो बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है आप?
14: ये गाना है वो वाला, सारी दुनिया का जैसे एक है, तू मेरी दिल एक है। कुमार सानू आवाज।
13: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
14: जी हम दोस्त लोग को और अपने फैमिली के साथ से लेंगे।
13: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिंगलैंड कॉरेक्शन में।
0: जी मैं गांधीनगर से अजय पासवान बोल रहा हूँ।
1: जी क्या हालचाल है आपका?
0: जी बढ़िया है, अपना सुनाइए।
1: मेरा भी ठीक है।
0: जी गाना सुनाइए हमको, सौदागर दिल ले ले दिल देकर।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: सौदागर फिल्म का है, सौदागर दिल ले ले दिल देकर।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट किया है?
0: लड्डू शाह है, व्यासा है, राजेशा है, साहिल जी है, इंतजार जी है, दीपक जी है, शंकर भाई है और रेडियो रिंग सुनने वाले सभी को।
1: तो चलिए फिर आपसे गाना शुरू करते हैं, सुनते रहिए सबको। कौन सी रेडियो रिंग?

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माय चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029994911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाजत। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
2: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
1: सिर्फ 1 से 2 सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
2: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।

भगवान शंकर के विवाह का वर्णन गोस्वामी तुलसीदास ने इन शब्दों में किया है। जसी विवाह के विधि श्रुति गाई, महामुनिन सो सब करवाई। शिव ने पार्वती का पाणी ग्रहण किया, देवताओं ने हर्ष ध्वनि की, श्रेष्ठ मुनिगण वेद मंत्रों का उच्चारण करने लगे, आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी और सर्वत्र आनंद छा गया। विदा के समय जामाता को अनेक उपहार देकर हिमाचल ने हाथ जोड़े, हे शिव, आप तो स्वयं पूर्ण काम हैं, मैं आपको क्या दे सकता हूं। हिमाचल पत्नी मैना ने विनती की, उमा मुझे प्राणों से भी अधिक प्रिय है, आप इसके सभी अपराध क्षमा कीजिएगा। और बेटी के लिए मां के वचन थे, हे पार्वती, तुम सदा शिव जी के चरणों की पूजा करना। तत्पश्चात शिव पार्वती कैलाश पर्वत के लिए विदा हुए।

0: गोपालगंज अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
1: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
0: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
1: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
0: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
1: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
0: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
1: कॉल नाउ 9656 59536 या 9656 57902।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
1: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने, सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
0: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड, गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94 309 45 651 या 97 097 06 575।
4: ठक ठक।
5: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
6: अच्छा मिला ही नहीं।
5: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
7: जी हाँ, कमल श्री, याद रखे सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
5: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
7: याद रहे सीढ़ी से ऊपर आना है, जी हाँ सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
8: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
9: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
8: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
9: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल, सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99 399 66 999।
10: अरे सुनते हो जी, शादी में बस कुछ ही दिन बचे हैं, दूल्हे के कपड़े अभी तक नहीं बने
11: और दुल्हन का लहंगा, साड़ी कुछ भी तय नहीं हुआ, इतना बड़ा फंक्शन है, सब लोग क्या कहेंगे?
0: मम्मी पापा, मुझे चाहिए रॉयल कोट पैड का कपड़ा और रिसेप्शन के लिए एक शानदार कुर्ता पजामा,
1: और मुझे चाहिए ट्रेंडिंग लहंगा, सुंदर साड़ी और कुछ बढ़िया सूट पीस भी। अरे बस इतनी सी बात, आप लोग गए नहीं क्या मुरारी लाल विजय कुमार?
0: मेन रोड गोपालगंज में स्थित मुरारी लाल विजय कुमार क्लोथिंग स्टोर, जहां दूल्हे के लिए मिलता है कोट पैंट, पैंट शर्ट और कुर्ता पजामा का बेहतरीन कपड़ा, और दुल्हन के लिए लहंगा, साड़ी, सूट पीस, हर डिजाइन, हर रंग, हर बजट में।
11: तो फिर देर किस बात की, चलो अभी चलते हैं मुरारी लाल विजय कुमार।
0: मुरारी लाल विजय कुमार, मेन रोड गोपालगंज, प्रोप्राइटर विजय कुमार केडिया।
1: कॉल करें 87 894 18 744।

मुनि याज्ञवल्क्य ने ऋषि भरद्वाज को राम कथा सुनाते हुए पार्वती की कठोर तपस्या का वर्णन किया। शिव पार्वती के विवाह के प्रसंग में उन्होंने संक्षेप में कार्तिकेय के जन्म की कथा भी सुनाई। शिवजी का चरित सुनकर मुनि भरद्वाज अत्यंत प्रसन्न हुए। उस कथा को आगे सुनने की उनकी लालसा और भी बढ़ गई। ये जानकर मुनि याज्ञवल्क्य के अतिशय प्रेरित हुए, बोले, शिवजी के चरणों में जिनकी प्रीति नहीं होती उन्हें श्री राम की कृपा भी प्राप्त नहीं होती।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के

0: थावे रोड बस स्टैंड के सामने गोपालगंज।
1: संपर्क करें 9939365923।
2: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
3: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला गोरखपुर।
2: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198886973।
4: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
5: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
4: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
5: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
4: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
6: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
7: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
6: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
7: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
6: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
7: जानकारी है तो कॉल करे 6052 62112 पे।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप संजीव कुमार वर्मा से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हथकरघा

0: बुनाई तकनीक ने देश में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला और संस्कृति को संरक्षित किया है। बिहार संग्रहालय 11वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने म्यूजियम के विस्तार के लिए 1 एकड़ जमीन का दिया आश्वासन। बिहार के मखाने ने भरी वैश्विक उड़ान। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने निर्यात की पहली खेप ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना की। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। अब समाचार विस्तार से। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। इस अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि हथकरघा के क्षेत्र ने देश में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला और संस्कृति को संरक्षित किया है।
1: हमारे हथकरघा सेक्टर में भारत की रूरल प्रीवियन इकोनॉमी का सबसे सुंदर और मानवीय उदाहरण बनने की संभावनाएं बलबती हुई है। महत्वपूर्ण हैंडलूम क्लस्टर्स को आधुनिक प्रौद्योगिकी और सामूहिक प्रशिक्षण विधियों से जोड़ा जा रहा है। बुनकरों की आय बढ़ाने के लिए अनेक पारदर्शी उपाय सरकार ने हाथ में लिए हैं। बुनकरों को उनकी मेहनत का पूरा लाभ सीधे मिलने के रास्ते खुले हैं।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सभी नागरिकों से उत्साह और प्रसन्नता के साथ आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस मनाने की अपील की है। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि आने वाले वर्षों में हथकरघा उत्पादों की मांग बढ़ने की संभावना है और सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि इस बढ़ती मांग का लाभ सीधे बुनकरों तक पहुंचे।
2: 7 अगस्त को ही प्रधानमंत्री ने हैंडलूम दिवस को स्थापित करने का काम किया। बुनकर भाइयों को एक संदेश दिया, आपके नेतृत्व में भारत का वस्त्र बुनकरों के आमदनी को भी एक ऊंचाई पर ले जाने का संकल्प लेता हूं।
0: इस मौके पर डाक विभाग ने 4 स्मारक डाक टिकट जारी किए। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने हथकरघा दिवस के मौके पर पटना के खादी मॉल से खरीदारी की। श्री चौधरी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल के आह्वान को आगे बढ़ाते हुए लोगों से स्थानीय उत्पाद अपनाने की अपील की। हथकरघा दिवस के अवसर पर प्रदेश के विभिन्न जिलों में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। एक रिपोर्ट।
3: हथकरघा भारतीय संस्कृति की ऐसी धरोहर है जिसने सदियों से लाखों बुनकर परिवारों की आजीविका को संबल दिया है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस महज एक दिवस नहीं बल्कि उन हाथों को सम्मान देने का अवसर है जो अपने हुनर से आत्मनिर्भर भारत की मजबूत बुनियाद तैयार कर रहे हैं। बिहार स्टेट हैंडलूम वीवर्स कोऑपरेटिव यूनियन के चेयरमैन मोहम्मद नकीब अहमद ने कहा कि पीएम मोदी के संकल्प से आज बुनकरों की स्थिति में बदलाव देखने को मिल रहा है।
4: पूरे दिन हिंदुस्तान में तरह का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन का मेन देश है कि बुनकरों में कैसे उन्नति हो और ये जो मशीनी दौर है, खासकर आप जान रहे हैं कि ये मशीनी दौर में आज का स्वदेशी को टिकना एक बहुत ही मुश्किल काम है, लेकिन हालात जैसे भी है आप देखते होंगे कि एक चिड़िया परिंदा कोई उसका पढ़ा लिखा कुछ नहीं, लेकिन उसको भी रिस्क मिलता, वो भी सुबह और शाम में अपना पेट भर के खाती है।
3: औरंगाबाद जिले के कुटुंबा प्रखंड के तिल्हारा गांव में आयोजित कार्यक्रम में हथकरघा उद्योग की संभावनाओं और बुनकरों के स्वरोजगार पर चर्चा हुई। सामर्थ्य योजना के तहत कुटुंबा और नवीनगर की 30 महिलाओं समेत 100 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है। रोहतास के जिला उद्योग केंद्र सासाराम में आयोजित कार्यक्रम में बुनकरों को उद्योग विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई। जिला प्रशासन ने पारंपरिक बुनाई को आधुनिक तकनीक और नए डिजाइन से जोड़ने पर बल दिया। समाचार कक्ष से निधि श्री।
0: पटना स्थित बिहार संग्रहालय आज अपना 11वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने स्थापना दिवस पर संग्रहालय में आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ किया। एक रिपोर्ट।
5: इस अवसर पर कई कला प्रदर्शनियों, संगोष्ठियों तथा नृत्य और गायन कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही देश भर से 100 से अधिक कलाकारों की विशेष कलाकृतियों की प्रदर्शनी भी लगाई गई है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने इस अवसर पर कहा कि पटना में वर्तमान में 2 संग्रहालय हैं और तीसरे संग्रहालय की परिकल्पना की जा रही है।
6: एक म्यूजियम जो पुराना म्यूजियम है जो आपको तारामंडल के सामने है, दूसरा नया म्यूजियम बना और तीसरा म्यूजियम आज से 30 साल आगे की सोच के लिए दुनिया के स्तर पर हम लोग अपने म्यूजियम से अपने चीजों को, अपनी लोक कला को कैसे लोगों तक पहुंचाए।
5: बिहार संग्रहालय के महानिदेशक अंजनी कुमार सिंह ने आकाशवाणी समाचार पटना से विशेष बातचीत में बताया कि राज्य सरकार ने नए संग्रहालय के निर्माण के लिए बिहार संग्रहालय को 1 एकड़ भूमि उपलब्ध कराई है।
7: हाँ, हम लोग 11वां हमारा स्थापना दिवस था और राज्य सरकार ने हम लोग को 1 एकड़ जमीन दी है संग्रहालय के बिल्कुल बगल में, उसमें हम लोग भविष्य का संग्रहालय बनाना चाहते हैं।
5: बिहार स्थापना दिवस पर आयोजित 3 दिवसीय इस कार्यक्रम में विभिन्न प्रकार की प्रस्तुतियों का आयोजन किया जाएगा। आकाशवाणी समाचार के लिए पटना से सत्यम कुमार।
0: मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की मौजूदगी में आज पथ निर्माण विभाग और नाबार्ड के बीच 21,000 करोड़ रुपए की लागत से विभिन्न परियोजनाओं के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के पूरा होने से ग्रामीण क्षेत्रों में सड़क और पुल निर्माण संबंधी विकास कार्यों को बढ़ावा मिलेगा। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आज बिहटा स्थित इंटीग्रेटेड इरिगेशन कम पैकिंग सेंटर से मखाने की पहली निर्यात खेप को हरी झंडी दिखाकर ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री ने कहा कि यह बिहार और पूरे देश के लिए गर्व का विषय है। श्री सिन्हा ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लोकल टू ग्लोबल, वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण कदम है।
8: देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विकसित भारत में विकसित बिहार की बड़ी भूमिका को जिन्होंने स्वीकारा है उसकी शुरुआत है और ये बिहार के लिए कहीं न कहीं बड़ा ही शुभ रहेगा, रोजगार का अवसर देगा और हमारा बिहार एग्रीकल्चर आधारित उद्योग के एक नया वातावरण बनाएगा और हम अपने किसानों को इससे मखाना से जुड़े लोगों की कठिनाइयों को भी दूर करेंगे, उनको इनके लिए छोटे छोटे यंत्रों भी हम उपलब्ध कराएंगे, इसका बैंक भी स्थापित करेंगे, अनुदान भी देंगे।
0: राज्य के 4 नए अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में 17 अगस्त से पढ़ाई शुरू होगी। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री मोहम्मद जमा खान ने पटना में यह जानकारी देते हुए बताया कि जमुई, नालंदा, कैमूर और मुजफ्फरपुर जिले में विद्यालय भवनों का निर्माण पूरा हो चुका है।
9: वर्तमान में 2 अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के संचालन हेतु कुल 488 शैक्षिक एवं गैर शैक्षिक पदों की स्वीकृति प्रदान की गई है। अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालयों में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु कुल 288 पदों के लिए TRE4 पंजीयों के माध्यम से बिहार लोक सेवा आयोग पटना को ऐसी याचना भेजी जा चुकी है। इस वर्ष सभी आवासीय विद्यालयों के छात्रों के लिए जी नीट कोचिंग की व्यवस्था की जाएगी।
0: राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद उपेंद्र कुशवाहा ने प्रदेश के कॉलेजों और विश्वविद्यालयों के शिक्षकों तथा कर्मचारियों को कैशलेस सुविधा देने की मांग की है। इस सिलसिले में श्री कुशवाहा ने मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी को पत्र भी लिखा है। शेष समाचार एक अंतराल के बाद।

0: समाचारों में आपका फिर स्वागत है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR News_Patna को फॉलो कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने आवास पर राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन में हाल ही में शामिल हुए विभिन्न सांसदों से मुलाकात की। इनमें नेशनल सिटीजन्स पार्टी ऑफ इंडिया, NCPI और शिवसेना के सांसद शामिल थे। प्रधानमंत्री ने राष्ट्र निर्माण में सांसदों की प्रभावी भूमिका और उनकी जिम्मेदारियों पर विस्तार से चर्चा की तथा इस दिशा में सक्रिय योगदान देने का आह्वान किया। देश में 9 अगस्त से शुरू हो रहे हर घर तिरंगा कार्यक्रम की तैयारी की जा रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने लोगों से आग्रह किया है कि इस बार वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने के सम्मान में इसका गायन करते हुए तिरंगे के साथ वीडियो बनाकर अपलोड करें।
1: इसको हमने और इवॉल्व किया है, और अधिक विकसित किया। आज संगीत के साथ में कराओके के माध्यम से देश का हर नागरिक वंदे मातरम को गाए, अभ्यास करे और अपना वंदे मातरम के साथ में सेल्फी लेकर के अपना फोटो अपलोड करे। मैं ये मानता हूँ कि ये केवल वंदे मातरम का गायन या उसको सीखना नहीं है, अपितु उन सब हुतात्माओं को श्रद्धांजलि देते हुए जिन्होंने देश के लिए अपने आप को कुर्बान किया। इस महत्वपूर्ण पड़ाव में जब देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है, उसी तरह के संकल्प, उसी तरह के जोश, उसी तरह के पराक्रम, उसी तरह के योगदान की आवश्यकता है।
0: प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत जहानाबाद में जिला प्रशासन की ओर से स्थानीय नागरिक और विभिन्न संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ संवाद किया गया। अररिया जिले में भी हर घर तिरंगा अभियान के तहत जिला पदाधिकारी विनोद दुहन ने प्रत्येक प्रखंड में 4000 राष्ट्रीय ध्वज वितरित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। मानसून की सक्रियता से प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में बारिश का सिलसिला जारी है। पटना, बेगूसराय, बेतिया और मधेपुरा में हल्की से मध्यम स्तर की बारिश हुई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। कई स्थानों पर आंधी और वज्रपात की भी आशंका है।
2: दिनांक 8 अगस्त को राज्य के दक्षिण मध्य एवं दक्षिण पूर्व भागों अनेक स्थानों पर वर्षा की संभावना है तथा शेष भागों के कुछ स्थानों पर वर्षा की संभावना है। राज्य के दक्षिण भाग के जिलों में मेज गर्जन वज्रपात के साथ हवा की गति 30 से 40 किमी प्रति घंटे तक चलने की संभावना है।
0: संत शिरोमणि गुरु रविदास जी की 650वीं जयंती आज श्रद्धापूर्वक मनाई जा रही है। इसके लिए प्रदेश भर में अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कला और संस्कृति विभाग की ओर से इस मौके पर समरसता संकल्प अभियान की शुरुआत की जा रही है। रोहतास जिले के सुप्रसिद्ध भोजपुरी कलाकार सुरेंद्र राम आज आकाशवाणी समाचार पहुंचे। उन्होंने पारंपरिक आल्हा गायन की प्रभावशाली प्रस्तुति दी, जिसे श्रोताओं ने सराहा। गौरतलब है कि सुरेंद्र राम लंबे समय से आकाशवाणी से ग्रेड 1 कलाकार के रूप में जुड़े हुए हैं।

पटना के अगमकुआं थाना क्षेत्र अंतर्गत जीरो माइल के पास आज सुबह बस की चपेट में आने से एक युवक की मौत हो गई। इस घटना से आक्रोशित स्थानीय लोगों ने उग्र प्रदर्शन किया। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को भी नुकसान पहुंचाया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रित किया। बेगूसराय में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो की टीम ने सदर अंचल कार्यालय के क्लर्क और प्रभारी नाजिर सोनू कुमार को 4,000 रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार क्लर्क एक शिकायतकर्ता से सरकार द्वारा जारी की गई मुआवजे की राशि देने की एवज में रिश्वत की मांग कर रहा था। दिल्ली पुलिस की एक टीम आज शेखपुरा जिले के शेखोपुर सराय थाना पुलिस के सहयोग से वाजिदपुर गांव में छापेमारी कर अंतरराज्यीय साइबर गिरोह के एक सदस्य को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार आरोपी पर 12 लाख रुपए से अधिक की ऑनलाइन राशि ठगी करने का आरोप है। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण ने खेलों में पारदर्शिता और निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने के लिए एक दिवसीय एंटी डोपिंग कार्यशाला का आयोजन किया। पटना के पाटलिपुत्र खेल परिसर में आयोजित कार्यशाला में 100 से अधिक खेल प्रशिक्षकों ने भाग लिया। प्राधिकरण के महानिदेशक रविंद्रन शंकरन ने कहा कि खिलाड़ियों और खेल से जुड़े सभी लोगों को डोपिंग के नियमों और उसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक कराना इस पहल का उद्देश्य है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। आज राष्ट्रीय हथकरघा दिवस है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, हथकरघा बुनाई तकनीक ने देश में रोजगार, महिला सशक्तिकरण, कला और संस्कृति को संरक्षित किया है। बिहार संग्रहालय 11वां स्थापना दिवस मना रहा है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने म्यूजियम के विस्तार के लिए 1 एकड़ जमीन का दिया आश्वासन। बिहार के मखाने ने भरी वैश्विक उड़ान। कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने निर्यात की पहली खेप ऑस्ट्रेलिया के लिए रवाना की। और मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों के दौरान राज्य के दक्षिण पश्चिम, दक्षिण मध्य और दक्षिण पूर्व भागों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का यह अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।

0: नई बाइक का सपना अब होगा पूरा, वो भी सबसे कम दाम में।
1: इस सीजन अपने घर लाइए हीरो की नई चमचमाती बाइक या स्कूटर श्री गोपाल मोटर्स से, वो भी ऑन रोड रेट पर।
0: श्री गोपाल मोटर्स गोपालगंज में पाए। स्प्लेंडर प्लस 89,815 रुपए, HF डीलक्स 76,275 रुपए, ग्लैमर एक्स 101,354 रुपए और एक्सट्री 125R 110,836 रुपए में, इंश्योरेंस और रजिस्ट्रेशन के साथ।
1: विजिट कीजिए श्री गोपाल मोटर्स, NH 27 बंजारी, चैन पट्टी, गोपालगंज,
0: या अभी कॉल कीजिए 92899-22567 या 97-714-86-164।
2: प्रसाद क्लिनिक।
3: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
2: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंग स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
3: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
1: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
0: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
1: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
0: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
1: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
5: मैं बनूंगा।
6: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाएं और बन जाएं कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
4: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80-29-94-921 पे,
6: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
4: ओनली ऑन रेडियो रमझिम 90.4 आमजेड पर।
1: ओम नमः शिवाय।
0: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
0: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
0: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंगटोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
0: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 91555-48507 या 91629-3-3538।
0: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उप शाखा NH 27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
0: बोलबम हर हर महादेव।
6: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।

0: डॉक्टर अनुज मिश्रा न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
1: तुम आज भी गुमसुम क्यों बैठी हो?
2: क्या बताऊं, 15 साल शादी के हो गए और संतान सुख मिला नहीं। कई जगह इलाज कराया लेकिन कोई फायदा नहीं। अब समझ नहीं आ रहा क्या करूं?
1: अरे मेरे साथ एक बार चलो डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी के पास, जादवपुर में। कई निसंतान माताओं का इलाज उन्होंने सफलतापूर्वक किया है।
2: ध्यान दे, स्त्री रोग, बांझपन, ल्यूकोरिया, दिमाग की कमजोरी, याददाश्त की कमी, पेट रोग, गैस्ट्रिक, लीवर में सूजन, बवासीर, कान रोग, पुराना बुखार, नस रोग, किडनी की पथरी, पीठ की थैली में पथरी, पेशाब की थैली में पथरी, गठिया, पुराना जोड़ों का दर्द, साइटिका, चर्म रोग एवं पुराने असाध्य बीमारियों का इलाज आयुर्वेदिक विधि से 30 वर्षों से सफलतापूर्वक किया जा रहा है।
1: आज ही आएं डॉक्टर गोरखपुरी निवास, डॉक्टर भास्कर गोरखपुरी, जादवपुर मेन रोड, गोपालगंज। संपर्क करें 99554-97644।
3: अगर आपको हो रहा है घुटने, हड्डी या रीढ़ की हड्डी का दर्द या महिलाओं से जुड़ी समस्या, तो याद रखिए गोपालगंज जिले में सबसे भरोसेमंद नाम स्टार एडवांस ऑर्थो एंड मेटर्निटी सेंटर, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
4: यहाँ है डॉक्टर इमरान हुसैन खान, कंसल्टेंट ऑर्थोपेडिक एवं जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन, MBBS, MS, एक्स रेसिडेंट KGMU, लखनऊ।
3: और महिलाओं के लिए डॉक्टर सूफिया शादाब, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ, MBBS, MS, ऑब्स एंड गायनेकोलॉजी।
4: साथ ही 24 घंटे इमरजेंसी सेवा उपलब्ध है।
3: ध्यान दे, हर शुक्रवार को है फ्री OPD, तो देर किस बात की, आज ही संपर्क करें।
4: पता, कमला राय कॉलेज रोड, नियर रालसन होटल, गोपालगंज।
3: संपर्क करें 9006978856 या 6203139564।
5: राधा, तुमने अपने चाचा जी के अपेंडिक्स का ऑपरेशन कहाँ कराया था?
6: सम्राट हॉस्पिटल में, वो भी कम से कम खर्च में।
7: क्या आप भी ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो घबराए नहीं, आज ही आए सम्राट हॉस्पिटल, जहाँ है डॉक्टर कुंदन सिंह, MBBS, MS, जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन, जो सदर हॉस्पिटल गोपालगंज में भी सेवा देते हैं।
8: हमारे यहाँ दूरबीन विधि से भी ऑपरेशन किया जाता है।
7: आज ही हर तरह के सफल ऑपरेशन के लिए आए सम्राट हॉस्पिटल, जो है कमला राय कॉलेज के पश्चिम RR रोड, गोपालगंज। अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 9478434068 पे।
9: कान में दर्द के मारे जान ही निकल रही है, कहाँ जाऊँ, किससे इलाज कराऊँ, कुछ समझ नहीं आ रहा।
10: इसमें इतना समझना क्या, आज ही चलो डॉक्टर MD शादाब के पास, जो है ENT स्पेशलिस्ट।
11: जी हाँ, उत्तर भारत के सबसे विश्वसनीय कान, नाक एवं गले के विशेषज्ञ डॉक्टर MD शादाब पिछले 10 वर्षों से सिवान में सेवा दे रहे हैं, जो कि 10,000 से भी ज्यादा कान, नाक, गले के सर्जरी का अनुभव रखते हैं। साथ ही आयुष्मान भारत योजना के तहत स्वास्थ्य कार्ड धारक मरीजों का निःशुल्क में इलाज किया जाता है। तो आज ही पहुंचिए इस्मत ENT केयर सेंटर, सिसवन ढाला के उत्तर RK मॉडल स्कूल के बगल, सिवान में।
7: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
12: All right. This is me.

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710309 या 9765665750।
3: ये सफेद दाग बढ़ता ही जा रहा है, लोगों की नजरें, बातें, सब कुछ बदल गया है। अरे क्यों घबराती हो, गोपालगंज में एक जगह है जहां लोग सिर्फ हिम्मत ही नहीं उम्मीद भी लेकर लौटते हैं।
1: हाँ, अब सफेद दाग का समाधान है। चरक सफेद दाग स्पेशलिस्ट डॉक्टर इरशाद अहमद द्वारा एडवांस्ड एक्यूपंक्चर मशीन टेक्निक से
3: सिर्फ एक से दो सप्ताह में रोग में राहत महसूस करें। आज ही संपर्क करें डॉक्टर इरशाद अहमद, ल्यूको क्लिनिक, हर शनिवार, समय सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक।
1: पता, जंगलिया मोहल्ला, नूर मेडिकल के पास, गोपालगंज। कॉल करें 94512-11001।
4: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से। All right.

0: स्वागत है साथियों, आप सुन रहे हैं आपका अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, और मैं हूँ आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी।
1: इस कार्यक्रम को हम स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम के सहयोग से आप सभी तक पहुंचा रहे हैं।
0: आज की कड़ी बहुत खास है, क्योंकि आज 28 मई है, एक ऐसा दिन जब हम दो बहुत ही जरूरी विषयों पर बात करते हैं। पहला है मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे, यानी मासिक धर्म स्वच्छता दिवस, और दूसरा है विश्व पोषण दिवस, यानी हमारे खाने पीने और सेहत से जुड़ा दिन। पहली नज़र में ये दोनों विषय अलग लग सकते हैं, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो ये दोनों एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं, खासकर महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य के लिए।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपको और सभी श्रोताओं को। आपने बिल्कुल सही कहा, मासिक धर्म और पोषण, ये दोनों ही विषय ऐसे हैं जिन पर खुलकर बात करना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक तरफ जहां मासिक धर्म एक प्राकृतिक प्रक्रिया है, वहीं दूसरी तरफ सही पोषण उस प्रक्रिया की स्वस्थ और सुरक्षित बनाए रखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। लेकिन दुख की बात यह है कि हमारे समाज में आज भी इन दोनों विषयों को लेकर बहुत सी गलतफहमियां और झिझक मौजूद हैं।
0: सच कहूं से अतिया भैया, आज भी कई घरों में पीरियड शब्द बोलना भी आसान नहीं होता। लड़कियां चुपचाप सब सहती हैं और कई बार तो उन्हें सही जानकारी भी नहीं मिलती। आखिर ऐसा क्यों है?
1: देखिए, ये एक सामाजिक सोच का मसला है। सालों से मासिक धर्म को एक छुपाने वाली चीज बना दिया गया है, जैसे ये कोई गंदगी हो या शर्म की बात हो, जबकि सच्चाई ये है कि यह हर लड़की और महिला के जीवन का एक सामान्य और जरूरी हिस्सा है। अगर हम इसे समझेंगे नहीं, इसके बारे में खुलकर बात नहीं करेंगे, तो हमारे समाज की लड़कियां सही जानकारी से वंचित रह जाएंगी और उनका स्वास्थ्य प्रभावित होगा।
0: मतलब ये सिर्फ महिलाओं का मुद्दा नहीं है, बल्कि पूरे परिवार और समाज की जिम्मेदारी है।
1: बिल्कुल, माँ, पिता, भाई, पति, शिक्षक, सभी की भूमिका होती है। जब परिवार समर्थन देता है तो लड़की आत्मविश्वास के साथ अपनी सेहत का ध्यान रख पाती है, उसे साफ सफाई, सही सामग्री और सुरक्षित जगह मिलती है।
0: तो सेहतिया भैया, अगर हम सीधे तौर पर समझे तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब क्या है?
1: मासिक धर्म स्वच्छता का मतलब है साफ और सुरक्षित तरीके से पीरियड को संभालना, जैसे कि साफ सैनिटरी पैड, कपड़ा या अन्य सुरक्षित साधन का इस्तेमाल करना, उसे समय समय पर बदलना, हाथ धोना, शरीर की सफाई रखना और इस्तेमाल किए गए सामग्री का सुरक्षित निपटान करना। इसके साथ ही जरूरी है कि लड़की या महिला के पास एक निजी और सुरक्षित जगह हो, जहां वो आराम से खुद का ख्याल रख सके।
0: लेकिन सेहतिया भैया, गांव में या कम साधनों वाले इलाकों में ये सब सुविधाएं हर किसी को मिल पाती है क्या?
1: यही तो सबसे बड़ी चुनौती है। कई जगहों पर आज भी लड़कियां पुराने गंदे कपड़े इस्तेमाल करती हैं, या फिर समय पर बदल नहीं पाते, क्योंकि उन्हें जानकारी नहीं होती है या संसाधन नहीं मिल पाते। इससे संक्रमण का खतरा और भी बढ़ जाता है। इसलिए जरूरी है कि हम इस विषय पर जागरूकता बढ़ाएं और सरकार व समुदाय से मिलकर सुविधा सुनिश्चित करें।
0: और यहीं पर विश्व पोषण दिवस की बात भी जुड़ जाती है, क्यों अगर शरीर को सही पोषण नहीं मिलेगा तो इसका असर मासिक धर्म पर भी पड़ेगा, है ना?
1: बिल्कुल सही समझा आपने। अगर लड़की या महिला को सही पोषण नहीं मिलेगा, जैसे कि आयरन, प्रोटीन, विटामिन, तो उसे कमजोरी, चक्कर, ज्यादा दर्द या अनियमित पीरियड्स जैसी समस्या हो सकती है। इसीलिए पोषण और मासिक धर्म दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं।
0: तो एक संतुलित आहार कैसा होना चाहिए? हमारे श्रोता क्या क्या चीजें अपने रोज के खाने में शामिल कर सकते हैं?
1: देखिए, संतुलित आहार का मतलब है थाली में विविधता। आधी थाली में सब्जियां हो, साथ में दाल या अन्य प्रोटीन हो, अनाज जैसे कि रोटी या चावल हो, और अगर संभव हो तो दूध या दही, हरी पत्तेदार सब्जियां, दालें, फल, मेवे, ये सब बहुत जरूरी है। और सबसे अहम बात, जंक फूड, ज्यादा तला भुना और ज्यादा नमक चीनी से बचना चाहिए, और पानी पर्याप्त मात्रा में पीना चाहिए।
0: मतलब अच्छा खाना सिर्फ महंगा खाना नहीं होता, बल्कि सही और संतुलित खाना होता है।
1: बिल्कुल, हमारे गांव में जो स्थानीय और मौसमी खाना मिलता है ना, वही सबसे अच्छा है। बस हमें उसे सही तरीके से अपनाना है।
0: सेहतिया भैया, आपने बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताई, लेकिन कई बार लोग तब तक नहीं समझते जब तक वे किसी असली कहानी से न जुड़े। क्या आपके पास कोई ऐसी कहानी है जो हमारे श्रोताओं को ये समझा सके कि सही जानकारी और पोषण कितनी बड़ी भूमिका निभाते हैं?
1: हाँ हाँ, बिल्कुल है। देखिए सोनी जी, मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ। हमारे ही गांव की एक लड़की रीना की ये कहानी है। रीना करीब 14 साल की थी। पढ़ने में तेज लेकिन बहुत चुपचाप रहने वाली लड़की थी। जब उसे पहली बार पीरियड्स हुआ तो घबरा गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। घर में इस बारे में कभी भी खुलकर बात नहीं हुई थी। उसकी माँ ने उसे बस एक पुराना कपड़ा दे दिया था और कहा था कि किसी को बताना मत, बस चुपचाप संभाल लेना। रीना को ना तो ये पता था कि कपड़ा साफ होना चाहिए, ना ये कि उसे कितनी बार बदलना चाहिए। वो उसी कपड़े को कई कई घंटों तक इस्तेमाल करती रही। धीरे धीरे उसे खुजली होने लगा, जलन होने लगा, लेकिन उसने किसी को कुछ नहीं बताया। उसे लगता था कि शायद यह नॉर्मल है। लेकिन दोस्तों, रीना के साथ एक और समस्या थी। रीना का खान पान, घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं थी और खाने में अक्सर सिर्फ रोटी और नमक या कभी कभी दाल मिलती थी। हरी सब्जियां, फल, ये सब बहुत कम मिलते थे। धीरे धीरे रीना को कमजोरी महसूस होने लगी। पीरियड्स के समय उसे बहुत ज्यादा दर्द होने लगा, चक्कर आते थे उसे और कई बार वह स्कूल भी नहीं जा पाती थी। एक दिन की बात है, स्कूल में स्वास्थ्य शिविर लगा था। वहाँ आशा दीदी और एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता भी आए थे। उन्होंने लड़कियों से खुले में बात की, पीरियड्स क्या होते हैं, कैसे संभालना चाहिए, क्या सावधानियां रखनी चाहिए। रीना पहली बार किसी को इतनी खुलकर बात करते हुए सुनी थी। दोस्तों, शिविर के बाद उसने हिम्मत जुटाकर अपनी परेशानियां बताई। फिर स्वास्थ्य कार्यकर्ता ने रीना को समझाया कि साफ सफाई कितनी जरूरी है। इसके अलावा रीना को सैनिटरी पैड दिए और ये भी बताया कि उसे आयरन की कमी है। उसे आयरन की गोलियां भी दी और खाने में हरी सब्जियां, दाल, गुड़ और फल शामिल करने की सलाह दी। साथियों, रीना घर आ गई। धीरे धीरे रीना ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव करने शुरू कर दिए। साफ सफाई का ध्यान रखना शुरू कर दिया, समय पर पैर बदलना शुरू कर दिया और अपने खाने पीने में सुधार कर लिया। कुछ ही महीनों में उसका स्वास्थ्य बेहतर होने लगा। अब उसे पहले जैसी कमजोरी नहीं होती थी और वो नियमित रूप से स्कूल जाने लगी। साथियों, आज रीना अपने गांव की दूसरी लड़कियों को भी जागरूक करती है। वो उन्हें बताती है कि पीरियड्स कोई शर्म की बात नहीं है और सही जानकारी और पोषण से हम इसे आसानी से संभाल सकते हैं।
0: सच में सेहतिया भैया, ये सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि एक सीख है। अगर सही समय पर जानकारी और मदद मिल जाए तो जिंदगी बदल सकती है।
1: बिल्कुल, और यही स्मार्ट संस्था नई दिल्ली और रेडियो रिमझिम का प्रयास है और हमारे इस कार्यक्रम का यही मकसद है कि हर रीना तक सही जानकारी पहुंचे, ताकि कोई भी लड़की अज्ञानता या झिझक के कारण अपनी सेहत से समझौता ना करे।
0: सेहतिया भैया, रीना की कहानी ने सच में दिल को छू लिया, लेकिन एक बात जो बार बार सामने आ रही है वो है पोषण। आपने बताया कि सही खाना मिलने के बाद ही रीना की सेहत सुधरी, तो क्या ये समस्या सिर्फ लड़कियों और महिलाओं तक सीमित है या पुरुषों में भी पोषण की कमी एक बड़ी चुनौती है?
1: ये बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने सोनी जी। अक्सर हम पोषण की बात सिर्फ महिलाओं और बच्चों तक सीमित कर देते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि पुरुषों को भी पोषण की कभी कभी एक गंभीर समस्या हो जाती है। हमारे देश में बहुत से पुरुष दिन भर मेहनत करते हैं, खेतों में या निर्माण कार्य में दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन उनका खान पान संतुलित नहीं होता। कई बार वे सिर्फ पेट भरने के लिए खाते हैं, शरीर को सही पोषण देने के लिए नहीं, और इसके वजह से इसका सीधा असर उनकी ताकत, काम करने की क्षमता और लंबी अवधि में उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है।
0: मतलब कमजोरी और थकान जो हम आम समझ लेते हैं, उसके पीछे भी पोषण की कमी हो सकती है।
1: बिल्कुल, और यही बात हमें विश्व पोषण दिवस के संदेशों से जोड़ती है। इस दिन का मकसद सिर्फ अच्छा खाना बताना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि सही पोषण हर उम्र, हर लिंग और हर वर्ग के लिए बहुत जरूरी है। और आज जब हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन डे भी मना रहे हैं, जिसका इस साल का संदेश है टुगेदर फॉर ए पीरियड फ्रेंडली वर्ल्ड, इसका मतलब यही है कि हम मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं जहां लड़कियां और महिलाएं बिना डर और झिझक के अपने स्वास्थ्य का ध्यान रख सके। और इसमें पोषण एक मजबूत कड़ी है जो दोनों विषयों को जोड़ती है।
0: सेहतिया भैया, आपने एनीमिया यानी खून की कमी का जिक्र किया था, ये समस्या हमारे देश में कितनी बड़ी है और क्या ये सिर्फ महिलाओं में ज्यादा होती है?
1: देखिए, एनीमिया भारत में एक बहुत ही बड़ी समस्या है, खासकर किशोर लड़कियों और महिलाओं में इसकी दर काफी ज्यादा है, लेकिन पुरुष भी इससे अछूते नहीं है। खून की कमी का मतलब है शरीर में हीमोग्लोबिन का कम होना,

0: ये बहुत फायदेमंद होते हैं। और सबसे जरूरी बात है कि खाने में विविधता होनी चाहिए। एक ही चीज रोज खाने से शरीर को सभी पोषक तत्व नहीं मिल पाते।
1: मतलब थाली जितनी रंग बिरंगी होगी सेहत उतनी मजबूत होगी।
0: बिल्कुल सोनी जी, यही सबसे आसान तरीका है समझने का। और एक बात और है, हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि हम जो खा रहे हैं वो साफ सुथरा और सही तरीके से पकाया गया हो, क्योंकि अगर खाना साफ नहीं है तो वह बीमारी का कारण भी बन सकता है।
1: साथियों, आज की बातचीत से तो एक बात साफ हो गई है कि पोषण सिर्फ खाना नहीं है, बल्कि ये हमारी ताकत, हमारी ऊर्जा और हमारे पूरे जीवन का आधार है। और जब हम मासिक धर्म और पोषण को साथ में समझते हैं, तो हमें एहसास होता है कि सही जानकारी और सही आदतें मिलकर ही एक स्वस्थ समाज बनाती है। तो साथियों, आज की इस खास कड़ी में हमने जाना कि मासिक धर्म और पोषण दोनों हमारे जीवन के अहम हिस्से हैं। अगर हम इन्हें समझेंगे, अपनाएंगे और दूसरों तक पहुंचाएंगे, तो हम एक स्वस्थ और सशक्त समाज बना सकते हैं।
0: श्रोताओं, याद रखिए, साफ सफाई, सही जानकारी और अच्छा पोषण, यही है स्वस्थ जीवन का आधार।
1: इसी के साथ हम अपना आज का प्रोग्राम यहीं खत्म करते हैं, पर जाने से पहले हम सब मिलकर आज ये शपथ लेते हैं कि हम अपने और अपने परिवार की जिम्मेदारी लेंगे, अपने और अपने परिवार के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देंगे, क्योंकि सेहत ही असली धन है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं और योजनाओं का पूरा लाभ उठाएंगे और दूसरों को भी जागरूक करेंगे, साफ सफाई और स्वच्छता का पालन करेंगे ताकि बीमारियों से बचा जा सके, नियमित जांच और टीकाकरण करवाएंगे और अपने परिवार को भी इसके लिए प्रेरित करेंगे, संतुलित आहार और व्यायाम अपनाएंगे ताकि शरीर और मन दोनों स्वस्थ रहे, महिलाओं, बच्चों और बुजुर्गों की सेहत का विशेष ध्यान रखेंगे। जब पूरा समाज स्वस्थ और सशक्त बनेगा, तभी भारत समृद्ध बनेगा। सेहत सही तो लाभ कई। मैं आपकी अपनी रेडियो दोस्त आरजे सोनी आपसे विदा लेती हूँ, लेकिन जाते जाते बस इतना कहना चाहती हूँ, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, सतर्क रहिए। फिर मिलेंगे इसी शो में, सेहत से ही लाभ कई में, एक नए विषय और नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।
2: रेडियो रिमझिम 90.4 FM सुन रहे हैं आप। समय हो चुका है आज के रोजगार समाचार का, आइए सुनते हैं आज का अंक।
3: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
6: जी हाँ, कमल श्री, याद रखिए, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट, गोपालगंज।
6: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
7: आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग से प्रस्तुत है रोजगार समाचार। नमस्कार, रोजगार समाचार के आज के अंक में मैं हूं मुनीश शर्मा। आइए जानकारी लेते हैं किन रिक्तियों के लिए आप आवेदन कर सकते हैं। मिनरल एक्सप्लोरेशन एंड कंसल्टेंसी लिमिटेड, नागपुर महाराष्ट्र में ये पद रिक्त हैं। कार्यपालक प्रशिक्षु विद्युत एक पद, कार्यपालक प्रशिक्षु यांत्रिक खरीद एवं संविदा प्रभाग के लिए 5 पद, कार्यपालक प्रशिक्षु यांत्रिक भंडार एवं निपटान प्रभाग के लिए 2 पद, कार्यपालक प्रशिक्षु यांत्रिक ड्रिलिंग प्रभाग के लिए 5 पद, कुल 13 पद उपलब्ध हैं। आवेदन करने के इच्छुक अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे वेतनमान, पात्रता मानदंड, शैक्षणिक योग्यता, अनुभव, आयु और ऑनलाइन आवेदन जमा करने से संबंधित और विस्तृत जानकारी के लिए देखें वेबसाइट www.mecl.co.in।
8: भारतीय शिक्षा एवं अनुसंधान संस्थान भोपाल के निदेशक पद के लिए 2,25,000 रूपए निर्धारित वेतनमान पर आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। IISER के निदेशक से अकादमिक के साथ साथ प्रशासनिक प्रमुख होने के नाते अपेक्षा की जाती है कि उनके पास नेतृत्व गुणों के साथ प्रमाणित प्रशासनिक, शिक्षण और अनुसंधान की

0: पृष्ठभूमि हो, जिसमें पीएचडी स्तर पर अनुसंधान मार्गदर्शन में महत्वपूर्ण अनुभव भी शामिल है। निदेशक का कार्यकाल अनुबंधित नियुक्ति के आधार पर 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक जो भी इनमें से पहले हो होगा। योग्य उम्मीदवार देख सकते हैं NIT SER काउंसिल की वेबसाइट, जिसका पता है www.nitcouncil.org.in। इसके अतिरिक्त शिक्षा मंत्रालय की वेबसाइट पर भी इस बारे में जानकारी आप प्राप्त कर सकते हैं। वेबसाइट का पता है www.dohe-education.gov.in। IREL इंडिया लिमिटेड इन गैर तकनीकी पदों के लिए भी आवेदन आमंत्रित कर रहा है। वरिष्ठ प्रबंधक विधि, प्रबंधक विधि, वरिष्ठ प्रबंधक सुरक्षा और प्रबंधक सुरक्षा। इसी क्रम में कुछ अन्य पद हैं: वरिष्ठ प्रबंधक चिकित्सा, महाप्रबंधक वित्त, मुख्य प्रबंधक वित्त, वरिष्ठ प्रबंधक वित्त E4, उप प्रबंधक वित्त E2, सहायक प्रबंधक वित्त E1, उप महाप्रबंधक विपणन E6, उप प्रबंधक बिक्री E2, उप प्रबंधक विधि और HRM E2, उप प्रबंधक HRM प्रशासन, सहायक प्रबंधक HRM, सहायक प्रबंधक राजभाषा और सहायक प्रबंधक कंपनी सचिव। इच्छुक और पात्र उम्मीदवार आरक्षण, आयु मानदंड, शैक्षिक योग्यताओं, अनुभव अपेक्षाओं, छूट, पोस्टिंग के स्थान और अन्य संबंधित विवरण के लिए देख सकते हैं IREL की वेबसाइट www.irel.co.in। आवेदन 10 अगस्त 2026 शाम 6 बजे तक किए जा सकते हैं। आवेदन करने वालों को हमारी शुभकामनाएं। आज के रोजगार समाचार में बस इतना ही। कल हम इसी कार्यक्रम में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।
1: समाचार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
2: सुनिए सुनिए सुनिए,
3: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
2: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
3: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
2: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
4: तब भौजी, आज सुबह रही से गोपालगंज गई रनिया, घूम लेनी नू सारा मार्केट, देख लेनी नू सारा बाजार, कोनो साड़ी पसंद आई ला की ना?
5: अरे ना देवर जी, कपड़ा तो बहुते देखनी है, पर कोनो जचल है ना।
4: ई बात बा, तो ऐसा करी कि अब चली सीधे हमारा साथे कमल श्री में।
2: महिलाओं की सबसे पहली पसंद कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए और नए नए डिजाइनों के फैंसी लहंगा, दुल्हन के लिए साड़ी, सूट पीस, लक्ष्मीपति साड़ियों के अलावा रेमंड्स के कोट पैंट और शूटिंग शॉटिंग बाजार से कम रेट में ले जाएं।
6: जी हाँ, कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री। सीढ़ी से चढ़कर ऊपर आए, बारी मार्केट, फर्स्ट फ्लोर।
7: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
8: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
7: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में 2 नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट, प्रभु मार्केट, मोनिया चौक, गोपालगंज और लखपतिया मोड़, गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट, गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
4: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
9: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स से लेके आओ तनी बाबू।
4: अरे ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
9: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
4: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
9: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कैले से का फायदा।
5: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
4: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज। आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
10: माता जी, कहाँ जाए के तैयारी कैले बानी?
11: पुत्र गणेश, अब हमने के कैलाश पर ना रहल जाई।
10: काहे माता जी?
11: तोहर पापा बहुत तंग करत रहे।

0: अरे मान जा गौरा,
1: अगर आपका फर्नीचर डोलता है और बोलता है तो एक्सचेंज तो मांगता है।
2: संतोष फर्नीचर लेकर आ गए हैं ग्रेट एक्सचेंज ऑफर।
3: ग्रेट एक्सचेंज ऑफर, अपने घर के पुराने सोफा और डाइनिंग को ले आएं और नए सोफा तथा डाइनिंग को ले जाएं और बनाएं अपने घर को सुंदर तथा आकर्षक।
2: आज ही विजिट करें संतोष फर्नीचर, चिराईगर पेट्रोल पंप के सामने, कॉलेज रोड, गोपालगंज। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 82 101 87 952। नियम और शर्तें लागू।
4: जिले का गौरव, संतोष मेडिकल हॉल, घोष मोड़, दरगाह रोड, गोपालगंज।
5: गोपालगंज जिले का प्रतिष्ठित अंग्रेजी दवा की दुकान संतोष मेडिकल हॉल।
6: हमारे यहाँ भारत के प्रसिद्ध डॉक्टरों द्वारा लिखी गई सभी प्रकार की अंग्रेजी दवाएं उपलब्ध हैं, जैसे गोरखपुर, पटना, कलकत्ता, लखनऊ, बनारस, चेन्नई और मुंबई के डॉक्टरों द्वारा लिखी गई दवाइयाँ भी मिलती हैं।
7: एक सूचना, संतोष मेडिकल हॉल अब चला गया है कॉलेज रोड चिराई घर के पहले, गोपालगंज। संपर्क सूत्र है 62042434003 62042434403।
8: नन्ना मुन्ना लाही देश का सिपाही हूँ।
9: रुको रुको बेटा, अब तो बड़ा अच्छा गा रहे हो।
8: हाँ कल मेरे टीचर मुझे अच्छे से याद करने के लिए बोले हैं।
9: अच्छा, तो कौन से स्कूल में पढ़ते हैं आप?
8: मैं पढ़ता हूँ श्री भारती एकेडमी में।
7: श्री भारती एकेडमी जो है CBSE नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त स्कूल।
10: हमारे यहाँ बोलचाल के साथ ही बच्चों को खेल खेल में पढ़ाया जाता है। इसके साथ ही छात्रवास के अलावा आने और जाने के लिए परिवहन की भी सुविधा उपलब्ध है।
7: श्री भारती एकेडमी आपके बच्चों को बनाता है होनहार और देता है उनके फ्यूचर को एक नई उड़ान।
10: आज ही एडमिशन के लिए आए चैन पट्टी के उत्तर ग्राम डेरवा तिलंगही मैदान के पूरब गोपालगंज।
7: हमारा जूनियर ब्रांच सरिया वार्ड नंबर 5 हनुमानगढ़ी गोपालगंज में है।
10: जानकारी है तो कॉल करे 62052 62112 पे।
11: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
12: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2 लाख रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
11: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोपराइटर। पहले आए पहले पाए।
12: अभी कॉल कीजिए 90066 7231।
11: कॉल कीजिए 90066 7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
7: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 52599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
13: आखिर कौन बनेगा हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
14: मैं बनूंगा।
15: क्या आप में है वो बात जो हमारे 10 प्रश्नों का बिल्कुल सही और सटीक आंसर दे पाए और बन जाए कार्यक्रम हेलो क्विज कॉन्टेस्ट का विनर?
13: अगर है दम तो पार्टिसिपेट कीजिए हेलो क्विज कॉन्टेस्ट के शो में। कॉल कीजिए हर रविवार 12 से 1:30 के बीच 80 29 94 921 पे,
15: हर संडे दोपहर के 12 बजे से 1:30 बजे के बीच में,
13: ऑनली ऑन रेडियो रिमझिम 90.4 अमर।

0: आप अकेले नहीं हैं।
1: मदद बस एक कॉल दूर है।
2: क्या आप परेशानियों से घिरे हैं? मन भारी है और कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा?
1: याद रखिए, समाधान आपके पास है। टेलीमानस के निशुल्क नंबर 14416 पर कॉल करें। कहीं से भी कभी भी 24 घंटे ये सुविधा उपलब्ध है।
0: यहाँ आपकी बात सुनी जाती है,
1: समझी जाती है और आपको सही दिशा दी जाती है।
0: आप अकेले नहीं है।
1: मदद बस एक कॉल दूर है।
3: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुकेश कुमार। संसद में सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। संसद ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक 2026 पारित कर दिया है। राज्यसभा से मंजूरी मिलने के बाद लोकसभा ने आज इस विधेयक को पारित किया। एक रिपोर्ट।
4: यह विधेयक भुगतान में होने वाली देरी को दूर करने और विवादों के समाधान की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए लाया गया है। इसके अनुसार हर केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम को सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों से खरीदी गई वस्तुओं या सेवाओं के सभी बिलों का भुगतान ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से करना होगा। विधेयक में यह भी प्रावधान है कि यदि विवाद की स्थिति में मध्यस्थता से समाधान नहीं निकलता तो 30 दिन के भीतर मामले के सुलह के लिए आर्बिट्रेशन के लिए भेजना होगा। इसके अलावा विधेयक में दंड का भी प्रावधान है। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: विधेयक पारित होने के बाद पीठासीन सभापति दिलीप सैकिया ने सदन को संचालित करने का प्रयास किया। उन्होंने लगातार व्यवधान पर नाराजगी जताते हुए कहा कि इस तरह का विरोध लोकतांत्रिक व्यवस्था के अनुरूप नहीं है। इस बीच संसद के दोनों सदनों की कार्यवाही विपक्षी सदस्यों के हंगामे के कारण सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
5: नीट मुद्दे पर छात्रों के विरोध प्रदर्शन के दौरान कथित पुलिस कार्रवाई सहित कई मुद्दे पर विपक्ष के हंगामे के कारण संसद के दोनों सदनों में एक बार फिर कामकाज में बाधा आई। विपक्षी सदस्यों के लगातार हंगामे के कारण दोनों सदनों की कार्यवाही भोजनावकाश से पहले दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई। विपक्ष के हंगामे के चलते दोनों सदनों में प्रश्नकाल नहीं हो सका। इससे पहले भारत छोड़ो आंदोलन की वर्षगांठ पर दोनों सदनों स्वतंत्रता सेनानियों और शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। दोनों सदनों की कार्यवाही जल्दी ही स्थगित हो जाने के कारण गैर सरकारी सदस्यों के विधायी कार्य भी नहीं लिए जा सके। आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने राज्यों के मुख्य सचिवों और आपदा प्रबंधन विभागों से आपदा प्रभावित और संवेदनशील क्षेत्रों में नए सामुदायिक रेडियो केंद्रों को बढ़ावा देने को कहा है। लोकसभा में आज सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं और अन्य आपात स्थितियों के दौरान स्थानीय भाषाओं में समय पर और विश्वसनीय जानकारी पहुंचाने में सामुदायिक रेडियो केंद्रों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए, इनमें सिंधु जल संधि को स्थगित रखना, अटारी सीमा चौकी को बंद करना, वीजा संबंधी प्रतिबंध लगाना तथा दोनों देशों के उच्चायोगों में राजनयिक और आधिकारिक कर्मचारियों की संख्या कम करना शामिल है। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि ये देश का आंतरिक विधायी मामला है।
6: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
3: श्री जायसवाल ने भारतीय जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता बताया। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी।
6: भारत सरकार का इस प्रेस वार्ता में कोई भूमिका नहीं थी। यह प्रेस वार्ता एक निजी मीडिया संस्था द्वारा आयोजित किया गया था। साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि सरकार उस मंच से कहे गए जो भी शब्द थे उसका समर्थन नहीं करती है, खासकर वो शब्द जो वहाँ के सरकार के बारे में कही गई।
3: प्रवक्ता ने पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हुए हाल ही में रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर रखे हुए है। उन्होंने बताया कि भारत अफ्रीका फोरम शिखर सम्मेलन आयोजित करने का भारत इच्छुक है। श्री जायसवाल ने पाकिस्तान, तुर्की और सऊदी अरब के बीच हुए रक्षा समझौते पर कहा कि भारत इस घटनाक्रम पर करीबी नजर रखे हुए है। पाकिस्तान और सोमालिया के बीच हाल में हुए रक्षा समझौते पर उन्होंने कहा कि भारत इन घटनाक्रमों पर लगातार नजर बनाए हुए है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जेम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया है। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। जेम के मुख्य कार्यकारी अधिकारी मेहर कुमार ने नई दिल्ली में बताया कि जेम प्लेटफॉर्म पर कारोबार 2016-17 में 422 करोड़ रुपए था, जो अब बढ़कर 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक हो गया है।
7: 422 करोड़ की शुरुआत थी हमारी 16-17 में और आज हम 20 लाख करोड़ से ज्यादा का व्यापार प्रोटोकॉल के थ्रू करा पाए हैं। तो और इसमें 25 लाख सेलर्स हमारे साथ जुड़े हैं। किसी भी समय में करीब 4 लाख सेलर हमारे साथ व्यापार करते रहते हैं। हर दिन करीब 1000 करोड़ से ऊपर का व्यापार होता है।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
8: भोपाल में 5 अगस्त से जारी ब्रिक्स कल्चर ट्रैक 2026 के कार्यक्रमों के क्रम में आज 2 दिवसीय ब्रिक्स सांस्कृतिक महोत्सव का समापन हो रहा है। समापन समारोह में केंद्रीय संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत शामिल हुए। अपने संबोधन में उन्होंने कहा कि संस्कृति विभिन्न देशों और समाजों को जोड़ने का सबसे सशक्त माध्यम है। उन्होंने साझा संस्कृति, विरासत, आपसी विश्वास और सहयोग की भावना को आगे बढ़ाने में ब्रिक्स कल्चरल ट्रैक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल दिया। कार्यक्रम में संस्कृति मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल सहित ब्रिक्स सदस्य देशों के मंत्री और प्रतिनिधिमंडलों के सदस्य शामिल थे। आकाशवाणी समाचार के लिए भोपाल से मैं विपिन मिश्रा।
3: उड़ीसा के भुवनेश्वर में आज 13वीं ब्रिक्स शिक्षा मंत्रियों की बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक में सर्वसम्मति से भुवनेश्वर घोषणा पत्र अपनाया गया। शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी ने बताया कि घोषणा पत्र समावेशी, मजबूत और भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा व्यवस्था विकसित करने के लिए ब्रिक्स देशों की प्रतिबद्धता दोहराता है। भारत और श्रीलंका ने विद्युत क्षेत्र में सहयोग पर आज नई दिल्ली में समीक्षा बैठक की। भारतीय प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व केंद्रीय विद्युत मंत्री मनोहर लाल ने किया। श्रीलंकाई प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व ऊर्जा मंत्री अनुर करुण थिलाके ने किया। 2 दिवसीय ब्रिक्स वेब्स बाजार 2026 का मुंबई में आज समापन हो गया। सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम के माध्यम से आयोजित इस कार्यक्रम में ब्रिक्स के 20 सदस्य और भागीदारी देशों के 900 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया और 275 से अधिक व्यावसायिक बैठकें की गईं। एक रिपोर्ट।
9: मुंबई में आज ब्रिक्स वेव्स बाजार 2026 का समापन कई महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय सहयोग घोषणाओं के साथ हुआ। NFDC के प्रबंध निदेशक प्रकाश मखदूम ने कहा कि इस आयोजन ने ब्रिक्स देशों के बीच रचनात्मक सहयोग की अपार संभावनाओं को प्रदर्शित किया। इस दौरान NFDC ने ब्राजील की रियो फिल्मे के साथ ऑडियो विजुअल सहयोग बढ़ाने के लिए आशय पत्र का आदान प्रदान किया, जबकि NFDC और राष्ट्रीय फिल्म संग्रहालय ने रूस के गॉस फिल्मो फॉन्ड ईरान के साथ सहयोग जारी रखने की घोषणा की। दक्षिण अफ्रीका, रूस, थाईलैंड और कजाकिस्तान के प्रतिनिधियों ने ग्लोबल साउथ फिल्म फेस्टिवल 2027 की भी घोषणा की। स्वीटी जैन, आकाशवाणी समाचार, मुंबई।
3: झारखंड में जेपीएससी और जेएसएससी सहित विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं को लेकर छात्रों का आंदोलन लगातार तेज हो रहा है। एक रिपोर्ट।
10: छात्रों का आंदोलन आज भी जारी रहा। विधानसभा के मॉनसून सत्र के दूसरे दिन प्रश्नकाल शुरू होते ही विपक्ष ने भर्ती परीक्षाओं में कथित गड़बड़ी का मुद्दा उठाते हुए सरकार से परीक्षाएं रद्द करने और पूरे मामले की अदालत की निगरानी में सीबीआई जांच कराने की मांग की। संसदीय कार्य मंत्री राधा कृष्ण किशोर ने कहा कि इस विषय पर सरकार सदन में सभी सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। इस बीच रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में आंदोलनरत छात्रों से मिलने आज शाम प्रशासनिक अधिकारियों की टीम पहुंची। प्रशासन ने बताया कि टीम ने धरना स्थल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उधर सरकार के साथ प्रस्तावित वार्ता के लिए छात्रों ने 10 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल की अंतिम सूची भी जारी कर दी है। महवेश रहमान, आकाशवाणी समाचार, रांची।
3: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माहे और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी वर्षा, गरज चमक के साथ बिजली गिरने की संभावना व्यक्त की है। उड़ीसा में बाढ़ प्रभावित लोग बाढ़ से हुए नुकसान से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मौसम विभाग ने मयूरभंज के लिए रेड अलर्ट और कई अन्य जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। एक रिपोर्ट।
11: उड़ीसा में एक बार फिर भारी बारिश की आशंका है। मौसम विभाग ने राज्य के लिए रेड वार्निंग जारी की है। विभाग का अनुमान है कि अगले 24 घंटे में भारी बारिश होगी और ये सिलसिला 3 दिनों तक जारी रह सकती है। सालंदी और जालका नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जिससे मयूरभंज, बालेश्वर, भद्रक और केंदुझर जिलों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। इस बीच बाढ़ से प्रभावित कई परिवार अभी भी राहत सामग्री और मवेशियों के चारे के लिए जूझ रहे हैं, जबकि फसलों को हुए भारी नुकसान ने उनकी परेशानी और बढ़ा दी है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
3: हमारे संवाददाता ने बताया है कि केरलम के 4 जिलों में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया गया है।
12: केरल के उत्तरी जिलों कासरगोड, कन्नूर, वायनाड और कोझिकोड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। राज्य के 4 अन्य जिलों में भी ऑरेंज अलर्ट है। कुछ स्थानों पर मूसलाधार वर्षा होने की आशंका है, जबकि शेष 6 जिलों में येलो अलर्ट जारी है। राज्य के सभी जिलों में पिछले एक सप्ताह से तेज बारिश हो रही है। शनिवार के लिए 10 जिलों में येलो अलर्ट घोषित किया गया है। हालांकि रविवार से राज्य में वर्षा में कमी आने का अनुमान है। तिरुवनंतपुरम से स्मृति एम पल्लुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
3: राजधानी दिल्ली में आज सवेरे से कुछ जगहों पर हल्की और कुछ जगहों पर तेज बारिश हो रही है।
13: राष्ट्रीय राजधानी में दिन के समय कई हिस्सों में आंधी तूफान के साथ तेज बारिश हुई। पिछले 24 घंटे में दिल्ली में न्यूनतम तापमान 23 से 26 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहा। तेज बारिश के कारण आम जनजीवन प्रभावित हुआ और कई इलाकों में लोगों को यातायात जाम का सामना करना पड़ा। इसके अलावा मौसम विभाग ने दिल्ली में कल भी हल्की से मध्यम बारिश के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। भानु के साथ ईशानी यादव, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: उज्बेकिस्तान के ताशकंद में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में आज तितली मांझी ने महिलाओं के 45 किलोग्राम भार वर्ग में रजत पदक जीत लिया। तितली ने स्नैच में 65 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 80 किलोग्राम भार उठाकर कुल 145 किलोग्राम वजन उठाया और ये पदक जीता। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। संसद में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास संशोधन विधेयक पारित। इसका उद्देश्य त्वरित भुगतान और विवादों का शीघ्र समाधान सुनिश्चित करना है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, पाकिस्तान के साथ संबंध केवल आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन की मांग फिर दोहराई। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जैम पर पिछले 10 वर्ष में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का व्यापार हुआ। हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, केरलम और उड़ीसा में मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। और उज्बेकिस्तान में एशियाई युवा और जूनियर भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत की तितली मांझी ने रजत पदक जीता। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
14: सवा चार के बाद आप सभी का स्वागत है रेडियो रमजी 90.4 FM पर। आइए सुनते हैं अब आगे का प्रसारण।
15: बनी अपने जिले की आवाज रेडियो रिमझिम के साथ, आपके लिए है सुनहरा मौका। आज ही रेडियो रिमझिम 90.4 FM के अंशकालिक कंटेंट क्रिएटर पद के लिए आवेदन करें, जिसकी योग्यता है आप भोजपुरी, हिंदी या उर्दू भाषा के अच्छे वक्ता हों, आपको अंग्रेजी की समझ होनी चाहिए, आपको कंप्यूटर की जानकारी होनी चाहिए, आप किसी भी विषय हिंदी या भोजपुरी लिखने में योग्य होने चाहिए। ध्यान रहे, यह पद अंशकालिक है, यह पुरुष और महिला दोनों के लिए है। इसमें उम्र की कोई अधिकतम सीमा नहीं है, जबकि न्यूनतम 18 वर्ष के ऊपर और 12वीं पास होने चाहिए। आवेदन करने के लिए अपना रिज्यूम work.rimjim@outlook.com पे भेजें। अधिक जानकारी के लिए व्हाट्सएप मैसेज करें 98523 5599 पर, या फिर किसी अन्य जानकारी के लिए कॉल करें 99 39 41 51 51 पे।
16: क्या हुआ? अरे ये तेरा रोज रोज का पेट दर्द।
17: अरे तो उसे डांटती क्यों हो, उसे जल्दी से ले जाओ डॉक्टर सुनील कुमार रंजन के पास।
15: यहाँ पर हर्निया, अपेंडिस, वंध्याकरण, प्रोस्टेट, पीत की थैली, किडनी की पथरी, पेशाब की नली एवं पेशाब की थैली की पथरी तथा गोला का ऑपरेशन दूरबीन विधि से, साथ ही लेजर एवं स्टेपलर विधि के द्वारा बिना चीड़ा और बिना दर्द के बवासीर, भगंदर और नासूर का ऑपरेशन सस्ते दर पर किया जाता है।
18: ध्यान दें, हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
15: आज ही आए जेबी हॉस्पिटल एवं स्टोन क्लिनिक, थावे रोड, गोपालगंज।
16: अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 91-626-64-498 पे।
19: गोपालगंज, अब आपकी राइड होगी और भी स्टाइलिश और पहले से ज्यादा पावरफुल,
20: क्योंकि आ चुकी है हीरो ग्लैमर एक्स और एक्सट्रीम 125R। अब उपलब्ध है नारायणी हीरो गोपालगंज में।
19: ग्लैमर एक्स, दमदार माइलेज, शानदार लुक और भरोसेमंद परफॉर्मेंस, ताकि हर दिन बने खास और सफर रहे बेफिक्र।
20: और एक्सट्रीम 125R स्पोर्टी डिजाइन, दमदार पावर और एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ हर राइड बने और एक्साइटिंग।
19: तो फिर देर किस बात की, आज ही विजिट करें नारायणी हीरो, कमला राय कॉलेज रोड, गोपालगंज।
20: शानदार ऑफर्स और आसान फाइनेंस सुविधा के साथ
19: नारायणी हीरो, भरोसे का नाम हर राइड के साथ।
20: कॉल नाउ 9656-59536 या 9656-57902।
21: सोहन, मैं बहुत परेशान हूँ, मुझे तुरंत अपने भाई को कुछ पैसे भेजने हैं, लेकिन बैंक में तो इतनी लंबी लाइन है कि घंटों लग जाएंगे और मेरा जियो सिम भी एक्टिवेट नहीं हो रहा, अब मैं क्या करूँ?
22: अरे टीना, टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, चलो मेरे साथ माया क्लासिकल में। आधार और बैंक से आसानी से पैसे निकाला जाता है और किसी भी खाते में तुरंत भेजा जा सकता है बिना किसी झंझट के। और सिम की बात कर रही हो ना, BSNL, जियो, एयरटेल, VI, जो भी चाहिए तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा।
21: मुझे कुछ जरूरी PDF प्रिंट करवाने हैं, वहाँ ये सब हो जाएगा ना?
22: बिल्कुल, माया क्लासिकल में PDF, लेमिनेशन, प्रिंट, फोटोकॉपी सब कुछ मिलेगा। तुम्हें एक धमाकेदार ऑफर भी बताता हूँ, फोटो स्टेट सिर्फ ₹1 प्रति प्रिंट आउट, कम से कम 50 पेज, हर ग्राहक को शानदार गिफ्ट भी मिलता है। माया क्लासिकल में सब कुछ है, माया क्लासिकल सिनेमा रोड, शिव मंदिर के ठीक सामने, गोपालगंज। प्रोपराइटर सोनू जी, संपर्क करें 99-399-66-999।
21: कई दिनों से पेट के निचले हिस्से में बहुत दर्द है, रिपोर्ट में पथरी और बच्चेदानी की भी दिक्कत बताई गई है।
23: डॉक्टर ने कहा है ऑपरेशन जरूरी है, लेकिन जगह ऐसी हो जहां अच्छा सर्जन भी हो और महिला डॉक्टर भी।
19: अब हर चिंता का समाधान है शल्यम हॉस्पिटल,
20: अरार मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा भोजपुरवा में, NH 27 पर दक्षिण साइड, गोपालगंज में स्थित शल्यम हॉस्पिटल।
19: यहां आयुष्मान कार्ड से 5 लाख रुपए तक मुफ्त ऑपरेशन की सुविधा उपलब्ध है।
20: सर्जरी विभाग हो या स्त्री एवं प्रसूति रोग विभाग, इलाज होता है अनुभवी विशेष द्वारा।
19: डॉक्टर मनोज कुमार गुप्ता, MBBS, MS, सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जन, और डॉक्टर डेजी सिन्हा, MBBS, MD, DNB, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ।
20: शल्यम हॉस्पिटल में उपलब्ध है आधुनिक मशीनें और एक ही छत के नीचे OPD, IPD, ICU, मॉड्यूलर OT, अल्ट्रासाउंड, पैथोलॉजी लैब, फार्मेसी और 24 घंटे इमरजेंसी सेवा।
19: आज ही विजिट कीजिए शल्यम हॉस्पिटल, मल्टी स्पेशलिटी एंड ट्रॉमा सेंटर, RR मोड़ से करीब 800 मीटर पूरा, भोजपुरवा, NH 27, गोपालगंज।
20: कॉल करें 70-70-75-6300 या 70-70-75-4200 या हमारी वेबसाइट पर विजिट करें www.shalyamhospital.com।
0: नमस्कार, रेडियो रिमझिम से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। 12 अगस्त को लग रहा है मेगा रोजगार मेला। पुलिस अधीक्षक ने कुचायकोट थाने का किया औचक निरीक्षण। ट्रेन से गिरकर एक युवक की हो गई मौत। माले नेता अजात शत्रु को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जाली नोट रखकर पान दुकानदार को फंसाने वाले को पुलिस ने पकड़ा। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र, अब हालचाल विस्तार से। जिला नियोजनालय के नेतृत्व में 12 अगस्त को मेगा रोजगार मेला का आयोजन हो रहा है। बताया जा रहा है कि तिरबिरवा फील्ड गांधी मैदान में 20 से अधिक कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इसमें 500 से ज्यादा पदों पर युवाओं को रोजगार का अवसर मिल सकेगा। इस रोजगार मेला में 8वीं, 10वीं, 12वीं और ITI डिप्लोमा तथा स्नातक अभ्यर्थी हिस्सा ले सकते हैं। चयनित युवाओं को 14,000 से 30,000 रुपए तक मासिक वेतन का अवसर मिल सकता है। सुबह 10:30 बजे से शाम 4 बजे तक इस रोजगार मेला में हिस्सा लिया जा सकता है। अभ्यर्थियों का पंजीकरण और प्रवेश पूरी तरह से निःशुल्क रखा गया है। बिहार रोजगार सेतु पोर्टल के जरिए ऑनलाइन पंजीकरण की सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने कुचायकोट थाने में समीक्षा बैठक की निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने लंबित कांडों के त्वरित निष्पादन को लेकर आवश्यक निर्देश दिया। साथ ही गंभीर मामलों की जांच जल्द पूरी करने का भी निर्देश दिया गया। फरार अभियुक्तों की गिरफ्तारी और वारंट कुर्की की प्रभावी निष्पादन पर भी जोर दिया गया। अनुसंधान में निष्पक्षता, वैज्ञानिकता और गुणवत्ता बनाए रखने का भी निर्देश दिया गया। अपराध नियंत्रण और विधि व्यवस्था को लेकर पुलिस अधिकारियों को सख्त निर्देश देते हुए पुलिस अधीक्षक ने चेताया कि हर हाल में विधि व्यवस्था को बनाए रखना है। लोगों को समयबद्धता के साथ मामले सुनिश्चित कर सहयोग प्रदान करना है। जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन और समयबद्ध कार्रवाई पर भी पुलिस अधीक्षक ने पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया है। आज दो अलग अलग जगहों पर ट्रेन के साथ हादसा हो गया, जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक व्यक्ति का दोनों पैर कट गया। एक मामला सिधवलिया रेलवे स्टेशन का है, जहां ताप्ती गंगा एक्सप्रेस ट्रेन से गिरकर एक युवक की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक सिधवलिया के ही जलालपुर गांव का रहने वाला बताया जा रहा है। मृतक का नाम बली राय का 36 वर्षीय पुत्र राजेश यादव है, जो जलालपुर कला गांव का रहने वाला है। बताया जा रहा है कि यह असम में कपड़े की फेरी लगाकर रोजगार करता था। इसके माँ शनिचरा देवी की तबीयत खराब हो गई। सूचना मिलने पर यह गांव लौट रहा था। इसी बीच सिधवलिया रेलवे स्टेशन पर ताप्ती गंगा एक्सप्रेस से उतरने का प्रयास कर रहा था और इसी में गिर गया, ट्रेन के चपेट में आ गया और इसकी मौत हो गई। घटना के बाद से परिजनों में कोहराम मचा है। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया है। एक दूसरा हादसा थामे जंक्शन स्टेशन के पास हुआ। बताया जा रहा है कि यहाँ एक युवक ट्रेन के चपेट में आ गया, जिससे इसके दोनों पैर कट गए। हालत गंभीर होने पर इसे मॉडल सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहाँ से डॉक्टरों ने PMCH रेफर कर दिया। घायल युवक थामे थाना क्षेत्र के रिखई टोला गाँव का बताया जा रहा है। युवक की पहचान 30 वर्षीय मोहम्मद अजहरुद्दीन के रूप में की गई है। बताया जा रहा है कि यह मंदिर परिसर में ही फोटोग्राफर का काम करता था। इसकी पत्नी नाराज होकर मायके चली गई थी और पत्नी को मनाने के लिए युवक ट्रेन पकड़ने आया था। इसी दौरान ट्रेन से गिर गया और इसके दोनों पैर कट गए। घटना के बाद से इसके परिवार में चीख पुकार मचा हुआ है। फिलहाल इसका पटना में इलाज चल रहा है और यह जीवन और मौत से जूझ रहा है। गोपालगंज में नगर थाना की पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फर्जी और भड़काऊ वीडियो वायरल करने के मामले में माले पार्टी के नेता आजाद शत्रु को गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि 43 सेकंड का एक वीडियो इनके द्वारा फेसबुक पर जारी किया गया है। इस वीडियो में AI का इस्तेमाल किया गया है। प्रथम दृष्टया जांच में उक्त वीडियो कृत्रिम रूप से फर्जी तरीके से बनाया गया पाया गया है। इसके वजह से समाज में गलत संदेश जा रहा था और इसी को लेकर पुलिस ने कार्रवाई की और आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। यह एक अधिवक्ता भी हैं। पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया है। नगर थाना की पुलिस ने चिराई घर के पास पेट्रोल पंप के सामने एक गुमटी नुमा पान दुकान के पीछे एस्बेस्टस के नीचे से जाली नोट बरामद किया। इस मामले में पान दुकानदार से जब पूछताछ की गई तो उन्होंने बताया कि उनका इस पैसों से कोई ताल्लुक नहीं है। बताया जा रहा है कि इसके बाद पुलिस ने जिस व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी थी उसको गिरफ्तार किया और उससे कड़ाई से जब पूछताछ शुरू की गई तो उसने अपना जुर्म कबूल किया। आरोपी ने बताया कि वह पान दुकानदार को फंसाने के लिए जाली नोटों का बंडल उसके दुकान के पीछे रख दिया था और उसने ही पुलिस को सूचना दी ताकि पान दुकानदार जाली नोट के कारोबार में पकड़ा जा सके, परंतु पुलिस ने इस मामले में सक्रियता दिखाते हुए सही आरोपी को गिरफ्तार किया है और अब इसमें आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है। FSL की टीम ने भी मौके पर पहुंचकर जाली नोट को जांच करते हुए जब्त किया है। बताया जा रहा है कि यह जाली नोट 43,700 रुपए है। पान दुकानदार को फंसाने के लिए जिस आरोपी ने पुलिस को सूचना दी थी वह नीलेश कुमार पिता दया शंकर सिंह साकिन भवानीगंज थाना माझागढ़ का रहने वाला है। इसने पुलिस को बताया कि यह पान दुकानदार को झूठे मुकदमे में फंसाना चाहता था, इसलिए इसने ही जाली नोट उसके दुकान के पीछे रखा था। अब पुलिस इसी आरोपी पर विधिक कार्रवाई कर रही है, नोट को जब्त कर लिया है। अलग अलग मामलों में गिरफ्तार 13 लोगों को आज पुलिस ने न्यायिक हिरासत में भेज दिया। इसमें शराब की तस्करी, SC/ST एक्ट, NDPS एक्ट और चोरी के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। साथ ही कुछ लोगों को कोर्ट के द्वारा जारी वारंट के आधार पर भी पुलिस ने पकड़ा है। 15 अगस्त को यानी स्वतंत्रता दिवस 2026 के अवसर पर आयोजित होने वाले सांस्कृतिक कार्यक्रम में भाग लेने के लिए प्रतिभागियों और संस्थाओं का स्क्रीनिंग 8 अगस्त 2026 को सम्राट अशोक भवन ब्लॉक कॉलोनी गोपालगंज में निर्धारित है। इस कार्यक्रम में भाग लेने वाले इच्छुक प्रतिभागी जिला के कला एवं सांस्कृतिक पदाधिकारी गोपालगंज को आवेदन पत्र दे सकते हैं। इसके लिए श्याम सिनेमा रोड में स्थित अम्रपाली प्रशिक्षण केंद्र में जाकर पदाधिकारी को आवेदन देना होगा। राजकीय डिग्री कॉलेज गौसिया माझा के निर्माण का रास्ता साफ हो गया है। DM ने 5 एकड़ भूमि के निःशुल्क निबंधन का आदेश दिया है। चयनित जमीन कॉलेज के नाम दाखिल खारिज कराने का भी निर्देश दिया गया। कॉलेज भवन निर्माण के लिए शिक्षा विभाग बिहार सरकार को अनुशंसा पत्र भी भेजा गया है। इसकी जानकारी गौसिया पंचायत के पूर्व मुखिया राधा रमन मिश्रा ने दी। जिलाधिकारी समीर सौरभ ने आज समाहरणालय स्थित अपने कार्यालय में सबका सम्मान जीवन आसान अभियान के तहत जनता दरबार में आए लोगों की समस्याओं को सुनकर उसको निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिया। कई मामलों में संबंधित अधिकारियों से दूरभाष पर भी बात कर तत्काल समस्याओं के शीघ्र समाधान का निर्देश दिया गया। 10 अगस्त को प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत विशेष शिविर का आयोजन होगा। पात्र लाभुकों का ऑन द स्पॉट आवेदन, दस्तावेज सत्यापन और सोलर रूफटॉप की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। बैंक प्रतिनिधि भी ऋण सुविधा के लिए मौजूद रहेंगे। DM समीर सौरभ ने अधिक से अधिक लोगों से शिविर में पहुंचकर योजना का लाभ उठाने की अपील की। कुचायकोट थाना की पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर एक एम्बुलेंस से 509 लीटर से अधिक विदेशी शराब को जब्त किया है। इस मामले में अभियुक्त बीकू कुमार को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जो बेगूसराय जिले के बीरपुर का रहने वाला बताया जा रहा है। शराब के परिवहन में प्रयुक्त एम्बुलेंस वाहन को भी जब्त किया गया है और इसमें कांड दर्ज कर आरोपी को न्यायिक हिरासत में भेजने के बाद इसके बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज को पुलिस खंगाल रही है। थाना क्षेत्र के कबिलासपुर नहर से पुलिस ने एक अज्ञात युवती को बरामद किया है। बताया जा रहा है कि यह युवती नहर में डूबती हुई दिखाई दी। स्थानीय लोगों ने तत्परता दिखाते हुए नहर से युवती को बाहर निकाला। अचेत अवस्था में युवती को सदर हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां डॉक्टरों की निगरानी में इसका इलाज चल रहा है। युवती की पहचान खबर मिलने तक नहीं हुई थी। पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की तफ्तीश में जुट गई थी। नहर में पहुंचने के कारणों का भी पुलिस पता लगा रही है। फिलहाल युवती का इलाज चल रहा है। नगर थाना की पुलिस ने एक मामले में फरार चल रहे प्राथमिकी अभियुक्त लक्की सिंह उर्फ आकाश दीप को गिरफ्तार कर लिया, जो दरोगा सिंह का पुत्र है और अधिवक्ता नगर थाना नगर जिला गोपालगंज का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक विनय तिवारी ने पुलिस केंद्र में जाकर लाइन डे का आयोजन किया। इस दौरान पुलिस कर्मियों की समस्याओं को सुना गया और उसे निष्पादित करने के लिए पदाधिकारियों को निर्देशित किया गया। और आज के मौसम का तापमान गोपालगंज में न्यूनतम 27 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 38 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। 12 अगस्त को लग रहा है मेगा रोजगार मेला। पुलिस अधीक्षक ने कुचायकोट थाने का किया औचक निरीक्षण। ट्रेन से गिरकर एक युवक की हो गई मौत। माले नेता अजात शत्रु को पुलिस ने किया गिरफ्तार। जाली नोट रखकर पान दुकानदार को फंसाने वाले को पुलिस ने पकड़ा। इसके साथ ही रेडियो रिमझिम से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: नमः शिवाय।
19: सावन के पावन अवसर पर बाबा भोलेनाथ के दर्शन का सुनहरा अवसर लेकर आया है दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स गोपालगंज।
1: श्रद्धालुओं के लिए विशेष तीर्थ यात्रा एवं कांवर यात्रा की व्यवस्था। पहला रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, राजगीर होते हुए पुनः वापसी।
19: दूसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, तारापीठ, जगन्नाथपुरी, गंगा सागर, काली घाट, कोलकाता, रजरप्पा, राजगीर होते हुए वापस गोपालगंज।
1: तीसरा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गया, बोधगया, वाराणसी, अयोध्या, गोरखनाथ मंदिर होते हुए वापस गोपालगंज।
19: चौथा रूट थावे, सुल्तानगंज, देवघर, बासुकीनाथ, गुवाहाटी, माँ कामाख्या धाम, दार्जिलिंग, सिलीगुड़ी, गंतोक, जनकपुर, अरेराज होते हुए वापस गोपालगंज।
1: गोपालगंज जिले के श्रद्धालु अब घर बैठे अपनी तीर्थ यात्रा के लिए वाहन बुक करा सकते हैं।
19: बिचौलियों से बचे और सीधे हमारे कार्यालय या बुकिंग नंबर पर संपर्क करें।
1: बुकिंग नंबर 9155548507 या 9162933538।
19: हेल्पलाइन नंबर 9934498845।
1: दीपक राज टूर एंड ट्रेवल्स, मुख्य कार्यालय चिराई घर पेट्रोल पंप के पास गोपालगंज, उपशाखा NH27 काली स्थान बंजारी गोपालगंज।
19: बोलबम, हर हर महादेव।
2: ठक ठक।
4: काजी, आज भी कपड़े पसंद नहीं आए?
5: अच्छा मिला ही नहीं।
4: तो घूम लिए ना सारा बाजार, देख लिए ना सारी दुकानें, अब चलिए सीधे कमल श्री में।
24: जी हाँ, कमल श्री। याद रखें, सीढ़ी से ऊपर जाना है और नई नई डिजाइनों के कपड़े लाना है।
4: आप भी आए कमल श्री, कमल श्री, कमल श्री, बारी मार्केट गोपालगंज।
24: याद रहे, सीढ़ी से ऊपर आना है। जी हाँ, सीढ़ी से ऊपर आना है और कुछ बेहतर ले जाना है।
25: कूल्हा एवं घुटना प्रत्यारोपण, आर्थ्रोस्कोपिक या दूरबीन विधि से घुटने के टूटे लिगामेंट की सर्जरी, एलिजारोव रशियन विधि से हाथ पैर की लंबाई बढ़ाना, स्पाइन सर्जरी और हड्डी जोड़ की सभी समस्याओं का समाधान।
26: मिले वरिष्ठ सर्जन डॉक्टर संजय विश्वकर्मा से। संजय फ्रैक्चर क्लिनिक एवं सर्जिकल सेंटर, रुस्तमपुर ढाला, गोरखपुर।
25: आज ही संपर्क करें 7388894700 या 9198869793।
27: सुनिए सुनिए सुनिए,
28: आपके शहर गोपालगंज में खुल गया है श्री कृष्णा साड़ी,
27: जिसमें आपको मिल रहा है सस्ते दामों में एक से बढ़कर एक डिजाइनों के लहंगा, फैंसी साड़ी, लेडी सूट, क्रॉप टॉप एवं कुर्ती।
28: श्री कृष्णा साड़ी दुकान है केडिया भवन, केडिया लेन, मेन रोड, गोपालगंज।
27: एक बार सेवा का मौका जरूर दें श्री कृष्णा साड़ी को।
29: अब आपको कॉस्मेटिक के लिए और परेशान होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अब गोपालगंज में खुल गया है श्रृंगार वाटिका, जहां मिलते हैं डिजाइनर और ब्रांडेड प्रोडक्ट्स जैसे लैक्मे, शुगर, नायका, कलाबा जैसी ढेर सारी कंपनियां। साथ ही साथ डिजाइनर पर्स, होम डेकोरेशन, टॉयज एंड गिफ्ट्स, ब्राइडल ज्वेलरी और चूड़ियों की नए कलेक्शंस। और तो और, वहां इंपोर्टेड परफ्यूम्स भी मिलते हैं। यहां हर शॉपिंग पे गिफ्ट्स और 5-25% तक का डिस्काउंट भी मिल रहा है। एक सामान लेना हो या शादी की शॉपिंग करनी हो, इससे अच्छी जगह कोई नहीं, श्रृंगार वाटिका।
28: आज ही आए चंद्र गोखुल रोड नियर पंजाब नेशनल बैंक गोपालगंज, या कॉल करे 8604348652 पे।
30: तब रामू काका, हई इलेक्ट्रिक के इतना सारा सामान कहाँ से खरीद के ले आओ तनी?
31: ये सब सामान संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लेके आओ तनी बाबू।
30: अरे, ये सामान तो एक नंबर बुझाता और काफी डिजाइनदार भी बा।
31: अरे हाँ बाबू, अपना गोपालगंज में इतना अच्छा दुकान कहाँ बा? संतोष इलेक्ट्रॉनिक्स में सस्ता में एक नंबर के सामान मिलेला।
30: हम तो अपना नौका घरवा खातिर इलेक्ट्रॉनिक के सारा सामान दिल्ली से लेके आवे के सोचत रहनी, लेकिन हम काले संतोष इलेक्ट्रॉनिक से जाके अपन पूरा सामान ले आए।
31: अरे हाँ बबुआ, संतोष इलेक्ट्रॉनिक से लिए या दिल्ली जाके पैसा बर्बाद कर ले से का फायदा।
2: संतोष इलेक्ट्रॉनिक हाउस, जहाँ सस्ते दामों में बेस्ट क्वालिटी के इलेक्ट्रिक के सारे सामान मिलते हैं।
30: हमारा पता है चिराई घर पेट्रोल पंप के सामने, संतोष फर्नीचर के नीचे, कॉलेज रोड, गोपालगंज।
3: डॉक्टर अनुज मिश्रा, न्यूरोसर्जन से पाइए न्यूरो की समस्या का संपूर्ण समाधान। पूर्वांचल के सबसे एडवांस और आधुनिक अस्पताल ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल में सिर दर्द, माइग्रेन, चक्कर आना, मिर्गी की दौरे, झटके, सिर या रीढ़ की हड्डी की फ्रैक्चर, फालिज, साइटिका, न्यूरो संबंधी सभी इलाज। ट्रिनिटी न्यूरो एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पादरी बाजार, गोरखपुर। कॉल 9170856587।
6: एक्सक्यूज मी बॉस, यू हैव अ टेक्स्ट मैसेज।

हेलो हाय नमस्ते नमस्कार प्रणाम सलाम, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप लोग मस्त एंड स्वस्थ होंगे और मैं भी मस्त एंड स्वस्थ आप सभी के बीच उपस्थित हो चुका हूं। मैं सोनू SMS फरमाइश के साथ रेडियो एमछीम 90.4 FM पे समय 9:22 हो रहे हैं हमारे स्टूडियो घड़ी में और कार्यक्रम शुरू होने जा रहे हैं। यदि आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को टेक्स्ट मैसेज करना है। मैसेज का नंबर है 72 77 16 65 96। ध्यान रखना है कि जब भी गाने का फरमाइश करें आप तो पुराने गाने का फरमाइश करें ताकि आपकी फरमाइश आपको सुनाई जा सके। और यहाँ पे कुछ मैसेज पहुँचे हुए थे, मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम की शुरू करते हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहला पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि बुलेट चौधरी 3 फेड़िया से और गाना सुनना है ममता के अनमोल खजाना कबो न दिल से। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हाय सोनू सर, मुझे गाना सुनना है। और इस मैसेज को करते हैं सत्यम जी श्यामपुर से। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि कैसे हैं सर, और इस गाने की फरमाइश करती हैं सरिया फ्रॉम अमोम मोजम से और गाने का बोल देती हैं बोले चूड़िया बोले कंगना। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, हेलो सनम भैया कैसे हैं आप, आशा चौहान विलेज सराफरा परसौनी से गाना सुनना है। तो बिल्कुल आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे, फ़िलहाल स्वागत है। आगे मैसेज पहुँचा हुआ है, हेलो सर हम सफरोज अली का आकिल टोला से। तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में और गाने के फरमाइश से तो पूरा करने की कोशिश है, फिलहाल बन रहे हमारे साथ। बढ़ते हैं आगे और गाने के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और पहले गाने के फरमाइश पूरी करते हैं बुलेट चौधरी जी के फरमाइशों के साथ।

रेडियो एम जी 94.4 FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है इसमें फरमाइश। यदि आप भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल जुड़ सकते हैं। इसके लिए आप सभी को एक छोटा सा मैसेज करना है जिसमें अपना नाम और गाने का नाम, कहां से मैसेज कर रहे हैं उस जगह का नाम बताना है और फिर आपकी फरमाइश हम कुछ ही समय में आपकी फरमाइश को प्ले करेंगे। और यहाँ पे आगे कुछ मैसेज पहुँचे हुए तो मैसेज को शामिल करते हुए इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हैं और अगले गाने हम सभी सुनते हैं। आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया कि सुपर सॉन्ग सुनो भाई, आँख नम हो गया। और इस मैसेज को करते हैं महमूद जी किरला से, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, बिल्कुल काफ़ी दर्द भरा गाना। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है अंकुश कुमार सासा मूसा से जुड़े हुए हैं, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। गाने के फरमाइश तो पूरा करने की कोशिश है लेकिन कौन से गाने सुनेंगे ये बता दीजिए, तभी आपकी फरमाइश पूरी करने की कोशिश की जाएगी। आगे मैसेज और अगले गाने के फरमाइश प्ले करते हैं और इस गाने के फरमाइश करते हैं सत्यम जी सासा मूसा से और गाने का बोल देते हैं आ कहीं दूर चले जाएं हम। तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी, आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ।

0: अरे माँ, ये दांत का दर्द तो जान ले लेगा, क्या करूँ?
1: अब चिंता छोड़िए, गोपालगंज में है महावीर डेंटल एंड मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा केयर, मल्टी स्पेशलिटी डेंटल और फेस क्लिनिक, जहाँ दांत, जबड़े और चेहरे से जुड़ी हर समस्या का आधुनिक इलाज उपलब्ध है।
2: यहाँ सेवा दे रहे हैं गोपालगंज के फर्स्ट MDS डॉक्टर पल्लव राज, वरिष्ठ जबड़ा एवं फेस सर्जन और कैंसर रोग विशेषज्ञ, साथ में डॉक्टर अभिलाषा अग्रवाल, दंत एवं मुख रोग विशेषज्ञ और कॉस्मेटिक डेंटल सर्जन।
1: यहाँ टेढ़े मेढ़े दांत, रूट कैनाल, चेहरे और मुंह से जुड़ी सभी समस्याओं का विशेषज्ञ इलाज किया जाता है।
2: ध्यान दे, आयुष्मान कार्ड धारकों के लिए टूटे हुए जबड़े और मुंह का कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का मुफ्त इलाज उपलब्ध है।
1: पता, शनिवार और रविवार महावीर मेडिकल हॉल, अम्बेडकर चौक, हॉस्पिटल रोड, गोपालगंज। अन्य दिन केडिया मैक्सिलोफेशियल एंड कॉस्मेटिक केयर, मुंशी प्रेमचंद पार्क के पास, बेतिया हाता, गोरखपुर।
2: हर दिन दोनों क्लिनिक पर डॉक्टर पल्लव राज और उनकी विशेषज्ञ टीम द्वारा मरीजों का इलाज किया जाता है।
1: संपर्क करें 84710-3992 या 9765-6750।
3: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
4: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
3: और लाइट बिल के,
4: अब 0 रुपए कैसे दूं?
3: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
4: पक्का।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: आ गया है विकसित भारत जी राम जी, जिसमें हर ग्रामीण को मिलेगी साल में 125 दिन रोजगार की गारंटी और काम वही जो ग्राम पंचायत कहे। विकसित भारत जी राम जी, गांव बढ़ेगा तभी देश बढ़ेगा। ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: प्रसाद क्लिनिक,
2: स्त्री रोग, ल्यूकेरिया, यूट्रस का बाहर निकल जाना, कान का बहना, गठिया, साइटिका, कमर दर्द, अधेड़ी, थनैली, चर्म रोग के सफल इलाज के लिए मिले
1: डॉक्टर श्रीमती कुंती देवी। रोगी देखने का स्थान बुधवार और शनिवार को मिंज स्टेडियम, LIC ऑफिस के पास, गोपालगंज।
2: बाकी दिन जादवपुर बाजार।
3: Excuse me boss, you have a text message.

0: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म। और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रेमछेम 90.4 FM पे सोशल लाइफ में फरमाइश का। और समय तो आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो आगे बढ़ा जाए। आगे मैसेज तो कई पहुँचे हुए, लेकिन मैसेज को रोकेंगे और आज हम फिर जानेंगे सेहत सही लाभ कई कार्यक्रम के अंतर्गत स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी। और आज हम चर्चा करेंगे डायरिया के बारे में, यानी दस्त के बारे में। और डायरिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें व्यक्ति को बार बार पतला या पानी जैसा मल होता है। इससे शरीर में पानी और आवश्यक लवण इलेक्ट्रोलाइट्स की कमी हो जाती है, जिससे निर्जलीकरण डिहाइड्रेशन कहते हैं। यदि समय पर उपचार ना मिले तो यह विशेषकर बच्चों और बुजुर्गों के लिए गंभीर हो सकता है। इनके कारण है दूषित भोजन या पानी का सेवन, बैक्टीरियल वायरल या परजीवी का संक्रमण, गंदे हाथों से भोजन करना, बासी या खराब भोजन करना, भोजन विषाक्तता यानी फूड पॉइजनिंग। इनके लक्षण हैं बार बार पतला या पानी जैसा मल आना, पेट में मरोड़ या दर्द, मतली जैसा मिजाज होना और उल्टी होना, बुखार, कुछ मामलों में बुखार भी आ जाता है, कमजोरी और थकान महसूस होना, अधिक प्यास लगना, मुंह सूखना, पेशाब कम आना, चक्कर आना, निर्जलीकरण का संकेत, ये सारे लक्षण हैं। इनकी जांच है डॉक्टर द्वारा, शारीरिक परीक्षण, आवश्यकता पड़ने पर मल की जांच, गंभीर मामलों में रक्त की भी जांच हो सकती है। इनके उपचार हैं।
1: सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार।
0: इनके उपचार हैं ORS का घोल बार बार पिलाए, खूब पानी, नारियल पानी, नींबू पानी और अन्य स्वच्छ तरल पदार्थ ले, हल्का और सुपाच्य भोजन करें, जैसे खिचड़ी, दही, केला और चावल। छोटे बच्चों को स्तनपान जारी रखें। डॉक्टर की सलाह के बिना एंटीबायोटिक दवाई ना लें। यदि डॉक्टर आवश्यक समझे तो संक्रमण के कारण के अनुसार दवा देंगे। इनके बचाव हैं हमेशा साफ और उबला या शुद्ध पानी पिए, खाने से पहले और स्वच्छ के बाद साबुन से हाथ धोए, भोजन को ढक कर रखें, ताज़ा और स्वच्छ भोजन करें, खुले में बिकने वाला अस्वच्छ भोजन ना खाए, उसे खाने से बचे, फलों और सब्जियों को अच्छी तरह से धोकर खाए। संभावित जटिलताएं हो सकती हैं यदि समय पर उपचार ना मिले तो गंभीर निर्जलीकरण, डिहाइड्रेशन, शरीर में लवणों का असंतुलन, कमजोरी और बेहोशी जैसी समस्या आ सकती है। बच्चों और बुजुर्गों में जान का खतरा रहता है, कब तुरंत डॉक्टर के पास जाए ये भी हम सभी जानेंगे। तो सबसे पहले दस्त 2-3 से अधिक समय तक जारी रहे, 2-3 दिन से अधिक समय तक जारी रहे, बार बार उल्टी हो और पानी ना रुक रहा हो, मल में खून दिखाई दे, तेज बुखार हो, बहुत कम पेशाब आए या बेहोशी जैसी स्थिति हो, छोटे बच्चे, गर्भवती महिलाएं या बुजुर्गों में दस्त के लक्षण हो, तो ये सारे डायरिया के लक्षण हैं। और कुछ बचाव हैं, सारी गतिविधियां हैं। ऐसी गतिविधियां यदि आपको या आपके परिवार में या आपके आस पड़ोस किसी भी व्यक्ति को हो तो उसको ऐसी जानकारी दे और उसको बताएं कि आप अपने आप को इलाज कराएं। यह बहुत ध्यान देने वाली बातें हैं। आप इसका इलाज कराते हैं तो आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। ये सारी जानकारी रेडियो रिमझिम के माध्यम से दी जा रही सेहत सही लाभ कार्यक्रम के अंतर्गत, तो ऐसी जानकारी हर रोज़ दी जाएगी। आप सब बने रहें और अपने जीवन में इसका उपयोग करें। तो फिलहाल कार्यक्रम की ओर बढ़ेंगे और कार्यक्रम में जो भी मैसेज पहुंचे हुए मैसेज को शामिल करेंगे। आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि नमस्ते सर, रंजन कुमार, तमकोही रोड, कुशीनगर, उत्तर प्रदेश से। गाने का बोल तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि हेलो सर, आज हमें भी गाना सुनना है, तो बिल्कुल सुनाएंगे। और इस मैसेज को करती हैं निशा पांडे, स्वागत है आपका। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ लिखा गया है कि सर मेरा गांव गलत बताएं। गलत नहीं, आप बोले थे श्यामपुर तो श्यामपुर ही बताए हैं। और इस मैसेज को करते हैं सत्यम जी और गाने के लिए कहते हैं धन्यवाद सर गाना बजाने के लिए। चलिए आपको भी धन्यवाद है रेडियो रमझम सुनने के लिए, सुनते रहें। फिलहाल बढ़ते हैं आगे और अगले गाने की फरमाइश हम प्ले करते हैं। यहाँ पे गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है और लभेरी लाल के आवाज़ में बोलबम का बिरजाभार धुन में गाने की फरमाइश पहुँचा हुआ है। और इस गाने की फरमाइश करने वाले हमारे श्रोतागण हैं एक प्रमोद जी। तो चलिए प्रमोद जी, सॉरी अंकुश कुमार जी सांसा मूसा से। तो चलिए अंकुश जी आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं आपके पसंद के गाने हम सभी।
2: अगर आप भी चाहते हैं कि पूछ

4FM सुन रहे हैं आप सब और कार्यक्रम चल रहा है SMS फरमाइश का। और यदि आप इस कार्यक्रम में बने हुए तो बने रहें और एक ही करके सबकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। यहाँ पे कई मैसेज पहुँचे हुए कि हमारा और हमारा नहीं बजाते हैं, कई श्रोतागण की मैसेज रिपीट हुए हैं, तो चलिए एक ही करके सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश है। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, अगली गाने की फरमाइश करते हैं पूरी। और इस गाने की फरमाइश करते हैं महमूद जी केरला से, और गाने का बोल देते हैं, दुनिया में आए हैं तो जीना ही पड़ेगा। बिल्कुल आप जो कहें वो सत्य है। और आगे मैसेज कई पहुँचे हुए लिखा गया है कि सनसर हमारा फरमाइश नहीं बजाते हैं, तो बिल्कुल बोलते रहें कि एक एक करके फरमाइश हम प्ले करेंगे और प्ले हो ही रहे हैं, तो आप थोड़ा सा सब्र करें, आपकी फरमाइश हम पूरी करेंगे। रंजन जी फ़िलहाल महमूद जी के गाने को प्ले करते हैं। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ है कि सर हमारा भी, तो बिल्कुल एक एक करके बोलते रहें कि सबकी फरमाइश पूरा करने की कोशिश रहेगा जितना हमें समय मिला है उतना में। फ़िलहाल गाने को प्ले करते हैं और सुनते हैं।

0: अरे वाह, इतना सारा सामान और बिल कितना आया? बस जितना बाजार में आधे सामान या उससे भी कम का आता, क्योंकि मैंने खरीदारी की S2 बाजार होलसेल मार्ट से, जहां हर खुदरा सामान मिलता है होलसेल रेट पर।
1: अब महंगी खरीदारी को कहिए बाय बाय। अब गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी S2 बाजार होलसेल मार्ट। यहां मिलेंगे सभी ब्रांड्स के कपड़े, किराना, प्लास्टिक, बर्तन, क्रॉकरी, कॉस्मेटिक्स, पर्दे, बेडशीट और घर की हर जरूरत का सामान एक ही छत के नीचे सबसे कम दामों पर।
0: और एक और खुशखबरी, S2 बाजार होलसेल मार्ट अब गोपालगंज में दो नए पते पर उपलब्ध है। S2 बाजार होलसेल मार्ट प्रभु मार्केट, मोनिया चौक गोपालगंज और लखपतिया मोर गोपालगंज। S2 बाजार होलसेल मार्ट गोपालगंज में सबसे सस्ता होने की गारंटी।
2: अब बेटा, बहू घर आने वाली है, सोच रही हूँ कुछ सोने की नई ज्वेलरी ले ली जाए, पर भरोसे की दुकान।
3: माँ अब घबराइए नहीं, चलते हैं मास्टर साहब की जेवर की दुकान, गुप्ता ज्वेलर्स, BIS अप्रूव्ड, शानदार डिजाइन और असली ज्वेलरी की गारंटी।
0: अपने सपनों की खूबसूरती के लिए गुप्ता ज्वेलर्स ही चुने। सिल्वर, गोल्ड या डायमंड, हर ज्वेलरी BIS अप्रूव्ड और किफायती दाम के साथ। विश्वास की परंपरा, नई डिजाइन का खजाना, बस गुप्ता ज्वेलर्स में।
1: आज ही आए गुप्ता ज्वेलर्स, मास्टर साहब की जेवर की दुकान, चंद्र गोखो लोड गोपालगंज। मोबाइल नंबर 94395461 या 97-0-97-06-575।
0: क्या कहा तुमने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में जमीन?
1: हाँ बिल्कुल सही सुना आपने, मात्र 600 रुपए प्रति स्क्वायर फीट में गोरखपुर में जमीन। मात्र 2,00,000 रुपए डाउन पेमेंट देकर किस्तों में प्लॉट ले लीजिए, पोजीशन तुरंत मिलेगी, लोकेशन भी कमाल का है, गोरखपुर एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और एम्स से सिर्फ 4 से 5 किलोमीटर के अंदर।
0: ये शानदार ऑफर लाए हैं गोपालगंज के नामी व्यवसायी और कई निजी संस्थानों के प्रमुख श्री संतोष कुमार जी, संतोष फर्नीचर, संतोष मेडिकल और संतोष इलेक्ट्रिकल के प्रोप्राइटर। पहले आए पहले पाए।
1: अभी कॉल कीजिए 90-066-7231।
0: कॉल कीजिए 90-066-7231। जल्दी कीजिए, ये मौका हाथ से न जाने दीजिए।
4: छोटा सा ब्रेक हो गया खत्म और ब्रेक बाद पुनः आप सभी का स्वागत है रेडियो रमझिम 94.4 FM पे। सो चल रहा है इसमें इस फरमाइश का और यहाँ पे आगे कई मैसेज पहुँचे हुए, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है कि हमारा गाना बजा दीजिए, हमकी नींद लगाता। चलिए आपकी भी फरमाइश हम पूरी कर देते हैं, काफ़ी पहले ही मैसेज की हैं और इस मैसेज को पहुँचाती हैं आशा चौहान विलेज सराफरा परसौनी से और गाने का बोल देती हैं, जन्म जन्म जो साथ निभाए एक ऐसा बंधन बन जाए। सुनाना चाहती हूँ आपको रेडियो फ्रेंड से अनामिका जी, सबिता जी, काजल गुड़िया, रोशनी ब्यूटी, निशा, शबीना, रुबीना, शफाक, सलेहा, सुफिया, हीना, हजरा, खुशी, संतरा, शब्बा, तब्बू और वीरेंद्र भैया, लवली भाभी और समीर भैया, शाहिल भैया, इरफान भैया, कमरान भैया, पंकज भैया और गुलाम भैया, अतीश भाई, एजाज भाई, राम कुमार पांडे और राघव जी और दिलीप भैया, नौसाद भाई, श्यावन शर्मा जी और उपेंद्र भाई, सनोज भाई, एके पांडे, रेडियो सुनने वाले सभी दोस्तों को। तो चलिए कोई छूटा नहीं है, लगभग सब कोई का नाम शामिल हो ही गया है। अब आपके भी गाने हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी रेडियो MGM 94.4 FM पे।

काफी प्यारा सॉन्ग। रेडियो रामछिम 90.4 FM पे सुन रहे थे हम सभी। और यहाँ पे आगे मैसेज पहुँचा हुआ लिखा गया कि थैंक्स भैया, आपको धन्यवाद है रेडियो रामछिम सुनने के लिए। अर्षा चौहान, आगे मैसेज पहुँचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, और सभी दोस्तों को नमस्कार, हम भी जुड़ गए हैं और मुझे गाने में शामिल करने के लिए दिल से शुक्रिया। दिलीप राम जी मैसेज करते हैं, स्वागत है आपका भी। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि सर जी हमारा सॉन्ग नहीं बजेगा क्या? और इस मैसेज को करती हैं स्वीटी शर्मा। तो आज तो नहीं बज पाएगा क्योंकि काफ़ी लेट कर दिए हैं आप और हमारे पास बहुत कम समय बचे हुए हैं और कई मैसेज हमारे पास पड़े हुए हैं जो गाने के फरमाइशों को लेकर श्रोतागढ़ अपने गाने के लिए इंतज़ार में लगे हैं। तो आज नहीं कल कोशिश रहेगा। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि सुनो भाई नमस्कार, हम भी आ गए हैं आपके कार्यक्रम में, तो बिल्कुल आपका भी स्वागत है इस कार्यक्रम में, रोहित जी देहरादून से। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और यहाँ पे लिखा गया है कि गुड इवनिंग सर, 5-6 दिन बाद आज हम भी जुड़े हैं आपसे, और सुनो जी क्या हाल है? तो बिल्कुल बढ़िया है। और इस मैसेज को करते हैं मंकिस सानी भैरव गंज वेस्ट चंपारण से, और बिल्कुल बन रहे हमारे साथ। गाने का बोल भी देते हैं तो आज तो पूरा नहीं हो पाएगा क्योंकि कम समय बचे हुए मेरे पास और आगे कई गाने के फरमाइश पड़े हुए हैं, तो आज नहीं हो पाएगा, कल कोशिश रहेगा। आगे मैसेज है और अगले गाने के फरमाइश हम प्ले करते हैं सफरोज अली की, और इनके तरफ से गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ है बाय बाय मिस यू गुड नाइट कुमार सानू की आवाज़ में। तो चलिए आपकी वो फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं हम सभी।

FM सुन रहे हैं आप सब, और कार्यक्रम चल रहा है इसमें इस फरमाइश का, और यहाँ पे आगे कई मैसेज है और आगे कई गाने के फरमाइश पहुँचे हुए हैं। आगे बढ़ते हैं और अगले गाने के फरमाइश यहाँ पे पहुँचा हुआ है। लिखा गया है कि हारे हारे हारे हम तो दिल से हारे। इस गाने के फरमाइश करती हैं निशा पांडे, और तो चलिए आपकी फरमाइश हम प्ले करते हैं और सुनते हैं। आप इंजॉय करें अपने गानों के साथ रेडियो 96.4 FM पे।

कभी प्यारा सॉन्ग रेडियो एमसीएम 90.4 FM पे सुन रहे हैं। हारने के बाद ही जीत मिलती है। अरे आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि, और इस मैसेज को करते हैं रंजन कुमार तमकोही रोड कुशीनगर उत्तर प्रदेश से, और गाने का बोल देते हैं तेरे इश्क में नाचेंगे। तो चलिए आपकी फरमाइश अंतिम प्ले करते हैं और इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त। इस कार्यक्रम को यहीं पे समाप्त करेंगे। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि नाइस सॉन्ग सर निशा जी का, और इस मैसेज को करते हैं सफरोज अली, बिल्कुल काफ़ी प्यारे गाने के फरमाइश पहुंचा हुआ था। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है और लिखा गया है कि गुड नाइट, चलिए गुड नाइट। और आगे मैसेज पहुंचा हुआ है, लिखा गया है कि प्लीज़ मेरा तो आज तो नहीं हो पा रहा है, कल कोशिश रहेगा। आगे मैसेज पहुँचा और लिखा गया है कि थैंक यू सो मच सर, चलिए आपको धन्यवाद है निशा पांडे। और आगे बढ़ते हैं अगले गाने के फरमाइश प्ले करते हुए, इस कार्यक्रम को समाप्त करते हैं। फिर मिलते हैं इसी कार्यक्रम में अगले सप्ताह। आप सब बने रहें, एंजॉय करें अंतिम गाने के साथ रेडियो रेमछिम 90.4 FM पे, जो हमेशा कहता है सुनो दिल से। नमस्कार।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है, सुनो दिल से।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: खाली डब्बा, खाली बोतल,

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: तक के लिए स्थगित कर दी गई। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और पाकिस्तान के संबंध आतंकवाद, शत्रुता और हिंसा से मुक्त वातावरण में ही आगे बढ़ सकते हैं। लोकसभा में आज डॉ. जयशंकर ने कहा कि पाकिस्तान अब भी सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा देने और आतंकवाद को भारत के खिलाफ इस्तेमाल करने की नीति पर कायम है। विदेश मंत्री ने कहा कि पुलवामा आतंकी हमले के बाद भारत ने कई राजनयिक कदम भी उठाए। भारत ने विदेशी अंशदान विनियमन संशोधन विधेयक पर अमरीकी सांसदों की आपत्तियां खारिज कर दी हैं। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने आज नई दिल्ली में कहा कि यह देश का आंतरिक विधायी मामला है।
1: जहाँ तक भारत के अपने विधायी मामलों का सवाल है, ये हमारी अंदरूनी मामला है जिसपे हमारी संसद उस पर निर्णय लेती है। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में कई एक ऐसे राष्ट्र हैं जिसमें अमेरिका भी शामिल है, जो विदेशी कोष को, विदेशी फंड्स को विनियमित करते हैं।
0: श्री जायसवाल ने कहा कि भारत जहाजों और नाविकों की सुरक्षा का मुद्दा देश की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने बताया कि खाड़ी क्षेत्र में भारतीय मिशन संबंधित देशों के नौवहन मंत्रालयों और समुद्री प्राधिकरणों के साथ लगातार संपर्क में है। उन्होंने कहा कि सहायता के लिए 24 घंटे हेल्पलाइन संचालित की जा रही है। उन्होंने कहा कि भारत अंतर्राष्ट्रीय जलमार्गों में सुरक्षित और निर्बाध नौवहन तथा निर्बाध व्यापार का लगातार समर्थन करता है। श्री जायसवाल ने बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना के संवाददाता सम्मेलन पर कहा कि इस कार्यक्रम के आयोजन में भारत सरकार की कोई भूमिका नहीं थी। गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस यानी जेम पर पिछले 10 वर्षों में 20 लाख करोड़ रुपए से अधिक का सकल व्यापार किया गया। सार्वजनिक खरीद में प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता, दक्षता और सुशासन के माध्यम से में बदलाव लाने के लिए 9 अगस्त 2016 को जेम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान IIT दिल्ली के 57वें दीक्षांत समारोह में शामिल होंगे। समारोह में स्नातक, स्नातकोत्तर और 587 PhD शोधार्थियों सहित 3000 से अधिक विद्यार्थियों को उपाधियां प्रदान की जाएंगी। प्रधानमंत्री IIT दिल्ली के सोनीपत परिसर में स्थापित आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित उच्च प्रदर्शन सुपर कंप्यूटिंग सुविधा परम प्रज्ञा का भी उद्घाटन करेंगे। राजस्थान के जयपुर में भारत की अध्यक्षता में ब्रिक्स व्यापार मंत्रियों की 16वीं बैठक आज सफलतापूर्वक संपन्न हो गई। बैठक की अध्यक्षता केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने की। बैठक में ब्रिक्स देशों के व्यापार मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। श्री गोयल ने कहा कि भारत विश्व व्यापार संगठन के नियमों पर आधारित निष्पक्ष और विकासोन्मुख व्यापार व्यवस्था का समर्थन करता है। उन्होंने विकासशील देशों के खाद्य सुरक्षा हितों रक्षा पर भी जोर दिया। मौसम विभाग ने कल उड़ीसा, राजस्थान और चंडीगढ़ में मूसलाधार बारिश की चेतावनी जारी की है। विभाग ने छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, झारखंड, कर्नाटक, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, केरलम, माही और कर्नाटक सहित पूर्वोत्तर भारत में भी भारी बारिश, गरज और बिजली कड़कने की आशंका व्यक्त की। इसके साथ ही यह समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: This is Akashvani, the news read by Saira Mujtaba. The Micro, Small and Medium Enterprises Development Amendment Bill 2026 has been passed by the Parliament, with the Lok Sabha approving it today. Rajya Sabha had passed the bill on Monday. The bill aims to address payment delays and simplify dispute resolution. The legislation provides that every central public sector enterprise must settle all invoices for procurement of goods or services from MSMEs on the trade receivables discounting system. As per the bill, if mediation fails in case of dispute, then the reference for arbitration must be made within 30 days from the date of termination of mediation. Commission. Both houses of Parliament today witnessed opposition's uproar over several issues, including alleged police action during students' protest over the knee tissue. Both the houses of Parliament once again faced disruptions following opposition's uproar over several issues, including police action during students' protest over the knee tissue. Due to the continued disruptions by the opposition members, both the houses were adjourned for the day before lunch. Following opposition's uproar, question hour could not be taken up in both the houses. External Affairs Minister Dr. S. Jaishankar has said that India's relations with Pakistan can only move ahead in an environment free of terror, hostility and violence. In a written reply in Lok Sabha today, Dr. Jaishankar said that Pakistan continues to follow the policy of cross-border terrorism and using terrorism as an instrument of state policy against India. The minister said India withdrew Most Favoured Nation or MFN status to Pakistan and hiked customs duty on all goods originating in or exported from Pakistan to 200% after the Pulwama terror attack. India attaches high priority on safety and security of Indian vessels and seafarers. External Affairs Ministry spokesperson Randhir Jaiswal said this during a media briefing in New Delhi today, adding that Indian missions all across the Gulf region are in constant contact with the Ministry of Shipping and Maritime Authorities in those countries. He said India continues to call for safe and unimpeded navigation and free flow of commerce through international waterways.
3: About the safety and security of our vessels and our seafarers. This is a subject of high importance and we attach high priority to the issue. Our missions all across the Gulf region, they are in constant contact with the Ministry of Shipping so that as and when any support is required to be provided to our seafarers or Indian flagged ships, they can do that. In fact, they have been running 24/7 helplines so that any person who needs support.
2: Prime Minister Narendra Modi will address the 57th convocation ceremony of IIT Delhi tomorrow. He will address more than 3,000 graduating students, including 587 PhD scholars. Director IIT Delhi, Ranjan Banerjee, said in a press conference today that the Prime Minister will present the Institute's most prestigious award, including the President's Gold Medal, Director's Gold Medal, Shankar Dayal Sharma Gold Medal and Perfect 10 Gold Medals to the meritorious students. Mr. Banerjee said that the Prime Minister will remotely inaugurate Paramparagriya at an AI-powered high-performance supercomputing facility established at IIT Delhi's Sonepat campus. The agitation over the alleged irregularities in the JPSC, GSSC and other competitive exams in Jharkhand continued to dominate both the assembly and the streets today. On the second day of the monsoon session of the Jharkhand Assembly, the opposition raised the issue and demanded cancellation of the exams and a CBI inquiry under the supervision of the court. Parliamentary Affairs Minister said the matter had already been discussed in the Business Advisory Committee and that the government was prepared to respond to all issues raised in the House. Payments Council of India, PCI, today announced that UPI will continue to be free for consumers. In a statement, the PCI affirmed that every Indian can continue to make instant digital payments without any transaction charges. It also noted that small merchants will not be charged for accepting digital payments. And at the Asian Youth and Junior Weightlifting Championships in Tashkent, India's Titli Maji clinched a silver in the women's 45kg category, marking an impressive start for the country. And that is the end of this news bulletin.
4: रात्रि न्यूज के बाद रेडियो रिमझिम परिवार को दीजिए इजाजत केवल रेडियो से। आप हमें ऐप पर पूरी रात सुन सकते हैं। सो अगर आपने ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है तो अभी गूगल के प्ले स्टोर में जाएं, रेडियो रिमझिम लिख के सर्च करें और हमारे ऐप को डाउनलोड कर लें। उसके बाद पूरी रात आप रेडियो रिमझिम का आनंद ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ ऐप पर।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: मैया।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

0: हेलो, नमस्ते, नमस्कार, कैसे आप सब? उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। मैं हूं आप सबकी दोस्त भारती और आप सुन रहे हैं रेडियो रंजन 90.4 FM। और समय हो चुका है हेलो माय चॉइस कार्यक्रम का, तो बिल्कुल समय के साथ हाजिर हूं। यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो नंबर है 8029-94911। जी हाँ, 8029-94911 पर कॉल करके जुड़ सकते हैं और अपनी फरमाइश सुन सकते हैं। और बढ़ते हैं आगे और लेते हैं पहला कॉल और सुनते हैं इनकी फरमाइश।
1: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4।
2: थैंक यू और नमस्ते आपको।
1: नमस्ते,
2: अनिल बात कर रहे हैं तो टुडे।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
2: बस बढ़िया, अपना बताइए।
1: हम भी अच्छे हैं।
2: तो क्या हो रहा है अभी?
1: कुछ नहीं, बस आप सभी से बातें हो रही हैं।
2: और गाना सुनना है?
1: बता दीजिए कौन सा गाना।
2: राज मूवी का कोई भी गाना सुना दीजिएगा।
1: राज मूवी का कोई भी सॉन्ग?
2: हाँ, दीनो मौर्य और बिपाशा बसु, जिसमें से वो वाला दूसरा का।
1: और गाना बता सकते हैं कोई उसमें का?
2: उसमें सभी गाने अच्छे हैं, कोई भी बजा दीजिएगा।
1: जी जी, और गाना डेडिकेट भी रहेगा?
2: हाँ, सभी दोस्तों को और जो नहीं पहचानते हैं पहचानते हैं।
1: अच्छा जी, चलिए बढ़िया है, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्कार
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में।
0: मैं मोहम्मद सिराजुद्दीन बात कर रहा हूँ, संपूर्ण रात कुशीनगर से।
1: जी कैसे हैं आप?
0: जी मैं बढ़िया हूँ, अपना बताएं।
1: हम भी बढ़िया हैं। नाश्ता हो गया आपका?
0: हाँ नाश्ता हो गया, खाना भी हो गया।
1: तो कौन सा गाना आपकी फरमाइश है?
0: आज सुना दीजिए, अरिजीत सिंह का आवाज़ में गाना, मैं बता रहा हूँ।

0: बहुत अच्छा लग गा रहे हैं आप। वैसे गाना किसी को डेडिकेट है?
1: और कितने भी लोग सुनने वाले हैं?
0: जी जी,
1: आज शाम को चल जाएगा ना?
0: हाँ हाँ बिल्कुल चलेगा। चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं हेलो, हेलो, हेलो, हेलो, हेलो।
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029494911। जी हाँ, 8029494911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो
7: जी, नमस्कार।
6: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: कमरान नसीब, डिस्ट्रिक्ट सिवान के लिए।
6: हाँ जी, कैसे? मैं अच्छी हूँ, आप बताइए, आप कैसे हैं?
7: जी अच्छा है, नाश्ता तो हो गया।
6: नाश्ता हो गया है।
7: मैं तो बारिश हो रहा है दिल्ली में।
6: अच्छा, अभी आपकी तरफ बारिश हो रहा है?
7: हाँ, अभी हो रहा है।
6: अभी तो इधर बहुत गर्मी है और धूप भी निकला हुआ है।
7: कल भी हुआ था बारिश, गर्मी तो यहाँ दिख रहा।
6: और बता दीजिए, गाना कौन सा सुनिएगा आज?
7: फिल्म का नाम है मदर इंडिया।
6: और गाने की बोल?
7: गाना है गाड़ी वाले गाड़ी धीरे, गाड़ी वाले गाड़ी धीरे।
6: अच्छा जी, और गाना जो रिपीट हुई है?
7: जी सबसे पहले आपको और उल्लू सिद्दीकी, आयशा वीना, सब्बा सिद्दीकी, ताजा समीर आलम, मुकेश भाई, भादर बर्जी,
6: नमस्कार, रेडियो रिमझिम में कॉल किए के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हाँ नमस्कार मैम
1: जी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 FM में।
0: भारती मैम,
1: हाँ
0: आप कैसी हैं मैम?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
0: हम भी ठीक है मैम। तो खाना खा कर आई हैं?
1: खाना खा के आते हैं। आप बताइए, आपका नाश्ता हो गया?
0: जी मैम, नाश्ता हो गया।
1: आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: जी मैं पवन सिंह का जो है गाना ये जीजा जगले जगले बहारवा शंकर भगवान को गाना सुनना है मैम।
1: जी जी, और सॉन्ग डेडिकेट भी है किसी को?
0: जी मैम, आपसे तो पहले बार बार हुआ है, एक बार बात हुआ था कोई भक्ति गाना पे, हे गुरुदेव आप नाम आप चरणों में, हम आपके पास कॉल किए थे, मैंने एक बार वही बात हुआ था, उसके बाद भी आपसे बात नहीं हुआ था। दो तीन बार फोन किए थे तो मुनरमा मैम उठाई थी तो उनसे बात हुआ।
1: जी जी,
0: सबको सबको डेडिकेट है मैम।
1: ओके, वैसे आप रेडियो रिमझिम कब से सुन रही हैं?
0: मैम हम मैंने छोटे छोटे बच्चे थे तो सन तो याद नहीं है कि कावना सर ने सुने थे, मगर ना पहले नोकिया का मोबाइल था सादा से, उस पर भी है वो नहीं तार वो नहीं होता है FM, अरे सुनते हैं लोग
1: फोन,
0: हाँ ईयरफोन, तो वो भी हम बजा लगा कर सुनते थे, मेरा मायका है जवान में महादेवा तो वहाँ पर भी सुनते थे, और यहाँ पे मैंने कभी कभार सुनते थे, बीच में टीवी आ गया तो टीवी देखना चालू कर देता, ये बंद हो गया फिर टीवी खराब हो गया मैम तो मैंने ये चालू हो गया।
1: चलिए कोई बात नहीं,
0: माने की अकेले हैं तो कोई तो मनोरंजन चाहिए, बच्चा सब तो पढ़ने चला गया है।
1: चलिए
0: आप लोग
1: बोलिए,
0: आप बोल रहे हैं कि आप लोग तो लगता ही नहीं है कि बिना जान पहचान से बात करें, लगता है कि कोई अपना है।
1: हाँ हाँ, बात करने से जानने पहचानने से हो जाता है।
0: जी मैम जी,
1: चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।
0: थैंक यू मैम,
1: वेलकम।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: जब फोन घंटे बजती है तो कहते हैं hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो
6: हेलो
5: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजीत 90.4 असम में।
6: कैसी है?
5: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
6: मैं भी ठीक हूँ।
5: हम सभी ठीक है। और कौन सा गाना सुनना है आपको?
6: मुझे गाना सुनना है क्या ये तुमको इंतजार में,
5: एक बार और बता दीजिए, थोड़ा स्लो बोलिएगा।
6: किसका है ये तुमको इंतजार में?
5: अच्छा जी, और गाना किसी को डेडिकेट है? बिल्कुल गाइए।
6: कहने की हो कोई हो, कोई दल हो दिन हो या हो जा, किसी का हो कोई मुश्किल कोई परेशानी, लगे कुछ ठीक नहीं हालात।

0: बहुत अच्छा गाती हैं।
1: थैंक यू मैम।
0: आप जब भी फरमाइश कीजिएगा तो गा के ही बताइएगा।
1: थैंक यू मैम।
0: गाना डेडिकेट हुई है किसी को?
1: जी आपको, टेली मैम को, सरल
0: जी। जी तो आपका गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो 90.4 FM।

0: हेलो
1: जी, नमस्कार मैडम जी।
0: जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 90.4 एफएम में।
1: जी मैडम जी, मैं सुनील साहू मधुसूदनगढ़ जिला गुना मतदे।
0: जी जी, कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है दीदी, आपका रेडियो रिमझिम सुन रहे हैं और बता दो रही है हमारे यहाँ पर।

0: crazy. Now pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
0: Pick it up, pick it up.
1: Hello.
0: Now pick your phone up.
1: Hello.
2: जब फोन की घंटी बजती है तो कहते हैं हेलो.
3: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में. आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं. नंबर है 8029994911. जी हाँ, 8029994911. तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल.
4: हेलो.
5: गुड मॉर्निंग मैम.
4: गुड मॉर्निंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 एफएम में.
5: जी मैं सुधीर कुल बोल रहा हूँ, कोरिजुमा जिला देवघर झारखंड से मैम.
4: हाँ जी, कैसे हैं आप?
5: बिल्कुल ठीक हूँ मैम, आप कैसे हैं?
4: हम भी अच्छे हैं
5: जी. हाँ सोनी मैम आई टीम है.
4: ये तो मुझे मालूम, मैं नहीं बता सकती, ये मैनेजमेंट बताएगा हमारा.
5: जी जी जी. बुधवार को मैम बोल लगी थी मेरा, बोला की आज अल्लाह टाइम में लगाएंगे. 12:26 में लगी रही हुई, लेकिन कॉल को इग्नोर कर दिया गया. उसके बाद स्विच ऑफ हो गई.
4: अच्छा
5: जी,
4: कोई बात नहीं, आज तो लगा ना.
5: जी जी आज तो लगी.
4: तो बताइए कौन सा गाना सुनना है आपको?
5: आज पुरानी फिल्म का गाना सुनना है मैम, जीने की राह फिल्म का गाना, मोहम्मद रफी की आवाज़ में.
4: और गाने की बोल कुछ बताएंगे?
5: जी जी जी बता रहा हूँ. एक बंजारा गाए, जीवन के गीत गाए, हम सब जीने वालों को जीने की राह बताए.
4: और सॉन्ग डेडिकेट भी है
5: जी. सबसे पहले मैं आपको, आपके रेडियो रंजन को, लिसनर को और जितने भी रेडियो रंजन के प्यारे श्रोतागण हैं, सबको दिल से सुनाना चाहता हूँ. और कुछ हमारे साथी सभी हैं, मदन कौल हैं, किशन कौल हैं, राजकुमारी हैं, युगल कौल हैं, कमली कौल हैं, राजीव रोशन, रोहित कुमार सिंह, शशिधर प्रसाद यादव, विष्णु प्रसाद यादव, भोलाना कौल, संजय कौल, इन सब सारे साथियों को डेडिकेट करना चाहता हूँ.
4: ओके चलिए फिर गाना प्ले करेंगे, सुनते रहिए रेडियो रंजन 90.4 एफएम.
5: जी मैम, कॉल रिसीव करने के लिए धन्यवाद मैम.
4: वेलकम.
6: नया एक फसाना के आंगन में मेरे सवेरे सवेरे.

0: हेलो
1: जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रंजन 90.4 एफएम में।
0: नमस्ते मैम।
1: नमस्ते,
0: कैसे हैं मैम?
1: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं?
0: हम भी ठीक हैं।
1: तो क्या हो रहा है अभी?
0: हम सस्पेंस लगा रही थी, लग रहा था कि आज नहीं लगेगा।
1: नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लग जाएगा।
0: लगाते लगाते 11 बजे से लगाते लगाते अभी ऐसा लग रहा है।
1: अच्छा, वैसे कौन सा गाना सुनना है आपको?
0: और सब बताइए।
1: और सब तो बढ़िया है, आप बताइए, आप सब कैसे हैं?
0: सब ठीक है। और आपका खाना हो गया है?
1: हाँ हाँ मेरा हो गया है।
0: चलिए सब ठीक है, कॉल लीजिए अब आराम से।
1: मैम
0: उस दिन गाना फरमाई थी बुधवार को, कब दूसरा गाना बजा दी।
1: अच्छा, तो वो कॉल मनोरमा जी रिकॉर्डिंग की थी, अब मुझे नहीं मालूम है कि कौन सा गाना बजाई है वो।
0: हम फरमाए थे जी आले मुकुन वरण जी, तो आप दूसरा गाना बजा दी। अच्छा सॉरी, हम जा रहे हैं कि हम मनोरमा मैम बोल रहे हैं।
1: नहीं नहीं
0: चलिए तो ठीक है, दूसरा गाना बजा दी।
1: कोई
0: दूसरा गाना
1: इस बार बता दीजिए, बजा दिया जाएगा।
0: तो संतोषी माँ का गाना बजा दीजिए।
1: संतोषी माँ का भक्ति सॉन्ग तो मतलब उतना नहीं बजाते हैं लोग, भक्ति सॉन्ग भी अगर हो तो फिल्म का गाना चलता है इसमें।
0: आज बजा दीजिए,
1: कोई मूवी का ही गाना बता दीजिए।
0: मदद करो संतोषी माँ।
1: अच्छा, और गाना डेडिकेट है?
0: जी मैम, आपको और सोनी मैम को, दिव्या मैम को और मनोरमा जी को और अपनी दीदी को और रेडियो रिमझिम सुनने वाले सभी दोस्तों।
1: ओके ओके, वैसे आप रेडियो रिमझिम कितने दिनों से सुनती हैं?
0: मैं 2008 मतलब सुनती थी, कॉल नहीं करती थी। तो श्रुति मैम जब कॉल ले रही थी तो सुने तो हम भी कर रहे थे कॉल।
1: अच्छा,
0: जब सुने तो हम भी करने लगे कॉल।
1: रेडियो से सुनती हैं या मोबाइल फोन से?
0: नहीं रेडियो से।
1: अच्छा चलिए बढ़िया है,
0: जब सुनी तो अच्छा लगा, सोची कि मैं भी कॉल लगा कर रेडियो पर सुनने के लिए।
1: बढ़िया,
0: अच्छा लगता है रेडियो, हम सुनते हैं हमेशा।
1: चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: जी मैम, बाय मैम।
1: बाय।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: Now pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
1: Pick it up,
2: hello.
1: Now pick your phone up,
2: hello.
3: Jab phone ki ghanti bajti hai to kehte hain hello.
4: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 80029994911। जी हाँ, 80029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
5: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
6: हाँ जी, नमस्कार।
5: नमस्कार,
6: मैं राकेश भारती बस्तर से बोल रहा हूँ।
5: हाँ जी, कैसे हैं आप?
6: बढ़िया हूँ, आप बताइए।
5: हम सभी ठीक हैं।
6: तो भारती जी, समय जी कहाँ हैं?
5: मैं भारती जी बोल रही हूँ।
6: भारती जी बोल रहे हैं?
5: हाँ।
6: एक और भाई ना, क्या नाम है उनका? मनोरमा जी। तो दो दिन से वही कर रहे हैं कभी, तो हमने सोचा कहीं वही दोनों, आप दोनों का आवाज सेम है ना?
5: अच्छा,
6: तो आप दोनों का आवाज सेम है। थोड़ा बहुत भारती जी का सोनू जी दीदी का थोड़ा बहुत मिलता है।
5: तो आज कौन सा गाना सुनना है आपको?
6: सुनना चाहते थे रिकेश पांडे का मोहल्ला गरमाइया।
5: कौन सा गाना एक बार और बताइएगा?
6: मोहल्ला गरमाइया, बहुत पुराना संग है। वही टाइटल सॉन्ग।
5: अच्छा, और गाना किसी को सुनाना भी है?
6: गाना तो आपको सुनाना है, हम लोग है संसार में, हम लोग है और आप फैमिली है।
5: अच्छा जी, चलिए फिर ठीक है, गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
6: बहुत बहुत धन्यवाद।
5: वेलकम।

0: हेलो मैडम, नमस्कार।
1: नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
0: जी मैं मन्नान बोल रहा हूँ कपूरा से।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: ठीक ठाक हूँ। वो गाना सुनना है मैडम।
1: बता दीजिए कौन सा गाना।
0: लता जी का गाना है पवन झकोरा मेरे संग गाए के गुनगुन गुनगुन आवाज। यही गाना सुनवा दीजिएगा मेरा।
1: और गाना डेडिकेट भी रहेगा।
0: और डेडिकेट आपका नाम भूल जा रहे हैं मैडम।
1: मेरा नाम भारती है।
0: अच्छा, भारती जी है।
1: हाँ
0: अच्छा, तो रुआ के बहुत बड़ा प्रणाम बा, नमस्कार बा। इतना दिन के बाद कहाँ रहनी है?
1: रहनी है यही जी, बस दूसरे दूसरे काम में बिजी रहनी है।
0: तो आज बहुत दिन के बाद वो घटाई एक जने नया आयल बड़ी वह बड़ी कोई नया आयल बड़ी।
1: हाँ हाँ
0: तो क्यों ले रुआ तो मैंने राहुल आवाज फोन तो बहुत रोशन बन गए की बहुत दिन के बाद रुआ आज फिर प्रोग्राम में शामिल हो बने। यही तरह बीच बीच में ले तो रहे
1: ना ना केहू के नहीं बुलाए हमने के जन काम मिले ला करे
0: ला। एकदम अब रहुआ जो 1 बजे वाला प्रोग्राम में तो रहुआ खूब बढ़िया एकदम हो गए बने रहुआ खूब बढ़िया बोलता नहीं। अच्छा लगा था बहुत बढ़िया प्रोग्राम। हम डेली हम रेडियो सुनी ले भारतीय जी के मत प्रोग्राम खातिर हम ज्यादातर के चाव करके सुनी ले। 1 बजे के प्रोग्राम में ये प्रोग्राम में तो रहू छोड़िए दल बने का नाम से एक जनी आई बड़ी हम उनका भूला जाता नहीं।
1: मनोरमा
0: मनोरमा हाँ उनको बोले के बड़ा बढ़िया एक्टिव है वो देखा था नहीं। आप रेडियो सुनते हैं कब से सुन रहे हैं कितने दिनों से सुन रहे हैं आपको अच्छा लगता है आप आज तक सुनते हैं या

0: रेडियो से सुनते हैं, मैंने एक मैंने एक टोन वहाँ का पूछे के आधार पीला जो बड़ा बढ़िया मैंने अपना बनी वहाँ के है ना। हाँ मैंने यू सुन के हमारा बड़ा अच्छा लगता है कि सुनील जी ने अपना लिया ना हमारे भारती जी अपना लिया मनोरमा जी अपना ले लो बड़ी अच्छा लगा था बहुत बढ़िया है ना। तो रघु एगो टोन लेके चली कोनो कोनो टोन लेके तो मैंने के भी बा अपन गाना के सुने के चाहता तो हालत में रहुआ ऐसा प्रश्न करे की जो की एगो अच्छा लगा खूब बात बने कहीं कहीं करे एक बात जी तब हमारा की
1: हाँ ठीक बा
0: तब हम भारती जी के सुबह बा कोनी जी तो वहाँ का प्रतिक्रिया बतौल मनोरमा जी साथ में लिखे रही और बाकी जितना मैं रेडियो होने वाला किताब लिखे रही कि ये गाना रही मेरे संगी गुनगुन गुनगुन आवाज ली सुनवा दे मैडम ये तो
1: ठीक बा फिर गाना प्ले करते नहीं सुना रही रेडियो
0: जल्दी सुनवाई हमारे भाभी जी सुना सुनियो भाभी जी सुना गाना।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029-94-911। जी हाँ, 8029-94-911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो।
3: हेलो, नमस्ते मैम।
2: जी नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
3: जी मैम, कैसी मैम?
2: मैं अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसी हैं?
3: हम ठीक है।
2: नाम बता दीजिएगा अपना।
3: नाम सोलह देवी।
2: अच्छा, क्या हो रहा है?
3: अभी पैसे नंबर बढ़ा रहे हैं बात करने के लिए।
2: अच्छा,
3: गाना सुन रहा है?
2: बता दीजिए कौन सा गाना सुनना है आपको।
3: हिंदी गाना सुना दीजिए, आप देखे चला किसी को चला था।
2: एक बार और बताइएगा।
3: साधन बैरी में क्या नहीं है?
2: एक बार थोड़ा सा लाइन कुछ जो याद है बताइएगा।
3: चुपचाप देखा चला किस्मत का समय था।
2: और गाना डेडिकेट है किसी को?
3: आप लोग सुनाना चाहते हैं? हमारा हस्बैंड है, हमारा।
2: अच्छा जी।
3: हम है, मेरा बच्चा है, इसके पार लड़के बड़का लड़का नाम है, छोटा लड़का है राजा, मेरी बेटी है सोना कुमारी।
2: जी,
3: तो खाना ना खानी है?
2: हाँ हाँ, हम खाना खा लिए हैं। आप सबका हो गया है?
3: हम लोग तो यही हो गया, बस फोन धरा रहे हैं।
2: जी जी। वैसे आप रेडियो का कौन कौन सा कार्यक्रम आपको अच्छा लगता है?
3: सब कार्यक्रम सुनते हैं, 5 बजे से लेकर 10 बजे रात ले।
2: जी जी, चलिए तब तो बढ़िया है।
3: मोबाइल पर सब सुनते हैं।
2: रेडियो रिमझिम का ऐप डाउनलोड की है?
3: नहीं, एफएम है, उसी से धरागर सुनते हैं।
2: अच्छा,
3: रेडियो रिमझिम 10:04 पर उसी धरागर सुनते हैं, सब सुनते हैं।
2: चलिए बढ़िया है, फिर गाना प्ले करते हैं। सुनते रहिए रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: नमस्ते।
2: नमस्ते।

0: हेलो,
1: बहुत स्वागत है रेडियो रिंग 90.4 FM में। वालेकुम
0: सलाम,
1: हाँ जी कैसी हैं आप?
0: ठीक बनी है तुम बताओ।
1: हमने की ठीक बनी सन।
0: वो नाश्ता समय?
1: हाँ नाश्ता तो घर से करके आनी सन।
0: लंच लेके आनी है?
1: हाँ तब रोज
0: ठीक है। नाश्ता सब हो गया। गाना और बाजत का है नहीं के?
1: गाना और नीचे बाजत कौन सा गाना नीचे बाजल?
0: गाना कहाँ है जो गाना कौन है कि राजन मेरा उत्पाद है कहाँ गाना बाजल?
1: अच्छा नीचे बाजल।
0: अब
1: ठीक करे क्योंकि बाजल बकाए नहीं है बाजल। आज बता दी आज कौन सा गाना सुने?
0: ये तो पहले अगला शुक्रवार के कॉलर है वो गाना देखेंगे ना बजे।
1: अच्छा जी ठीक कर लेनी हम कहे नहीं है बाजत रहा गाना।
0: कौन में बोल कर मना में झाँसी में
1: भारती?
0: अच्छा यही सर को आप कहे गाना गए झाँसी में बाजे बाज बाज जाए।
1: हाँ हाँ बिल्कुल बाजी आज सुन ले
0: बहुत आपको सुनाना है ना हो
1: जाए ना हो जाला कबो कबो मिस्टेक हो जाला।
0: और सब ठीक बा?
1: हाँ हाँ सब ठीक बा। तो आज बता दी कौन सा गाना सुने?
0: मोहब्बत फिल्म में गाना सुने
1: मोहब्बत मूवी से। और गाना कौन सा
0: है?
1: गाना है आँखें खुली हो या हो बंद ये ना गाना।
0: हाँ ये गाना सुना दी।
1: जी जी
0: तबियत ठीक बा मैम?
1: हाँ हाँ तबियत ठीक बा। और ये गाना सुना हूँ बके होके?
0: हाँ सुना सुना
1: बता दी।
0: अच्छा
1: जी और इस सबके ठीक बानो?
0: सबके ठीक बा। छुट्टी हो गए
1: अब एक बारे में तो हमके नहीं खे मालूम।
0: बताइए
1: ना। चलिए ठीक बा गाना और प्ले कर देने सुना चाहिए रेडियो रिमझिम 90.4 है।
0: आज बात जाए?
1: आज बात जाए।
0: हाँ
1: ठीक
0: बा।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM। सुनो दिल से।
1: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
2: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो 94.4 FM।
3: किस्मत बोल रहे हैं?
2: हाँ जी, कैसे हैं आप?
3: हाँ, सब ठीक हुआ। तुम ठीक बोला ना?
2: हाँ।
3: तो बारिश हो तो रहा आज तो नहीं क्या होता? ठीक हुआ, दिन ठंडा दिन हुआ ना?
2: हाँ, आज दिनों ठंडा बाबे आतनी बारिश नहीं क्या हो खता अच्छा
3: जुम्मा है तो ठीक हो बाबू। सुना दियो कव्वाली बढ़िया।
2: अच्छा, कौन सा कव्वाली सुने?
3: अपना मुँह से सुना दू, अच्छा होला।
2: चलिए ठीक बाबू,
3: ठीक
2: गाना प्ले करते नहीं, सुनते रहें रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
3: ठीक।

0: हेलो हेलो
1: हेलो जी। बहुत
0: हाँ
1: बहुत
0: जी नमस्ते
1: स्वागत
0: मैम।
1: है आपका रेडियो रंजन 90.4 FM में।
0: जी नमस्ते मैम।
1: नमस्कार।
0: राज कुमार सिंगापुर।
1: हाँ जी, कैसे हैं आप?
0: बढ़िया है, आप कैसे हैं मैडम?
1: हम भी ठीक हैं।
0: अच्छा, और बारिश वारिश हो रहा है गोपालगंज में?
1: नहीं अभी तो नहीं हो रहा है, हुआ था रात को, अभी ठीक है।
0: अच्छा, अभी मौसम सही हो रहा है ना?
1: मौसम अभी सही हो रहा है, ठंडा ठंडा रह रहा है अभी।
0: हम लोग का तो धान बोरिंग से रोपा गया, तब बारिश हुआ, भगवान जी मेहरबान है एकदम।
1: चलिए कोई नहीं, दोबारा नहीं पटाना पड़ेगा।
0: हाँ, दोबारा नहीं चलाना पड़ेगा।
1: हाँ हाँ
0: और बताइए मैम, खाना वाना हो गया?
1: हाँ मेरा तो हो गया, आप अभी तो हो गया क्या?
0: नहीं, हम लोग का 2 घंटा अभी टाइम है लंच होने में, अभी 11 बजे
1: आएगा।
0: नाश्ता तो सुबह में करके आते हैं।
1: चलिए तब तो बढ़िया है, तो
0: आज हमको गाना, आज गाना खेसारी लाल का गाना सुनवाइएगा, नया सॉन्ग।
1: खेसारी लाल का नया सॉन्ग कौन सा?
0: वो वाला गाना नहीं है वो, लाली लगाइंदा जिसे करिए, अरे वो सब छोड़ दीजिए, कौन सी कम सुनवा दीजिए, अब कबो जहर भी खैला पर बे असर होला।
1: अच्छा,
0: यही कौन सिंह सुनवा दीजिएगा, ठीक है? नया नया खेसारी लाल का है गाना, लेकिन हमको याद नहीं है ना।
1: कोई नहीं, अगली बार वो बता दीजिएगा, इस बार ये पवन सिंह का सॉन्ग बजा दूंगी।
0: यही पवन सिंह के व्यवसायी सुनवा दीजिएगा।
1: जी जी
0: जी।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट भी है?
0: सबसे पहले आपको डेडिकेट करना चाहते हैं
1: जी,
0: और जितना रेडियो रंजन सुनने वाला है सबसे।
1: ओके, चलिए फिर गाना आपका प्ले करते हैं, सुनते रहिए के साथ रेडियो रंजन 91.4 FM।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM,
1: सुनो दिल से।
2: Now pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
2: Pick it up,
3: hello.
2: Now pick your phone up,
3: hello.
4: जब फोन घंटी बजती है तो कहते हैं hello.
5: ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हेलो माय चॉइस के शो में। आप सभी इस शो से जुड़ना चाहते हैं तो प्रत्येक सोमवार, बुधवार और शुक्रवार को सुबह सुबह 11 बजे से कॉल करके अपने गाने के फरमाइश को रिकॉर्ड करा सकते हैं। नंबर है 8029994911। जी हाँ, 8029994911। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और लेते हैं अगला कॉल।
6: हेलो जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रिमझिम 90.4 FM में।
7: जी हम जैन बनारस।
6: जी कैसे हैं आप?
7: बढ़िया है।
6: क्या हो रहा है अभी?
7: गाड़ियों के काम कर रहे हैं, पावर लूम।
6: तो बता दीजिए कौन से गाने की फरमाइश है आज?
7: ये गाना है वो वाला, सारी दुनिया का जैसे एक है, उस तरह तू मेरी बिंदु एक है। कुमार सानू आवाज है।
6: और गाना किसी को डेडिकेट भी है?
7: जी हम दोस्त लोग को सुनेंगे और अपने फैमिली के साथ सुनेंगे।
6: जी जी, चलिए फिर गाना प्ले करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिमझिम 90.4 FM।

0: नमस्कार जी।
1: नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो रेंज 90.4 एफएम में।
0: जी मैं गांधीनगर से अजय पासवान बोल रहा हूँ।
1: जी क्या हालचाल है आपका?
0: जी बढ़िया है, अपना सुनाइए।
1: मेरा भी ठीक है।
0: जी गाना सुनाइए हमको, सौदागर दिल ले ले दिल देकर।
1: कौन सा सॉन्ग?
0: सौदागर फिल्म का है, सौदागर दिल ले ले दिल देकर।
1: और सॉन्ग किसी को डेडिकेट की है?
0: लड्डू शाह है, व्यास शाह है, राजेश शाह है, साहिल जी है, इंतजार जी है, दीपक जी है, शंकर भाई है और रेडियो रिल सुनने वाले सभी को।
1: तो चलिए फिर आपसे गाना शुरू करते हैं, सुनते रहिए सबके साथ रेडियो रिंग 90.4 एफएम।

0: तो श्रोताओं, अभी आप हेलो माई चॉइस सुन रहे थे और अब समय हो चुका है शो को समाप्त करने का। तो यदि आप चाहते हैं इस कार्यक्रम से जुड़ना तो आप भी जुड़ सकते हैं 8029 94 911 पर कॉल करके। तो फिलहाल हमें आज इस शो से दीजिए जाने की इजाज़त। मिलते हैं अगले दिन, सुनते रहें 90.4 FM। नमस्कार।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।
2: माता जी, रवा कहाँ जाए के तैयारी कैले बानी?
3: पुत्र गणेश, अब हमने के कैलाश पर ना रहल जाई।
2: काहे माता जी?
3: तोहर पापा बहुत तंग करत रहे।

0: अरे मान जा गौरा।
1: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
2: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
1: सुनो दिल से।

भाई भैया की तरिया चरित्रम पुरुषस्य भाग्यम दैवो न जाने कुतो मनुष्यः। इतना कुछ तरिया छछंद सुने के बाद आजकल के कुछ पति काव कहा थे सुने।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: अब मुड़ी ने वहाँ के बतियोही है बुझला, ले जा चुपचाप।
1: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता, रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से। आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो, रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM जो हर पल का है, सुनो दिल से।

रंगत है, खुशबू है, नगमा है, जादू है।

0: आप सब सुन रहल बानी बिहार के पहला सामुदायिक रेडियो रेडियो रिमझिम 90.4 FM के, जौन हमेशा कहला सुनी दिल से।
1: हम है इस पल

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

सुबह सवेरे आपको जगाता, दिन भर आपका साथ निभाता। रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो हर पल का है सुनो दिल से।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: और

0: कर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।

0: उत्तर बिहार का गौरव, सारण प्रमंडल की शान, गोपालगंज की धड़कन और अपनी भाषा की पहचान।
1: आप सुन रहे हैं अपना फेवरेट रेडियो स्टेशन रेडियो रिमझिम 90.4 FM।
0: सुनो दिल से।

0: आप सुन रहे हैं जिले की आवाज रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो दिल से।
1: आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, सुनो।

आज विक्रम संवत 2083 श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की दसवीं तिथि दिनांक 8 अगस्त 2026 दिन शनिवार के इस सुप्रभात में रेडियो रिमझिम का पूरा परिवार आप सभी का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता है। आज सूर्योदय प्रातः 5:28 तथा सूर्यास्त शाम 6:32 के आसपास होगा। तो आइए जानते हैं आज का आदर्श वाक्य। जो व्यक्ति अपने सपनों पर विश्वास करता है और वो उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करता है, दुनिया की कोई भी कठिनाई उसे अधिक समय तक रोक नहीं सकती। श्रोताओं, उगते सूरज की सुनहरी किरणों ने प्रकृति को जगाना शुरू कर दिया है और हमारी स्टूडियो घड़ी में सुबह के 5 बजने का संदेश दे रही है। नई उमंग, नई ऊर्जा और सकारात्मक विचारों के साथ आइए आरंभ करते हैं आज की प्रातःकालीन सभा एक मधुर और भक्तिमय गीत के साथ।

0: बिहार का गौरव,
1: सारण प्रमंडल की शान,
0: गोपालगंज की धड़कन
1: और अपने भाषा की पहचान।
0: रेडियो रिमझिम 90.4 FM
1: सुनो दिल से।

आप सुन रहे हैं रेडियो रिमझिम 90.4 FM, जो है बिहार का राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता कम्युनिटी रेडियो। सुनते रहिए दिल से।